मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वतन की राहों में कांटे भी फूल लगते हैं, जब दिल में देश हो तो डर सब धूल लगते हैं।

अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है।

हे प्रभु, मेरी विनती सुन लो। प्रभु दर्शन की आस जगा दो, मुखमंडल की शोभा न्यारी। प्रभु अपनी छवि हमें दिखा दो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: वर्तमान समय समाज में बंधुत्व और एकता के अभाव के कारण सर्वत्र स्वार्थ और आपाधापी मची हुई है। मनुष्य धोखा देकर कुटिलता से अपना काम बना लेता है, जबकि मानव जीवन का सही अर्थ है सब में आत्मभाव व सब में प्रेम। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण मानव जगत परिवार होता है। वह दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है और सुख देखकर सुखी होता है। आत्मीयता की भावना रखने से कभी भी मनुष्य में अपने से अधिक कोई अच्छी बात या विशेषता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जबकि स्वार्थी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति के मन में विपरीत बातें रहती हैं। स्वार्थी मनुष्य जब कर्म करता है तो यही सोचता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। स्वार्थ भाव से ही दूसरे से सुख बटोरने की इच्छा रखेगा पर देने की नहीं। स्वार्थ में कमी आने पर मनुष्य परिवार जनों को भी पराया मान बैठता है। स्वार्थी मनुष्य के अंदर सेवा की भावना नहीं रहती, वह सेवा भाव से परे रहता है। वास्तव में जीवन भले ही छोटा हो किंतु उसमें सेवा की सुवास है तो वही आगे बढ़ सकता है। पृथ्वी आधार है और पानी पेय है। अग्नि मानव का प्रमुख सहायक है, उसके अभाव में कच्चा अन्न स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा और पवन हमारा जीवन है। वनस्पति मानव का आहार है, वह पृथ्वी से रस तत्व लेकर हमें देती है। पृथ्वी के तथा वनस्पति के उपकारों की कहानी उसी में है। सचमुच जीवन के उत्सर्ग में जिसने जीवन का आनंद माना वही जीवन का सच्चा कलाकार है। जो व्यक्ति दूसरे की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाता है वही दूसरे के लिए प्रिय भी हो सकता है। एक बुढ़िया थी, एक दिन रोटी बनाते समय आग तेज हुई और झोपड़ी में आग लग गई। बेचारी आग बुझाने के लिए लोगों से प्रार्थना करने लगी। सैकड़ों व्यक्ति उस मार्ग से गुजर रहे थे। एक विद्यार्थी ने देखा प्रकाश काफी है, पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा। दूसरे सज्जन उधर से गुजरे, वे सिगरेट के शौकीन थे, सिगरेट पीने लग गए। तीसरे सज्जन निकले, वे चाय के शौकीन थे, उन्होंने वृद्धा के जलते हुए टूटे दरवाजे को चूल्हा बनाकर चाय बनाई। चौथा व्यक्ति यथार्थ सज्जन था, उसके हृदय में मानवता थी। उसने अपने साथियों को बुलाया और लपटे सहकर भी आग बुझाने में मदद किया। पहले के तीनों व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहे, जबकि चौथा परमार्थी और सेवाभावी था। दुनिया के मानस में उन्हीं की स्मृति रेखा शेष रह जाती है जो स्वार्थ से परे होकर कुछ कर जाते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था ब्रह्म कुमारी मंजूषा का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

एक दिन काकभुशुंडी सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडी ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया। फिर भी निर्गुण

0: श्री रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। स्वर सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। लीजिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चगोट।
1: खेतीहर गांवकारी दादा दीदी मन असनी गोटोक और लाभ चु कमानी होय से मछरी पालतोर। ए कमानी बले बरक कारने आम के लाभ दी हुए आरु नंगत पानी रले आम के ए कमानी ले रोज जे बरक कम मसागत ने जुगे लाभ मेरुक सके। मछरी पालतो काजे आम चो कोनी कोनी दादा भाई मन आपलाहान मुंडा तरई ने मछरी बीज बले डारला सोत होती। आरु मछरी बीज डारतो काजे सावन नहाले भादो महीना नंगत रहे से। जसन की आमचो रोपजन बीमारी मन होय से ए मन के और हुंचो उपचार करतो उवाट मन के सांगें दे। असन तो कोनी बले तरी ने बीमार होलो मछरी मन बाई घन घन पानी उपरी एवात। बीमार मछरी खाउक बले छाड़ून देवात आरु धीरे धीरे पोहरुआत। असन दखा दिले किसान के खूबे ध्यान देव पड़ुआ। पहिल बल्लो ने वातावरण ले जसन के पानी लहराल बुलवाओ जे। दूसरा होय से संक्रामक रोग। तीसरा है कुपोषण ले। और चौथा नंबर जोन रोग होय से ये होय से नगत दखा रखा निकर ले। तो पहिल जोन वातावरण ले होय से एक में सांगे से नगत वातावरण नहीं होलो ने मछरी मन काया कि मुरुक मुरिया हुआ नहा ले बाई।

0: काल दखा देवत। और ये हो तो कारण आए बोलो ने जो मुंडा तरैया से हुन लगे कचरा होले नहाले कहीं दवाई ओखत के पानी ने आमे पकाउन देऊ से असन होले का है मछली मन बीमार हुआत। और ये उपचार काजे तरई चो पानी चो जाँच होता चो तापमान चो जाँच करतो रहे नहाले जुगे चिहला होले ताजा गोबर के 200 किलो अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने नहाले फिर कापर सल्फेट 0.5 PPM के बले उपयोग करतो रहे। दूसर हो से संक्रामक रोग, ये रोग पानी लहराले मछली मन के हुआ है। मछली चो बीच के गोटोक ठान ले दूसर ठाने ने तो बेरा नहाले कोनी मछली मन ने जसन के घाव हो रुआ है तो हसन होन रले बली ये रोग हुआ है। घाव ने फपुंद होक मुरिया हुआ है पाछे घाव बाढ़ुक मुरिया हुआ है और मछली मन मुरुंजा हुआ। एचो उपचार काजे मछली मन के 3% नोन चो घोल ने नहाले 300 ग्राम नोन के 10 लीटर पानी ने नहाले फिर 100 ग्राम पोटास के 10 लीटर पानी ने घोलून भाती 5 ले 10 मिनट मछली मन के बुड़ौन संगात रहे तेबे जो ना कि ये बीमारी मन के गुचाऊ खो हुआ है। असनी होय से गोटक जलोदर नाव चो बीमारी आए, ये बीमारी अगर करुण कतला मछली ने हुआ है और बीमारी मछली जो होय से हुन चो पोटा ने पानी जमुन रहू है आँक बाहरी निकलू है और पोटा फूलन जाऊ है संगे संगे देह ने घाव बले होन जाऊ है। एचो उपचार काजे बीमार मछली के तरैले निकरौन देतो रहे पाछे बाचलो मछली मन के 5 PPM पोटास चो घोल ने 2 मिनट तक संगातो रहे। सपाय रोग के गुचातो काजे 2 PPM चो हिसाब ले पोटेशियम पर मैग्नेट नहाले पोटास चो घोल के तरई ने उपयोग करतो रहे। तीसर होय से कुपोषण ले होतो बीती रोग, नंगत दखा रखा नी करले और मछली मन के खातो चारा नी मिरले बले मछली मन चो बाढ़ नी होक सके और असन बेरा बड़े मछली नानी मछली के बले खाऊआत और असन समय ने मछली मन के कैक ठन बीमारी धरुआ। एचे काजे आम के मछली मन के नंगत चारा देतो रहे और मछली मन के रोग रही ले गुचातो काजे सबले नंगत होय से कि यमन काजे नंगत चारा ऑक्सीजन जुगे शीत आरु गरम ले बचातोर तरई चो साफ सफाई आरु गोबर संगे नंगत ओखत दिले रोग रही ले गुचाऊ खुआ आरु किसान के जुगे लाभ मिरुआ।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामे की बेड़ा खड़ा चुगोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए बिरखम देवपाड़, वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बिरखम देवपाड़। वादा कलाकार थे पाकलू और साथी। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे आज के अतिथि। इसमें सुनिएगा सफल व्यवसायी गणपति चौधरी से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर और होगी फिल्मी गीतों की मधुरी मां। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 9:00। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहेब फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 गुलशन कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। इसमें सुनेंगे मेरे पसंद के गीत। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिएगा सुब्री बघेल और साथियों के गाए हल्पी गीत सुबह 10:30 पर। आज का एक ही कलाकार केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक सावन कुमार पर सुबह 11:00। सुबह 11:30 पर रुसरुसा लोक गाथा में सुनिएगा चंद्रकांत राजा। गायिका होंगी शांति और साथी। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का प्रसारण होगा 12:00। संपादक बलवीर सिंह कचका। 12:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन का प्रसारण समय होगा 1:10 का। 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कला और कलाकार। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर। राजेंद्र कश्यप और साथियों के गाए हलवे गीत सुनिएगा शाम 6:35 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम आम चुका होगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में सुनिएगा रामनाथ और साथियों के गाए हल्बी गीत। पीलामन काजीगोट ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। रात 9:15 पर नंजर कार्यक्रम में सुनिएगा भू वैज्ञानिक प्रियंका कश्यप से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलवीर सिंह कच्छ। खेल पत्रिका ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर। इसमें सुनिएगा मैराथन धाविका कुसुम शार्दुल से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे भरत कुमार गंगादित्य। रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थी हमारी केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीय सहभागी रूपेण पश्यतीति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येक वर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमंत्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मक राजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविक सहभागीरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेंटम कम्प्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्र लुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरूरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरूरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30+200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40+100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोज, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड

0: स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज एफएम बैंड, 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं खूबसूरत चंद लाइनों के साथ नमस्कार जगदलपुर के आज के इस अंक में स्वीकार करें मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार, आज आपके लिए है कार्यक्रम, आज की अतिथि और फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

श्रोताओं, जैविक विविधता को अक्सर पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए, फसलों की किस्मों और पशुधन की नस्लों के बीच और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, जैसे झीलें, जंगल आदि। रेगिस्तान कृषि परिदृश्य, जो अपने सदस्यों जैसे मनुष्य, पौधों, जानवरों के बीच कई प्रकार की बातचीत की मेजबानी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वर्तमान में 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। श्रोताओं, जैविक विविधता संसाधन वे स्तंभ है जिन पर हम सभ्यताओं का निर्माण करते हैं। मानव आहार का 80% से अधिक भाग पौधों द्वारा प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 80% लोग बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक पौधों पर आधारित दवाओं पर निर्भर हैं। लेकिन जैव विविधता के नुकसान से हमारे स्वास्थ्य सहित सभी को खतरा है। श्रोताओं, ये साबित हो चुका है कि जैव विविधता के नुकसान से जूनोस का विस्तार हो सकता है, यानी जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां। जबकि दूसरी ओर, अगर हम जैव विविधता को बरकरार रखते हैं तो यह कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी से लड़ने के लिए उत्कृष्ट उपकरण प्रदान करता है। श्रोताओं, जैव विविधता उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, वनस्पतियों, जंतुओं और मानवीय जीवों का समूह होता है, जो एक विशेष क्षेत्र, प्रदेश या पूरी पृथ्वी पर मौजूद होता है। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में हमारे आसपास के प्राकृतिक वातावरण का अविभाज्य हिस्सा है। आसमान में कितने पंछी, अलग शैली है, अलग रंग है। उड़ते कितने ठाट से, भर देते मन में उमंग है। भाव सभी का एक समान, कितनी इनमें शालीनता है। इसीलिए हम कहते हैं, जैव विविधता में भी एकता है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
5: श्रोताओं, अगले पायदान पर हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के अतिथि की ओर। इसमें सुनते हैं सफल व्यवसायी गणपति चौधरी से भेंट वार्ता। भेंट कर रही हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।
3: आकाशवाणी के आप सभी प्यारे श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज का दौर है प्रतियोगिता का दौर, और इस दौर में हमारे जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे तो दौड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही वो व्यवसाय को भी एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। वो अपना भविष्य व्यवसाय के क्षेत्र में भी देख रहे हैं। तो आज हमने आप सभी को मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे ही एक सफल व्यवसायी को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप एक सफल व्यवसाय अभी चला रहे हैं, तो उनके बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में गणपति जी का। तो आपका स्वागत है।
6: जी जी, नमस्कार मैडम। पहले तो मैं श्रोताओं को अपना नमस्कार प्रणाम करता हूं, और आकाशवाणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया और एक मौका दिया कि अपनी पहचान मैं बता सकूं कि मैंने किस तरह से काम किया है। और इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी आपने, इतने हैं उसके बावजूद भी मुझे बुलाया और आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूं।
3: जी, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने व्यवसाय के बारे में बताएं कि आपका बिजनेस क्या है।
6: जैसा कि मेरा नाम गणपति चौधरी है और मेरा फर्म है IT सोल्यूशन प्रिंटर के नाम से। ये अपना कलेक्टेड ऑफिस रोड कमिश्नर ऑफिस के सामने यहाँ पर स्थित है। मेरा मेन काम है प्रिंटिंग का, जिस तरह से फ्लैक्स प्रिंटिंग और आपका शादी कार्ड प्रिंटिंग, जैसे कि VIP मूवमेंट बनते हैं तो उस समय हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं, स्टेज बनाना, वेलकम गेट बनाना। जैसे अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आए थे, तो उनका स्वागत बैनर का
3: जी,
6: तो मेन हमारा प्रिंटिंग का ही काम मेन रहता है।
3: तो जैसा जब भी हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, व्यवसाय करने का सोचते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि हम क्यों इस बिजनेस को चूज करें। जैसे कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल खोल रहा है तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उनके जो माता पिता हैं या फिर दादा परदादा हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ काम किया होता है, उनके ऑलरेडी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो उस बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप के इस व्यवसाय के पीछे क्या प्रेरणा थी, क्यों आप लोगों ने इस क्षेत्र को चुना?
6: इस क्षेत्र में हमारे आने का एक ही रीजन था कि शुरुआत में हम इस क्षेत्र में नहीं थे। आईटी सोल्यूशन का मीन्स होता है टेक्नोलॉजी। हम थे कंप्यूटर लाइन में, उस समय हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण चलते रहे, तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट में फोटो के लिए और कुछ प्रोजेक्ट में भी कार्यक्रमों के लिए हमको फ्लैक्स बैनर की आवश्यकता पड़ती रही, तो हम लोग फ्लैक्स बनवाते रहे, जिनके पास हम ऑर्डर देते रहे, कई बार वो हमको घुमाते रहे, कई बार उनके कारण हमारे बहुत शेड्यूल लेट हो जाते रहे। जैसे आज प्रोग्राम है, आज हमको बैनर ही नहीं मिला, पोस्टर ही नहीं मिला, और इसके कारण क्या होते रहे कि हमारे प्लान पूरे चेंज हो जाते रहे। फिर अचानक एक दिन मन में आया कि नहीं यार, क्यों ना हम इस मशीन को ही डाले, इसमें जाए, तब हम उस फील्ड में चुने। और कुछ सपोर्ट भी रहा
3: जी,
6: घर से भी सपोर्ट रहा, फिर आपका कुछ मार्केट से भी सपोर्ट रहा, तो उसी से हम लोग इस प्रिंटिंग लाइन में गए, नहीं तो शुरुआत में हमारा प्रिंटिंग लाइन नहीं था।
3: तो जैसे हम कोई सभी व्यवसाय जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। तो जब आपने इस व्यवसाय की शुरुआत की तो आपने क्या महसूस किया, कौन कौन सी चुनौतियां आपने उस वक्त फेस की?
6: इस व्यवसाय को चालू करने के लिए हमारे बहुत से चुनौतियां थी, एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी संघर्ष थी। एक परिवार में भी रहता है दबाव कि आपने ये काम चालू किया, समाज में भी रहता है कि आपके सभी मित्रगण सहयोगी सपोर्ट किए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट देना है। उसमें जैसा इस फील्ड में आप मशीन ले आए, लेकिन मशीन के साथ आपको रॉ मटेरियल भी लाना है, रॉ मटेरियल के साथ आपको डिजाइनिंग का है, टाइमिंग का है, कई बार हमको शुरुआत में अनुभव भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ही संघर्षपूर्ण रहा
3: जी। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि किसी कस्टमर का ऑर्डर थोड़ा बहुत देरी हो गया या फिर कोई कस्टमर दबाव डाल रहा है, तो जब ऐसे स्थिति आती है तो कस्टमर से कैसे आप लोग डील करते हैं?
6: ये समय मेरा बहुत संघर्षपूर्ण रहता है, अभी भी आते हैं कई बार क्या हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसमें आपको अपने भावना के ऊपर, यदि कस्टमर भड़कना उनकी तो उनका क्या कहा जाए तो एक जायज है, क्योंकि उन्होंने आपको टाइम दिया, गलती तो आपकी है कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं चला, कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उस समय आपको अपने विनम्रता पे ही कंट्रोल करना पड़ता है।
3: आप ना ज्यादा गुस्सा,
6: हाँ, आपको अपने जुबान पे, यदि कस्टमर भड़कता भी है तो आपको उनके अपने स्माइल हंसते हुए बातों से ही उनको आपको मनाना पड़ता है। कई बार ना चाहते भैया बैठिए मैं चाय पी लीजिए, हो गया आपका दे रहा हूँ, तो वो जो 10 मिनट जो मिलता है बीच का, चाय पानी का बीच का, तो उस बीच में कस्टमर को ये लग रहा है कि हम चाय पानी पी रहे हैं उनके साथ, लेकिन हम चाय नहीं पीते, हमारा माइंड मशीन में रहता है, ताकि क्या है कि उनका टाइम भी निकल जाए और हमको एक प्लस पॉइंट भी मिल जाए कि नहीं चल 10 मिनट में सॉल्व हो गया।
3: जी। और जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह की आपने बात की, तो इस क्षेत्र में बहुत कंपटीशन भी होगा। अगर हम जगदलपुर क्षेत्र की बात करें तो जगदलपुर में कितना कंपटीशन है, कितनी प्रतियोगिता है आपस में, और अगर आपको सफल होना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है?
6: जगदलपुर में मैडम प्रिंटिंग लाइन में कॉम्पिटिशन है। जगदलपुर में आप देखेंगे, भले हमारा सिटी एक छोटा सिटी है, बट यह कंपटीशन हर चीज़ में, कोई एक भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। जगदलपुर हमारे शहर को चौकों का चौराहा कहा जाता है, जितने भी चौक में जाएंगे कम से कम आपको 2 प्रिंटिंग प्रेस मिलेंगे। इसमें चुनौती ये रहता है कि आपको कस्टमर को सर्विस, क्वालिटी, ये 2 चीज़ मेन है। आप उनके टाइम का ध्यान दीजिए कि आपने उन्हें 1 घंटा का टाइम दिया है, आपने उन्हें वादा किया है कि सर आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, तो आपको 1 घंटे में देना ही है। और प्लस पॉइंट है क्वालिटी आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आपने क्वालिटी मैनेज नहीं किया तो फिर आपका कस्टमर दोबारा आपकी तरफ देखेगा भी नहीं।
3: जी। तो ग्राहकों की

0: लेकिन कई बार वही काम के अमाउंट बन जाते हैं थोड़ा ज्यादा बन जाते हैं, वही काम के अमाउंट कम हो जाते हैं, तो ग्राहक बोलते भैया इसमें इतना क्वालिटी दिख रहा है, हमारे में क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये रीजन रहता है कि नहीं भैया, कि हर जैसा जिस बजट में आप काम करवा रहे हैं तो उस क्वालिटी से आपको काम मिलेगा।
1: जी, और जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि आजकल हर जगह डिजिटलीकरण हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो फ्लेक्स प्रिंटिंग और जो आईटी सॉल्यूशन आपकी कंपनी है, तो उसमें डिजिटलीकरण का क्या असर हुआ है? क्या आप लोग डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह भी करते हैं, या फिर किस किस तरह की सेवाएं आप देते हैं?
0: डिजिटल प्रिंटिंग से तो हम लोग को थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है मैडम, क्या है हमारे बिजनेस में भी थोड़ा सा कमी आई है, दिक्कत आई है। और डिजिटल प्रिंटिंग से ये हो गया है कि आजकल जैसा कि AI आ रहा है तो लोग बाग AI से बना ले रहे हैं, और इससे क्या होता है कि जैसे कि हमारे ऑपरेटर हैं, काफ़ी सीनियर ऑपरेटर हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और बाकी ये है कि डिजिटल प्रिंट में बहुत हमको सपोर्ट भी मिल रहा है, कुछ जगह हमको सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल प्रिंट के कारण ही आज हमारे अदर स्टेट के कस्टमर हमको फ़ोन करते हैं। जैसे हमारे बगल में उड़ीसा पड़ता है, यहाँ बगल में आप भोपालपट्टनम के आगे जाएंगे तो अदर स्टेट आ जाता है,
1: आंध्र प्रदेश,
0: तेलंगाना,
1: तेलंगाना, जी,
0: तो वहाँ से भी कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं,
1: उतनी दूर से?
0: उतनी दूर से आते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर देते हैं कि भैया हमारा माल कंप्लीट हो गया। कई कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि जो कि डिजिटली ऑर्डर देते हैं और उनका पेमेंट भी ऑनलाइन रहता है, सर्विस भी, उनको आने का भी ज़रूरत नहीं है।
1: तो आप और कौन कौन सी, जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग का आपने बताया था, तो
0: जी,
1: उसके अलावा और कौन कौन से कार्य आपके फर्म में होते हैं?
0: हमारे फर्म में मैडम फ्लेक्स प्रिंटिंग के साथ साथ प्रिंटिंग के ऑल काम होते हैं, जैसे कि LED लेटर हो गया, आपका LED स्क्रीन का हो गया, जैसा पेपर में ऑफसेट में लेते हैं, ऑफसेट में जैसे शासकीय विभागों में रजिस्टर जाते हैं, बैठक पंजिया जाती है, व्यावसायिक दृष्टि में देखेंगे तो जैसा बिल बुक जाता है, रजिस्टर वजिस्टर जाते हैं, तो ये सब कंप्लीट प्रिंटिंग के काम कंप्लीट होते हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं शादी का सीजन लास्ट चल रहा है तो शादी के कार्ड भी प्रिंट होते हैं।
1: तो आपने तो, क्योंकि अपने इस व्यवसाय वाले क्षेत्र में बहुत संघर्ष किए हैं, और हमारे कई युवा जो अभी अपना करियर तलाश रहे हैं, कुछ तो सरकारी नौकरी में, बहुत कम लोग का चयन होता है, कुछ खुश नसीब होते हैं जो सरकारी नौकरी में चले गए, और कुछ लोग व्यवसाय के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप अपने अनुभव से बताएं कि अगर किसी को सफल व्यवसायी बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें?
0: यदि मैडम आपको सफल व्यवसायी बनना है तो आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। एक जो यंग एज रहता है मैडम, उस समय मन आदमी का भटकता है, 10 तरफ मन जाते हैं, 10 दोस्त यार आते हैं, कई बार हम कई जगह रुकते हैं तो उनके बातचीत का भी प्रभाव हमारे माइंड में बढ़ता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भटकाता है। तो वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। यदि आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रिंटिंग लाइन में ही जाएं, आप प्रिंटिंग लाइन अदर लाइन में भी जाना चाहते हैं, सफलता आपको तुरंत नहीं मिलेगा, सफलता के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और आपको एक मन में रखना पड़ेगा कि नहीं, ये काम मेरे को करना है तो यहाँ करना ही है। कई बार हमारे व्यवसाय में भी शुरुआत में थे कि हम दिन दिन भर खाली बैठे रहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुकान छोड़ के कहीं और चले गए, कि हम एक टाइमिंग फिक्स होता है कि जैसे कि हम 10 बजे ओपन करना है, 8 बजे क्लोज करना है, तो उस टाइमिंग को भी मेंटेन करना है। ये नहीं कि नहीं यार आज हमने बहुत काम कर लिया, हमारे पास काम नहीं है, तो हम शट डाउन करके चले गए दोस्त के साथ घूमने, अपने मर्जी से कभी भी छुट्टी कर दिए। तो ये एक डिसिप्लिन रहना जरूरी है मैडम, जब तक आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं लाओगे तब तक नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता।
1: जी, और व्यवसाय भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई बार लोग असफल भी हो जाते हैं, बहुत मोटा पैसा भी लगा देते हैं, फिर शुरुआत में अगर असफलता हाथ लगती है उनके, तो फिर उनका मनोबल भी गिर जाता है। तो जो व्यवसायी, हमारे युवा जो कोशिश कर रहे होंगे व्यवसाय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की, और शायद वो विफल भी हो चुके होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एक बार असफल हो चुके हैं और दोबारा प्रयास करना चाहते हैं?
0: मैडम व्यवसाय में आप जैसा कि म्यूचुअल फंड देखते होंगे, ऊपर नीचे होता है, व्यवसाय भी सेम वैसी है, ऊपर नीचे होता है। ये आपको अपने आत्मा को कंट्रोल करके रखना है, अपने माइंड को अस्थिर करके रखना है। यदि आज आपने व्यवसाय में घाटा खाया है तो निश्चित ही कल आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि उससे आपको ठोकर मिली है, क्योंकि उससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली है, वो अनुभव आपको कहीं

0: नहीं मिलेगा, और उस अनुभव का जो सीख मिलेगा वो आने वाले एक समय में आपके लिए बहुत बड़ा मिसाल बन जाएगा, यादगार बन जाएंगे। जैसे कि हमने भी प्रिंटिंग प्रेस खोले थे तो कई कस्टमर ऐसे हैं कि जिनका हम नाम नहीं ले सकते, कि काम कराने के बाद पेमेंट के लिए घुमाना, और यदि हम फोन किए तो बदतमीजी करना। तो इस समय हमको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है कि हम जानते हैं कि यार हमारा पैसा डूब रहा है, लेकिन फिर भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि यार हमारा मार्केट ना खराब हो जाए,
1: मार्केट में रेपुटेशन जो है,
0: मार्केट में हमने जो काम किया, जो समय दिया, वो आदमी 10 जगह बता दे कि नहीं यार ये दुकान का ओनर बदतमीज है, ये आके हमारे यहाँ बदतमीजी किया, लेकिन सामने वाला ये नहीं समझता कि यार उन्होंने बदतमीजी क्यों किया।
1: जी
0: तो कई बार ऐसा हो जाता है मैडम, इसमें यही है कि आपको अपने पर अस्थिरता रखना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को एक सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं यार मेरे को इस फील्ड में जाना है, मतलब जाना ही है। बहुत से व्यापारी ऐसा रहते हैं कि लॉस हो गया तो तुरंत अपना बिजनेस चेंज कर दिए, तो ये मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। क्योंकि यदि आप एक ही बिजनेस में रहते हैं तो आपको सफलता तो मिलती ही है, लेकिन उस बिजनेस से आपको पूरे मार्केट, पूरे समाज में एक पहचान मिलता है, उस बिजनेस से ही आज आपको एक इज्जत और एक प्यार मिलता है। तो मेरे ख्याल से आदमी को अपने आप भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, और कुछ जो ऊंच नीच आती है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। नुकसान हुआ है तो ये मन में ठान के रखिए कि आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा ही होगा,
1: मार्केट की तरह वो भी ऊपर नीचे हो
0: गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जैसे हम अगर वर्तमान समय की बात करें, और आपने थोड़ी देर पहले ये बोला भी था कि आजकल एआई आ गया है और एआई का आप लोगों को फायदा भी हो रहा है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है, तो जैसे जैसे तकनीकी तरक्की कर रही है तो वैसे ही ये प्रिंटिंग का क्या भविष्य आपको आगे नजर आता है, क्या रिवोल्यूशन इस क्षेत्र में हो सकता है?
0: प्रिंटिंग लाइन ऐसा है मैडम कि प्रिंटिंग लाइन में भविष्य बहुत उज्ज्वल है। प्रिंटिंग लाइन एक ऐसा ये समुंदर है, उसमें आप जितने अंदर जाओगे उतना अंदर ही जाते जाओगे, उसका अंत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी 6-7 प्रकार के अलग अलग मशीन लाए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कम लग रहे। हर 3 महीने में कंपनी एक नया मशीन लॉन्च करती है और उसमें इतना ज़्यादा एडवांस रहता है। प्रिंटिंग लाइन में आप जितना अंदर जाते जाओगे उतना हर चीज़ आप देखोगे प्रिंटिंग लाइन से ही है। प्रिंटिंग लाइन ऐसा हो गया है कि एक आम आदमी, चाहे वीआईपी आदमी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी नॉर्मल हो, उसका हर आदमी कहीं ना कहीं प्रिंटिंग लाइन से उसको आवश्यकता पड़ती ही है। यदि आज घर में आपके मारा एक छोटा से बच्चे का जन्म हुआ तो भी आदमी प्रिंटिंग लाइन के पास भागता है, एक छोटा सा कुछ दुख का कार्यक्रम हो गया तो प्रिंटिंग लाइन पास जाता है, शादी का हो गया तो प्रिंटिंग लाइन एक तरह से आदमी का एक हिस्सा बन चुका है, वहां जाना ही पड़ेगा।
1: तो जगदलपुर में अगर कोई युवा नया व्यवसाय, मतलब नया शुरू करना चाहे, प्रिंटिंग लाइन में आना चाहे, तो उनके लिए अवसर है यहाँ जगदलपुर में?
0: जगदलपुर में अवसर है मैडम, जगदलपुर में अच्छे अवसर है, जगदलपुर में मार्केट भी अच्छे हैं, और सबसे मेन बात जगदलपुर के लोग बहुत अच्छे हैं जो रिस्पांस देते हैं। जगदलपुर में मैडम कभी जल्दी लोग ज़्यादा क्या आपको परेशान नहीं करेंगे, बराबर टाइमिंग देते हैं, और हर चीज़ में कई बार जैसा ऊंच नीच हो जाता है तो सपोर्ट भी करते हैं, इस बात को समझते हैं। हमारा जगदलपुर क्या है, बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा एक परिवार के जैसा है। तो यहाँ यदि आदमी कोई व्यापार चालू करता है तो एक अच्छा एक संबंध भी बनते हैं व्यापार के साथ साथ ना, एक आदमी का जैसे एक बार आपने किसी से काम कराया तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये मेरे इसके साथ अच्छा एक टर्म्स जम चुका है। तो ये जगदलपुर में मेरे ख्याल से जगदलपुर तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बाहर सिटी से तो ज्यादा बेस्ट है।
1: जी जी जी, जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहाँ,
0: बड़े बड़े सिटियों में मैडम आप देखेंगे कि आपका काम से मतलब है, आपका काम हो गया, पेमेंट हो गया, ओके सर ओके, उसके बाद दोबारा मेरे ख्याल से टकराव भी नहीं होते, इतने बड़े मेट्रो सिटी है। लेकिन हमारा जगदलपुर एक ऐसा सिटी है कि आप एक महीने बाद भी देखोगे ना, हाँ यार उसके यहाँ से मैंने ये काम करवाया था, हाँ ये वो मैडम है वो आए थे हमारे यहाँ ये काम करवाए, तो एक याद अच्छा।
1: हाँ, छोटा सिटी है लेकिन लोगों में आत्मीयता है,
0: आत्मीयता है। हमारे जगदलपुर में बहुत से पारिवारिक और अच्छे एक संबंध, प्रेम व्यवहार अच्छे।
1: जी जी, तो आपने तो बहुत सारी जानकारी दी है प्रिंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, लेकिन अंत में जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारे युवा व्यवसायी हैं और जो व्यवसाय के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनसे कहना चाहूंगा मैडम, जैसे कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है या तो एजुकेशन आप कर रहे हैं और बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बहुत सी योजनाएं बनाए हैं जिसके अंतर्गत आपको एक सुविधा भी मिलते हैं, यदि आप स्टार्टअप करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप ट्राई करिए, यदि बाय चांस यदि जॉब नहीं लगता है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मैंने इतना एजुकेशन किया मेरा जॉब नहीं लगा। तो बिजनेस में भी आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं और उस बिजनेस के थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप बैठ के आप अपने आप को पूरा साबित कर सकते हैं।
1: जी जी जी, तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी अभी भी जगदलपुर में बहुत सारे अवसर हैं।
0: बहुत सारे अवसर हैं।
1: तो गणपति जी, आपने अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी सारी बातें आपने बताई है व्यवसाय क्षेत्र के बारे में, प्रिंटिंग क्षेत्र के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आज की अतिथि इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सफल व्यवसायी गणपति चौधरी से भेंटवार्ता। भेंट कर रही थी चंद्र ऋषि ठाकुर। श्रोताओं नमस्कार, जगदलपुर में अब वक्त है मधुरिमा का, पर इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: पेशे मधुरिमा।

चांद से, फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है, जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया में सजा कर जीना, जिंदगी क्या है, मोहब्बत की जुबां से सुनिए।

खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कब कब जिंदगी में, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है।

क्यों दिल से तेरी याद नहीं जाती, क्यों रात दिन तेरे ही प्यार में मन खोया सा रहता है। यह तड़प मेरे खुदा क्यों कम नहीं होती, क्यों रह रहकर उसका ही ख्याल सताए हैं।

थोड़ी थोड़ी इकरार की बातें, थोड़ी इनकार की बातें, आओ बैठो पास हमारे, कुछ पल कर ले प्यार की बातें। तुम बस यूं ही रूठे हमसे, हम छोड़े मनुहार की बातें। जन्म जन्म का साथ है ये ना करना तकरार की बातें। बात करो बस अपनी मेरी, छोड़ो जग संसार की बातें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
0: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways Ajay Tamta at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
10: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
9: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
11: The International Big Cat Alliance IBCA summit was being organized in conjunction with the 4th India Africa Forum summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India Africa Forum summit at a later date, it was decided that set in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries. The first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
9: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
12: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
9: The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team SIT of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
13: The 3-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the CID must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIINewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
14: Burhan Hamza, alias Arjumand Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college Thursday morning. The attackers fired multiple shots at close range and he sustained 3 bullets to the head. Hamza Burhan, born in 1999, hailed from Pulwama in Jammu and Kashmir. He went to Pakistan on valid documents where he joined the Al-Badr terror group. According to the Union Home Ministry, he was an active terrorist and commander of Al-Badr. Since going to Pakistan, he had been motivating youth to join Al-Badr and funding the outfit's terror activities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
9: Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
15: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
9: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, temperature is breaking all records as the entire state is reeling under heat wave. On the fifth consecutive day, Banda district in the state recorded the highest temperature in the country of 47.6 degrees Celsius. More from our correspondent.
16: Torture of temperature continues in a state where mercury is touching new heights every passing day. Bundelkhand is worst hit area where temperature has gone beyond 45 degrees Celsius in most parts of the region. 47.6 degrees in Banda was not just highest in the country, but also 4 degrees above normal, which paralyzed life in the city. Prayagraj was not far behind with temperature reaching 46.6 degrees, 5 degrees above normal. Varanasi recorded 45.6 degrees Celsius. State capital Lucknow also experienced the hottest day of this season with mercury rising to 43.6 degrees, 5 notches above normal. People are having sleepless nights also because of mercury reaching 30 degrees in night. Met department has warned about severe heat wave in some parts of the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
9: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी बहुत ही नायाब है और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब इस जैव पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। श्रोताओं, हम जब अपने पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें जल, वायु, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये हमें धरती पर स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये एक सीमित संसाधन है, इन्हें बचाए रखना, संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और श्रोताओं, जल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% से ज्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी में नदियां, तालाब, सागर, महासागर जैसे जल के कई स्रोत हैं, लेकिन पीने के पानी के स्रोत कम ही हैं। और श्रोताओं, शनह शनह जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे पृथ्वी में पानी की मात्रा घटती जा रही है। तो श्रोताओं, जल संरक्षण हमारे लिए काफी आवश्यक है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, जल संरक्षण की

0: बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, ये एक सामूहिक दायित्व होता है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है और इसके लिए स्वतः जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। स्वतः भारत में कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से वीरेंद्र सिंह जी हैं जो जल संरक्षण के कार्य से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वीरेंद्र सिंह दलित राजरा जिला बालोद से हूँ। विगत 28 वर्षों से जल संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें मैं पारंपरिक हमारे जो हैं तालाब कुआं, इन्हें बचाने के लिए मैं जन सहयोग से जुटा हुआ हूँ। अब तक छत्तीसगढ़ में 40 तालाबों की सफाई कर चुका हूँ। हमारे बालोद जिला का एक तांदुला नदी है, जन सहयोग से इसमें मैंने हर साल अपना योगदान देता हूँ और लोगों से निवेदन करता हूँ कि नदियों को भी स्वच्छ रखें, इसमें कूड़ा करकट प्लास्टिक पॉलीथीन ना फेंकें और हमारे तालाब जो धरोहर हैं इन्हें बचाना है। आप इसमें आसपास नहाते हैं तो रैपर प्लास्टिक दातुन ये सब इस पानी में ना फेंकें, इससे पानी प्रदूषित होगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तालाबों का ही और कुओं का ही है।
0: जी, तो वीरेन जी, जैसे आप आलो जिले से हैं जो दलित राजरा ग्राम है, तो ये जो है एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ कई तालाब हैं, पोखर हैं, नदियां हैं यहाँ पर और जल के कई स्रोत हैं। तो जब जल संरक्षण का कार्य आपने शुरू किया और आज तक आप देखते हैं कि जो जल के संसाधन थे उनमें क्या अंतर आया है, ये बढ़ रहे हैं कि सिमट रहे हैं?
1: वर्तमान में मैं जहाँ दिल्ली राज रहा हूँ, कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो 24 घंटे उनके जल प्रवाह होते रहते हैं। आज पानी की तो हमारे यहाँ भरपूर है, बाकी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तालाब भी सिमट रहे हैं, छत्तीसगढ़ तालाबों के नाम से जाना जाता था, लोग अब उसे पाट कर आसपास घर बना रहे हैं, कुओं को पाट कर घर बना रहे हैं, जिसे अब पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, धरती में समा रहा है। हम सबको एक जरूरी काम ये करना है कि अपने खेतों में भी पानी के संरक्षण के लिए डबरी उबरी बनाएं और किसानों से भी निवेदन करते हैं कि आप गर्मी के दिनों में धान ना बोएं, इसकी जगह कम पानी वाली फसल लें, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उन्नत कृषि का दर्जा पाएं। ये छोटे छोटे प्रयास अभी हम किसानों के साथ भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी वीरेंद्र सिंह जी, तो हम एक जो मूल सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है?
1: सोचो एक पल, ना होगा जल तो क्या होगा कल, जल बिना सब सुना, ये कहावत हमने सुनी है। वर्तमान में धरती का बढ़ता हुआ तापक्रम और पानी का जल स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है खारा पानी जो पीने योग्य नहीं है, इसमें से मात्र हम 3% पानी का उपयोग मीठा जल के लिए कर रहे हैं, इसमें आधा से अधिक तो ग्लेशियर हैं। आज हमारे आसपास जो वर्षा जल है इसको बचाना है, वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, चाहे कुओं के माध्यम से या डबरी के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से धरती तक पहुंचाना होगा, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे और हमें पीने का पानी मिलेगा। ये सब छोटे छोटे प्रयास हम सबको करना होगा।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो आपने जल संरक्षण में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं?
1: जल संरक्षण में सर मैंने जन सहयोग से अब तक 28 वर्षों में 35 से 40 तालाब को साफ सफाई किए हम छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में भी ये जारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, वर्तमान में गाँव के लोगों को लेकर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास अभी जारी है।
0: वीरेंद्र सिंह जी, जब हम छत्तीसगढ़ में आपके किए गए कार्यों की बात करते हैं तो आपको वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो ये उपाधि आपको कब मिली और क्यों मिली?
1: वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ मुझे अभी 2026 में कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित हुआ, वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे छोटे छोटे प्रयास तालाबों को संरक्षण के लेकर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जन सहयोग भी मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब से छत्तीसगढ़ शासन ने कोपरा जलाशय में सम्मानित किया। इसके लिए सर मैं जल संरक्षण के काम अपने घर के आसपास से लोगों से निवेदन करता हूँ कि व्यर्थ पानी को बहने ना दें, जहाँ भी पानी बहे उसे रोकना होगा। और मैं तो जहाँ रहता हूँ दिल्ली राजरा, वहाँ तो पानी 24 घंटा अविरल जल धारा प्रवाह है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो इन्हें बचाने का भरकस प्रयास करता हूं। तो लोग आसपास भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए और एक अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं गांव में जाता हूं, वहां भी तालाबों को बचाता हूं, वहां भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को लेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड सबको लेकर एक जन जागरण नुक्कड़ माध्यम से गाँव वालों को संदेश देता हूँ कि जल को बचाइए, बारिश के जल को आप सब इसको कैच करना है और इसका संरक्षण करना है, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे।
0: जी जी, तो वीरेंद्र सिंह जी, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हम जल का क्षरण कर रहे हैं या जल को हम बर्बाद कर रहे हैं?
1: जल का बर्बादी तो हम अपने घरों से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका व्यर्थ उपयोग ना करें। जैसे हमें सेविंग करना है, सावर से नहाना कोई जरूरी नहीं, आप मग और बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी से उपयोग कर सकते हैं, स्कूटर को बाल्टी से लेकर आप साफ सफाई कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई नल बह रहा है तो उसको बंद करिए, अपने बच्चों को भी उसको बाल्यकाल से प्रेरित करिए पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए, उन्हें आपके संस्कार में शामिल करना होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो स्वस्फूर्त जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। हमें इन्हें अपने घर के आसपास या स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करना होगा। मैं अब तक छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख बच्चों को 28 सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर चुका हूँ और निरंतर मेरा प्रयास जारी है।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों ना हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
1: सर, मेरा पसंद का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में मिलेंगे राहें बहार के, ओ राही ओ राही।
0: वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत पसंद किया है, आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी से, जिन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जल संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे, जो आपने कार्य किए हैं इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, उन्हीं में से एक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हीरो और जल प्रहरी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि ये सम्मान आपको कब प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ, और ये इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
1: लगातार 26-27 वर्षों से जल संरक्षण के लिए प्रयास करते हुए मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में वाटर हीरो और जल प्रहरी सम्मान से देकर मुझे सम्मानित किया, और मुझे बहुत खुशी भी और मुझे ऊर्जा भी मिला। लगातार उसके बाद मैं और जल संरक्षण के लिए जोर शोर से भिड़ा हुआ हूँ, और आसपास के लोगों, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और अपने से ग्रामीण जनता हो, सबको अब साथ लेकर हम जल के लिए जुड़ चुके हैं। किसानों से साथ हम बैठ रहे हैं कि अब जल के एक एक बूंद बचाना है, बारिश के जल को बचाना है। हमारे पास तालाब हैं, कुआं हैं, बारिश के जल को वहां तक, धरती तक पहुंचाने के लिए हमारे पास माध्यम है। वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अपनाना है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हम सब कर रहे हैं।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जैसे आपके दल्ली राजरा का क्षेत्र है, बालोद जिला का है, तो वहाँ आपको ग्रीन कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ग्रीन कमांडो क्या होते हैं?
1: सर, हरियाली के लगातार मुझे प्रयास करते हुए बहुत लंबे समय हो गए, तो मुझे शुरुआत करने में 8-10 युवाओं को लेकर जब शुरुआत किया था 25 साल पहले, हमने छोटे छोटे प्रयास करते थे, वृक्षारोपण, गांव में जाकर आसपास बोरिंग तालाबों की सफाई करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। हमने साइकिल से यात्रा करके, रात में नुक्कड़ नाटक करके, 2007 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से भ्रमण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नुक्कड़ के माध्यम से संदेश दिए। 2008 और 9 में हम भारत और नेपाल की यात्रा की है साइकिल से, और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर पाम्पलेट के माध्यम से उनको संदेश दिए, और वर्तमान में भी हम लोगों से निवेदन करते हैं आप साइकिलिंग ज़्यादा उपयोग कीजिए, पेट्रोल डीजल का हमें बचाना है और बिजली का भी बचत करना है। तो ये सब हम के छोटे छोटे प्रयास से ये सब ऊर्जा हम बचत होगी और हम देश में आगे एक बढ़ते चले जाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके लिए हमारा नाम होता है, आपके अच्छे कार्य के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इसकी एक काफी लंबी फहरिस्त आपके पास है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं।
1: सर, मुझे तो वाटर हीरो और जल प्रहरी के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे 2023 में सम्मानित किया। इसके साथ साथ 2011 में छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर ने, इन्होंने भी सम्मानित किया मुझे, और अब वर्तमान में 2026 में सीट्स संस्था ने रांची में मुझे एकम सम्मान से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 26 साल हो गए, इसके लिए एकम सम्मान मुझे मिला। नित्य नए नए अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने लग जाता हूँ।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें जो है प्लास्टिक काफी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और इससे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है?
1: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं। वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए। इस प्लास्टिक पूरे नदी, तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, ये तो गलती भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि को बंजर कर रहे हैं, गौ माता के पेट में समा रहे हैं। तो हम सबको अब सोचना होगा कि इसके जगह वैकल्पिक रूप हमें स्टील ग्लास ही उपयोग करें, और शादियों में दोना पत्तल का उपयोग करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें।
0: जी, तो ये जन जागरूकता से ही प्लास्टिक इस्तेमाल को रोका जा सकता है।
1: सकता है।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, आपने अभी ये बताया कि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था। तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था।
1: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया। इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत जरूरी है। ये वेटलैंड साइट हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है। वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें, ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा। आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
0: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपये से मुझे सम्मानित किया था। मैंने जंगलों में आग लगाने से जीवों को बचाने के लिए, जैसे गर्मियों में मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 200 सकोरे लोगों को भेंट करता हूं और जंगलों में जाकर वहां पानी की व्यवस्था करता हूं कि पशु पक्षियों के लिए, और आग को स्वयं बुझाता हूं। इसलिए शासन ने मुझे जैव विविधता का पुरस्कार भी दिया था। वर्तमान में भी गर्मी के दिनों में लोग महुआ को बीनने जाते हैं और उस नीचे वृक्ष के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे पूरा सारा जंगल में आग फैल जाता है। तो ये जन जागरूकता भी मैंने चला रहा है कि आप महुआ को बीनने से पहले उसे झाड़ू से साफ करिए, जंगल को बचाना जरूरी है। आज जंगल रहेगा तो जैव विविधता रहेंगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में मैं 3,000 सीड बॉल, जो विलुप्त होते बीज हैं, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, और इनको लेकर मैं जंगलों में सीड बॉल बनाकर अभी फेंक रहा हूँ बारिश से पूर्व, और लोगों को भी भेंट कर रहा हूँ। लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आम आप आपके घर में भी आम के सीजन है, गुठली निकलेंगे, इसको आप जंगलों में फेंकिए, कम से कम ये हरा भरा जंगल होंगे, फल फलेंगे तो पशु पक्षियों के भी काम आएंगे। तो वर्तमान में अभी मेरा ये काम बारिश से पूर्व हरियाली लाने के लिए मैं सीड बॉल और बीजों को एकत्रित करके जंगलों में फेंक रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आपके घर में जो जामुन के बीज मिलेंगे, अभी आम के गुठली मिलेंगे, इन्हें जंगल में फेंकिएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दीजिएगा।
0: जी जी वीरेंद्र सिंह जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफी भरपूर है, और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्लीराजहरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहां भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखिए, जब वनों की बात होती है तो वहां वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है। पेड़ पौधों का काफी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है अब गांवों में हो गई है, ये घरों तक पहुंच गए हैं। तो इसका जो कारण है, हमारा जो मानव अस्तित्व का जंगल की ओर बढ़ना, इसे आप कैसे देखते हैं?
1: यूं तो हमारा छत्तीसगढ़ 44% हरियाली से आच्छादित है। उसमें एक जिला है हमारा बालोद जिला, वहाँ डैम है बहुत बड़ा, तांदुला जलाशय, और दल्लीराजहरा में भी कई प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण आसपास आपको रात को जब भी आप कभी विचरण करेंगे, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और हिरण, ये सब आपको बंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और राजहरा बालोद के मार्ग में आप गुजरते, बस में कभी भी जाएं या रात्रि को विचरण आप किसी भी माध्यम से जाएं, तो आपको हिरण अवश्य देखने को मिलते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है कि ये इन्हें नेचुरल जगह मिला हुआ है। आम जनता से निवेदन किया जाता है कि आप इसको संरक्षित करने के लिए भी आप अपना योगदान दें और जंगलों को ना काटे, जब भी कहीं आग लगे तो वहाँ अपने फॉरेस्ट वाले को सूचित करें। जंगल को बचाएंगे तभी वन्य प्राणी बचेंगे और तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा।
0: जी जी वीरेंद्र सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में हर माह के आखिरी रविवार को आते हैं और वे अपने मन की बात साझा करते हैं आम भारत की जनता से, तो उसी कार्यक्रम में आपकी भी बातें एक बार साझा हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में चर्चा किए थे, तो वो कब की बात है और उसमें आपकी जो बातें शामिल हुई थी उसके बारे में आप बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा ये पूछा। आजकल वर्तमान में मैंने कुछ विगत वर्षों, करीब 10 वर्षों से शादियों को एक मॉडल के रूप में, मतलब उसमें मैं दो परिवारों के साथ सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, तो मैं शादी के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर एक महाअभियान अपने जिले में शुरुआत किया है। शादी होते हैं वर वधु के, तो मैं पौधा के साथ साथ वहाँ पोस्टर बैनर लेकर जाता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में जल समस्या है, तो जल वर वधु को पौधे गिफ्ट करके वहाँ जितने भी खड़े हैं जल स्लोगन लिखा हुआ रहता है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, ये पोस्टर। और जैसे बारात उरात में जा रहे हैं तो दूल्हे के गाड़ी में मैं पोस्टर लगाता हूँ, आओ जल बचाएं। तो एक संदेश के साथ साथ और जैसे बैंड बाजे के साथ इनका जब बारात निकलता है तो हम पोस्टर भी पकड़ लेते हैं जल का संरक्षण का, वन्य प्राणी के संरक्षण का, तो एक नया संदेश जाता है। इसी तारतम्य में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे छोटे छोटे प्रयास जल संरक्षण के 101वीं कड़ी में उन्होंने अवगत कराया, शादी में बारात जल बारात दूल्हा द्वारा निकाला गया, तो वो बहुत अच्छा लगा, याद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिला और हमारे कार्य को गति मिल रहा है और लगातार और अच्छे से हम कुछ नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं, लोगों को कैसे ध्यान आकर्षण करें जल बचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। मैंने अपने कपड़े में भी वन्य प्राणी संरक्षण, वन को आग से बचाने का पूरा ड्रेस ही सिला लिया है, जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है। जैसे अभी जंगलों में मुझे जाना होता है आसपास के गांव में, तो मेरे ड्रेस में लिखा है वनों को आग से बचाओ, वन्य प्राणियों का ड्रेस है। तो स्कूलों में चल जाता हूँ तो बच्चे मुझे अट्रैक्ट होके देखते हैं, वो स्वस्फूर्त उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, जल बचाने के लिए भी मेरा ड्रेस बना हुआ है। और वृक्षारोपण को जब बालू जिला में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, और ड्रेस के माध्यम से मैं पूरे स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को बोलता हूँ आपको भी अपने धरती माँ की रक्षा करना है, इसलिए आपको भी एक पौधा लगाना है स्कूलों में और इसका संरक्षण करना होगा। पानी जब आप पीते हैं बॉटल में लाते हैं, इसे फेंकना नहीं, आपने स्कूल के गार्डन में इसको फेंक डालिए पानी को, ये पौधा बड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और आप जब भी जहाँ जाएंगे फिर याद आएगा कि हमने ये पेड़ को बड़ा किया था।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका वीरेन सिंह जी, और बेशक ही आपकी इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ हरियाली से भरा प्रदेश तो है और हरा भरा होगा। और कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
1: श्रोताओं, आपसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य प्राणी संरक्षण हो, जंगल को बचाना हो, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हम अपने अपने घरों से करिए। आने वाले अपने आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनको एक ऐसा संस्कार दीजिए कि पानी का उपयोग जितना होना है उतना ही करें, बिजली का उपयोग जब काम हो तभी इसका उपयोग करें, आसपास कहीं जल बह रहा हो तो उसे बंद करने के बच्चों को बताइए। और ये छोटे छोटे प्रयास बच्चों को मन में अभी से हम उनके बीज बोएंगे पर्यावरण संरक्षण का, ये आगे चलकर एक नागरिक बनेंगे और ये काम करके देश में अपना नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए हम सबको भी छोटा छोटा योगदान देना होगा। अभी इस गर्मी में आप सबको देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो बारिश में आप भी एक एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण कीजिए, खेतों में भी आप फलदार पौधा लगाइए, आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। सभी किसानों से मेरा ये हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे और कम पानी लगेगा वह फसल बोएंगे, और बारिश के पानी को धरती तक पहुँचाने के लिए हम कुआं तालाब अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करेंगे और जल स्तर को बढ़ाएंगे। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार, मानव और विज्ञान का गहना, पर्यावरण धरती का है गहना। तो मैं अपने बच्चों को भी ये दोहा बोलिएगा, बच्चे एक वृक्ष अनेक, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली।
0: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और श्रोताओं, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैं, इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम अवश्य होगा। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने कई पौधे लगाए हैं, और इनके जो प्रयास हैं वो आज नहीं, वो आने वाले समय में प्रकट होंगे। तो श्रोताओं, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है, और हमें अपनी धारा को बचाने के लिए अपने जितने भी प्रयास करने चाहिए हमें करने चाहिए। इसी का संदेश आज वीरेंद्र सिंह जी ने हमारे कार्यक्रम में दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हम जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आप आ जाए और हमारे श्रोताओं से जो इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी श्रोताओं तक अपनी छोटे छोटे प्रयासों को पहुंचा सका है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी रायपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वॉटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
3: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
2: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
4: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
5: रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
6: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, लिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल्का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमरेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है,
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे इसको भी डालो।
5: हाँ,
4: ये देखो
5: देखो देखो कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
5: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो
8: पटना।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रहे हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
9: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
10: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और आठ

0: 7000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाए इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।

0: IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700001-4242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
4: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं 15 फरवरी 1985 को रिलीज हुई फिल्म साहेब के गीत और बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

साहिब फिल्म के निर्देशक हैं अनिल गांगुली, पटकथा सचिन भौमिक का और छायांकन है पी सुबेदार का। इस फिल्म के मधुर गीतों की रचना की है अनजान ने और इन गीतों को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए अनिल कपूर, अमृता सिंह, उत्पल दत्त और देवेन वर्मा। अन्य कलाकार में दिखाई दिए विश्वजीत, विजय अरोड़ा, एके हंगल और दिलीप धवन। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

इस फिल्म के गीतों को गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले, एस जानकी और बप्पी लहरी ने। तो आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साहेब फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरूद्व कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित कामयाबी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को अधिक रोचक तथा व्यावहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले को स्टेट कैपिटल रीजन SCR में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने गुरुवार को राजनांदगांव में आयोजित व्यापारी महाअधिवेशन में इस संबंध में घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे। वहीं श्वेता शिवालय द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज इसमें सुनेंगे मेरी पसंद यानी मेरे पसंद के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म देवदास से। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। नुसरत बदर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है इस्माइल दरबार ने।

अजय और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए फिल्म सिंघम का गीत। गीत रचना स्वानंद किरकिरे की और तर्ज बनाई है अजय अतुल ने।

लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। नगमा निगार स्वानंद किरकिरे और मौसिकार है शांतनु मोइत्रा।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म विवाह का गीत। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन।

हिमेश देशमिया के संगीत निर्देशन में आइए सुने फिल्म दिल मांगे मोर का गीत। स्वर दिया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने, शब्द हैं समीर की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म गर्व का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

0: गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद में मेरे पसंद के चंद गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिए सुबरी बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत।

জানা আমি না।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में आप सुन रहे थे सुबरी बघेल और साथियों की आवाज में हल्बी लोकगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे फनकार को जिसने खामोश कागजों को अपनी कल्पना की उड़ान दी और साधारण कहानियों को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। एक ऐसा निर्देशक जिसने कैमरे की आंख से जज्बातों को पढ़ा। एक ऐसा पारखी निर्माता जिसने जोखिम को कामयाबी में बदला। और एक ऐसा कलमकार जिसके शब्दों ने रूह को छुआ। जयपुर की मिट्टी से उठकर जिसने माया नगरी के सिंहासन तक का सफर अपनी मेहनत और जुनून से तय किया। आज हमारी ये खास महफिल सजी है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सिनेमा के असली जादूगर सावन कुमार के लिए।

9 अगस्त सन 1937 को राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके पालने में ही शायद कला की लोरियां गूंजती थीं। जयपुर की उन ऐतिहासिक हवेलियों और सांस्कृतिक आबोहवा ने सावन कुमार के भीतर वो कलात्मक सोच पैदा की जो आगे चलकर बड़े पर्दे पर नजर आई। अपनी आंखों में सुनहरे सपने और दिल में कुछ करने की बेतहाशा जिद लेकर जब वो जवान लड़का मुंबई की गलियों में पहुंचा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये नाम फिल्मिस्तान के पोस्टरों की शोभा

सावन कुमार का फिल्मी सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। साल 1967 में जब उन्होंने फिल्म नौनिहाल के जरिए बतौर निर्माता कदम रखा तो पूरी इंडस्ट्री ने एक नए और साहसी फिल्मकार की धमक महसूस की। ये फिल्म सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि ये उनके संघर्ष की जीत थी जो उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाते हुए हासिल की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे नेक तो एक साधारण सा इंसान भी फिल्म जगत की बुनियाद हिलाने की ताकत रखता है।

0: It's another six.
1: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा।
2: ये क्या किया?
3: कैश तो गया।
1: पेमेंट कैसे करेंगे?
4: टोकनाइज कार्ड से।
3: टोकन?
4: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा।
3: ऑलराउंडर
4: ओके भाई। RBI कहता है कि
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
7: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार। जब सावन कुमार ने 1972 में गोमती के किनारे के जरिए निर्देशन की कमान संभाली, तो उन्होंने सिनेमा को संवेदनशीलता का एक नया पाठ पढ़ाया। ये मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म थी और सावन कुमार ने जिस खूबसूरती से उनके अभिनय को निखारा, उसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। वे अक्सर ऐसी कहानियां चुनते थे जिनमें महिलाओं के संघर्ष, उनके त्याग और उनकी शक्ति को प्रधानता दी जाती थी।

सावन कुमार केवल कैमरा चलाने के उस्ताद नहीं थे, बल्कि उनकी उंगलियां जब कलम थामती थीं, तो कागज पर जज्बात नाचने लगते थे। एक गीतकार के रूप में उनकी गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शब्दों को रूह की भाषा बना दिया। उनके लिखे शब्दों में प्रेम की मिठास भी थी और विरह का दर्द भी। जब एक निर्देशक खुद अपनी फिल्म के गीत लिखता है, तो वो संगीत और दृश्य के बीच एक ऐसा अदृश्य पुल बना देता है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर बयां नहीं कर सकते। उनकी लेखनी ने वो अमर शब्द दिए जो आज भी अकेलेपन में हमारे हमसफर बनते हैं। आइए सुने उन्हीं का लिखा ये गीत।

अगर हम सावन कुमार के करियर पर नजर डालें तो सौतन, साजन की सहेली और सनम बेवफा जैसी फिल्में उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। सौतन जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि मॉरिशस जैसे देशों में शूटिंग कर भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय कैनवास प्रदान किया। उनकी फिल्में अक्सर रिश्तों की उलझनों और सामाजिक मर्यादाओं के बीच पिसते किरदारों की कहानी होती थी। उन्होंने अपनी हर फिल्म में प्रेम और परिवार की एक ऐसी चाशनी घोली जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया।

फिल्म इंडस्ट्री में सावन कुमार को सिर्फ उनके काम के लिए नहीं बल्कि उनके बड़प्पन और नई प्रतिभाओं को तराशने के उनके हुनर के लिए भी जाना जाता था। उन्हें कई बार सम्मानित किया गया, कई पुरस्कार उनकी झोली में आए, लेकिन वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान दर्शकों का प्यार था। उनका पूरा जीवन सिनेमा के प्रति एक समर्पण ही था।

कुदरत का कानून है कि हर खूबसूरत सफर का एक अंत होता है। 25 अगस्त सन 2022 को जब इस महान कलाकार ने अंतिम सांस ली तो मानो संगीत की एक धुन अचानक थम गई। 86 साल की उम्र में सावन कुमार इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने पीछे यादों का वो समंदर छोड़ गए जिसकी लहरें आज भी हमारे दिलों से टकराती हैं। बॉलीवुड ने उस दिन अपना एक ऐसा चिराग खो दिया जिसकी रोशनी ने कई डूबते करियरों को सहारा दिया था।

वक्त की रेत पर कदमों के निशान तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन सावन कुमार वो शख्सियत थे जिन्होंने उस रेत को ही सोना बना दिया। आज भी जब उनकी बनाई कोई फिल्म टीवी पर आती है या उनके लिखे शब्दों की कोई धुन कानों में पड़ती है तो ये यकीन और भी गहरा हो जाता है कि सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं। उनकी विरासत आज भी मशाल बनकर चमक रही है और आने वाले दौर के हर उस कलाकार का रास्ता रोशन करेगी जो दिल की गहराइयों से फिल्में बनाने का हुनर सीखना चाहता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था निर्माता निर्देशक सावन कुमार पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। 11:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम रुसरुसा में अब आइए सुनते हैं लोक गाथा चंद्रकांत राजा का दूसरा भाग। गायिका है शांति और साथी।

कार्यक्रम रुसरुसा में अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा चंद्रकांत राजा का दूसरा भाग। इसका अगला भाग आने वाले रविवार को प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।

0: अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से सभी का हृदय
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: मोचो माटी ये कार्यक्रम सुन तो सप्पाय भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जोहार। आज आमी आपन मन के सुना तो काजे धरुन बाती इलू से हलविने कविता पाठ ठसा और गोंडी कहानी। तो देखा ये समय बल्लने तिहार बार चो समय आए असने गोटुक तैयार होए से नवा तिहार आरु ये नवा तिहार ने जोन दिने नवा होए से हुन दिने बल्लने खातो जिनिस काजे पूजा पाठ काजे गाँव चो लोग मन कुड़ई पान के काम ने आनुआत। तो यही कुड़ई पान चो महिमा के कविता ने गाउन बाती सुनाए सोत श्री घासीराम
1: नंदी देड़ी

कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय, सतई कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय, दखनवा जीव न काजे ये दे काम देवाय, दखनवा जीव न काजे ये काम देवाय, सरगी सेव न बचौरले सबके देवाय, दखा सरगी पान के बचौरले सबके देवाय, दखा कुड़ी पान सबले ज्यादा काम देवाय, हमचो नदी दड़ी चो कुड़ी पुल कुबे सुंदराय, अचनाचा काय पिला मान जोने उजुराय, अचनाचा काय पिला मान जोने उजुराय, नंदी दड़ी दड़ी कुड़ी बूटा खुबे रहे से, दका नंदी दड़ी दड़ी कुड़ी बूटा खुबे रहे से, दका ए गोट के सुर तकरुन कुड़ी बचावा, दका ए गोट के सुर तकरुन कुड़ी बचावा, कुड़ी पांच सबके जदे काम देवा, कुड़ी पान रले जानो काम देवाय, जसन जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ, हे जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ, ये तो एकादे सांगते रले सबके जान तो राय, हाँ ये तो एकादे सांगते ले के सबके जान तो राय, दका कुड़ी उठ के बचाओ रले काम देवाय, काई कुड़ी उठ के बचाओ रले

जंगल बाटले जड़ी दखले काम देवाए जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआ जसन सुगर बीमर रले उनके सबके छंडौआ ये तो काजे कोड़े बूटके हमके बचातवाए दका लोग रोग रहे दे हुनके दूर करुआ तेरो रोग बीमारी रहे से हुनके दूर करुआ हम तो बतर की तरह।

गणित जीवन हम तो जीवन आय तरक सिवन गणित जीवन हम तो जीवन आय यदे सब जन के बचौरले काम देवा यदे सब बन के बचौरले काम देवाय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतो राय सत संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतोरा सत सियन मन के सांगल गोट के हम के दतोराय सत सियन मन से सांगल गोट के

ले हमके दस्तात वाय जंगल बाटे रुक रहे हमके बचत वाय जसन बैदी रुक देखुन हमी हमके बचत वाय जसन जड़ी रुक रली जले हमके बचत वाय हाट पटन जड़ी बूट के बिकुक ने तो नुआई हाट पटन।

दुरैल। यदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिली, यदे माता पिता सांगून दिला सबके काम दिली। ते गोट के सुरत कर ले सबके बनुआ, ते गोट के सुरत कर ले तिप्त बनुआ। हमी माई बाबत को गोट की निधर काय तो बनुआ, सतय माई

0: ने हुजूरार।
1: तो देखा कुड़ी पांच महिमा के गाउन बाती सुनाते रहला श्री घासीराम एदाय सुना ठसा आरु ये ठसा के बले ने संचालन कर सोत चमरा राम कश्यप।
2: मैं आज ये ठसा धरो नीलू से मैं चमरा राम कश्यप और मचो संगवारी मान लखमू राम मरकाम संपत राम नाग और लक्ष्मणी कश्यप आमी ये ठसा मन के धरो नीलू से आले संगवारी ए लगे या बसा और मूर करू एबे ठसा। आले आले सबले पहिले मंजी गता रहू ए संपत राम नाग भाई आले तुई काय ठसा आनले से जल ठसा सांगोल दक ना
3: आनले से ना मतलब ठसा से।
2: हाँ हाँ
3: सुना
2: आले आले
3: नानी कांदा के रांदा बोलतो के बड़े कांदा के रांदला।
2: हाँ हाँ हाँ
3: नानी कांदा के रांदा बोलतो के बड़े कांदा के रांदला पुलिस घरे जो बोलतो के गोय गोय गागला
4: जेट गेली बरसाईली मांतर तुई नीलीस जेट गेली बरसाईली मांतर तुई नीलीस भाव खाऊन खाऊन घरे बसलीस भाव खाऊन खाऊन घरे बसलीस काय बसून बसून पुटले मरून जेलीस
2: लक्ष्मणी
5: सोना चो कंटी माला ए दे दका छातिन लूरे से
2: छातिन लूरे से
5: लेकी मन खेलू की ला जाले एक ही उरुला
3: आले मचलग और काय सुखसी काय बांगा काकी नी सांगा काय सुखसी काय बांगा काकी नी सांगा आमचो घरे सगाईला रांदला चुचाय
4: बांगा
3: नाही रोहत नाही गाव बाटे
2: चुचाय आले लखमू भाई
4: मोचलक बोला से आजकल चले का लेकिन खूबे फोबो ही बात नहीं बरन बरन चो ड्रेस मन पिंदर बात फाटलो मन के स्टाइल आई बोलन भाते मुंचे ऊपर गोटक ठसा आसे अमूस गेली नवा आय से हुन नवा कपड़ा धरुक सहरे जाय से अमूस गेली नवा आय से हुन नवा कपड़ा धरुक सहरे जाय से मोंडरा एक पैसा देऊन फाटलो कपड़ा पिंदू नकटी मोचो पुपरे फोपई होय से
3: आजकल असनी जुआन लेखा
2: लिखे मचो ठसक सुना हाते नाई दाम हाते नाई दाम मामा चो बेटी के मां मामा चे बेटी के मां
4: पैसा नहीं है हाथे और मामा चे बेटी के मां
3: मामा चे बेटी के मां
5: आले थे वाते मोबाइल गुटक थसा बोले
3: आले आले
5: कसी बेलती नानी असना है
4: अच्छा
5: नानी असना है कसी बेलती नानी असं नाही मा तर बानी खूबे आहे
3: आले असनी मचला गोल्या से
4: आले संपदाल सुना
3: सपाय लोग नांगर पांदला मोय तो पांदे नाही सपाय लोग नांगर पांदला मोय तो पांदे नाही पांदले पांदे नोले नाही गरे गोठक बोयला नाही
4: मोचलक बल गोटो का से ठसा आले एक बल सुनते
3: भी आले आले
4: जसन देश चो उसन भेस करिया करिया केस जसन देश चो उसन भेस करिया करिया केस बिहाती लेका लेकी ठसाए घरे रोजी होए कलेस रोजी होए कलेस
2: हाँ हाँ आले ते मजा गटक सुनात आहे आले जसन बाबूचो बाजा जसन बाबूचो बाजा असन नोनीचो नाचा असन नोनीचो नाचा
3: नाही उन पर जसन बाबू नाचो आहे उसने नोनी बोल नाचो आहे
4: आले
5: आले मोय गटक फेर ठसा आस
4: सुनाते बे
5: चैतगिरी मुक्तावली चैतगिरी मुक्तावली हाट बसे से धड़ी चो धड़ी
3: धक्का हसनी मतलब हसता ने
4: रवाले आले
3: सपाय लोग चो नांगर गड़े मोचो नांगर नहीं सपाय लोग चो नांगर गड़े मोचो नांगर नहीं गड़ ले गड़ती नो ले नहीं लोरा पजाए नहीं
4: नागर बले आले मोचलक बलूस नाही असे जुगे चतुर्चो दुवारे ठान खावरा खाए बीड़ा पान जुगे चतुर्चो दुवारे ठान खावरा खाए बीड़ा पान गरीब लोग भूखे सोवत भोबड़ा डोकरा लेकी ठसन बले आई लव यू मेरी जान
2: सरम नहालो गरम चाहा
4: अच्छा सरम
2: नहालो गरम चाहा फुकुन फुकुन खा
4: गरम बल पियो तो ऊपर ले फुकुन फुकुन बल उनके पियो ने
2: फुकुन बल खाओ पड़े पे ऊपर है साले
5: मतलब फिर आस्ता ठसा कामरत ले दादा भाई कामरत ले दादा भाई काम सर ले कोलिया खाई आय आय
3: आय काय कामरत ले दादा भाई
4: सुंदर तुचो कांचो बाली सुंदर तुचो झुड़ा सुंदर तुचो कांचो बाली सुंदर तुचो झुड़ा मुंह आसिले की बेंद्री असन मुंडे चपड़ा गुड़ा
3: गुजुड़ गुजुड़ बाजा बाजली करंजी गचे तले गुजुड़ गुजुड़ बाजा बाजली करंजी गचे तले मेंढा मारून बुरसुंगाला रेणु पुजारी करे
5: बेटा रले बुआरी बेटा रले बुआरी गाय रले दियारी
3: बेटा रले तेबे तो बुआरी आनु आमने गाय बोला रले तेबे तो दियारी बनाओ
4: आले गोटो कास्ता मुझे लगा ले सुनो एके बल्ले लेका लेकी मन आजकल भया हो रहत नहीं लेकी चो पाटे धसा तो काजे मुंचो ऊपर आए काय गोटो दखले मैं तू के होले मैं बहा दखले मैं तू के होले मैं बहा तुचो डिमांड चो चक्कर में मोचो घर द्वार बल गया और तुचो प्यार ने पगली मैं होले मांगुन खाया
5: अले मैं गोट फेर घर चो लग बीक घर चो बोय लग बीक व्यवहार करुक सी
2: करुक सीखल तो आम जीवन चले दे हाँ रेडियो सुन तो भाई बहन मन ये तो रली ठसा असनीची हसी मजाक ने रतो राय और असनी ठसा होली कहनी होली नहाले गीत गोविंद होली ये सब के आमके भूलकतर न आए और ये तो समय नानी पीला मन बोले असनी ठसा हो गीत हो कहनी हो उन मन के सीखा तो राय जाना तो राय तेवे आमचो ये बस्तर चो बोली ने जितलो बोले गीत गोविंद आसे ठसा आसे कहनी आसे मन बाचू रहे दे और असनी संगे ये चो जातोपुरे मैं चमराराम कश्यप और मचो संगवारी लक्ष्मणी कश्यप संपत राम नाग और लखमू राम मरकाम सपाय लोग करूं से जुहार।
1: हाँ ठसा अपन मन सुनते रहलास आर संचालन करते रहला चमरा राम कश्यप मांतर एदाय सुना गोंडी ने कहानी आरु एके सुनाय सोत श्रीमती घसनी
0: सात जरदा धार लोर वरा हे लड़हार मंदले अधे लड़हारी दादहार लोर अंगहारी ततुर ले अचो अधे लड़हारी नोड़ वप किंदुंग ले अब अंगहारी हचो बगमने ना जरा दंगे बा हे लड़हारी दनले मते मैं अकेले ले वे अंगहारी ना पीलनु अनिन ये तो द्वार से तो तुम रिन हादन हादन हादी तुम ले अचो रच्चे डपते गाटो पैसिन दाय नले तुम रखने अद नये बसी तान परक परक अद नये गला दाय नले अचो इत पक्का दांता माँ वहेला रच्च माई दस कुड़ पहले का पप्पा इसीन इंजर इंदुंगले इंदुरले और दादा हरालोर अच्छो ये पत्ता हन्नो तत्ता लाए जो राढ़ा रह कुन होगा अंदुरले अच्छो माँ तो वे हो वराय दांता नहीं धुन गलो हो मिजर नेंड तो वायर नेंड दाकर इंजर ताना गाट तिंदना तुंटा के किंदुंगले ताना गाट तिंदना तुंटा के किने किने कद मुने ते दितले निन पैर पर एक दिया वा पैर हाथले अधेगा पतुन पैसीन अच्छे अंद मुंज सिबगा तो मंदले अंद मुंज मरसले ले रोजे गाटो सनल अंद मुंज तो नत पेड़ी ईद मटाता मुंजा लाद मटाता मुंज ई वायु मुंजा वायु कदा मुदानिया इंजरत पर केंद लत पेड़ी अच्छे ईद मराते देवसर अद मराते देवसर अद मुंज पर बांधले कौदो नुकसिन के इंदले पेर के सुड़का वायो इंजर पेर अत पेट के इंदले ईद मटा ता मुंजा लाद मटा ता मुंज ई कदा ए वायु मुंजा वायु कदा मुदानिया इंदले अचत मुंज भूख इना डे इंदले अचत अत पेट पर डपता गाट तुन अद मुंज तुन हिंदले जद मुंज पर गाट तिन जिन अचड़े पैर मरते देव नले अचे जे कच्चे यत कहनी पाटा हुई का इरी लो दोरी री लारी इरी री लो दोरी री लारी लाई இரிலோ யோரி ரிலோ ரிலோ

लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सप्पाय बहिन दीदी मन के मैं रत्नी करे से जुहार और नानी नानी पिला मन के बले मच बाटले खुब्बे खुब्बे मया बहिन मन आजकल तो घाम चो समय आए असन घाम समय ने फिर ये असन समय ने पिला मन स्कूल छुट्टी होली से और पिला मन घाम बेरा बोलते रहुआ आजकल आमावल होली से आमा बेरा रुके रुके बोलते रुआ अस बहिन मन पिला मन के घाम बेरा ध्यान दे तो राय और घाम ने बुलुक नी दे तो राय जे चले काया कि बहिन मन पिला मन के घाम ने बुल दे तो जर और मुंड दुका ए सब पाए मन होगा पिलाची मन नहीं सियान लोग बोले जरूरी काम होली ची घाम समिया ने घर ले बाहर जा तो राय बहन मन और गांव न होले कहाँ गेले बोले मुंड कान के अच्छा तुआल ने बांध तो राय और घर ले निकर तो राय और संगे संगे पानी बोतल बले धरुन जा तो राय तो बहन मन और आजकल तो गांव चो बहन मन भाई मन बल तो बेड़ा खड़ा बुता जाए सोची मानतर आजकल चो घाम ने असन घाम ने जातर बल तो मुश्किल आसे और आम चो गांव चो भाई बहन मन घाम समय आने बल जाऊ चियात मानतर खिनी ध्यान दे तो रहे असन समय आने अंधार अंधार जा तो रहे खिनी घाम फेंक लेने घरे ये तो रहे बेड़ा खड़ा बुता बोले खिनी सीतर समय आने जा तो रहे मानतर बहन मन आम चो जीवना कहीं ना कहीं चिंता रहे से ची बहन मन आम चो जीवना ने अच्छा रतो काजे आम के अच्छा अच्छा खातो राय समय ने योग व्यायाम बले करतो राय ये चोले कि आम चो देहे हाथ पाए बले अच्छा रहे दे बहन मन कोनी कोनी भाई बहन मन कमजोरी लाग तोर और खिनी बुता कर ले थकी लागे से उन भाई बहन मन ये और चिड़चिड़ापन बल लागू है ये सपाय आम चो कमजोरी चो कारण ने हुआ है बहन मन असन समय ने आमचो खान पान ने ध्यान दे तो राय जेके बोल सो संतुलित भोजन जोन जीनिस होय से कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामिन असन जीनिस मन ने रह से ए मन के खातो राय तेबे आमचो देह हाथ पाए अच्छा रह दे ए जीनिस मन के खादले आमचो कमजोरी थकान होय से नहीं जसन की बहन मन भात संग संगे आम के मांस मछली और अंडा हरा बीती साग भाजी खातो राय और पीला मन के बल खुआ तो राय बहन मन ए मीर तो गांव मन ने तो पाक फर मन मिले मीरे से ची ए मन के बल खातो राय और पीला मन के बल खुआ तो राय कोनी कोनी गांव च बहन मन के दो कुआम घरे की केरा रुआ आमा रुआ ए मन के हुन बहन मन घर च पीला झीला खुआ उनवात और बिकुक निवात असन करतोर नुआ हाट बाजार ने तो बिकतोर चियाए जुगे रले बिक तो राय बहिन मन ये ची नहीं मान तर पाक फर मन पिला मन के खुआ लेने आम चो पिला मन बले अच्छा रह दे एक खाद लो ने आम चो दे हाथ पाए बले अच्छा रह दे बहिन मन काम बुता कर तोर चित तो आय ची

0: हाथ और आम जो दे हाथ पाए सुन तो नस्त ओसन आम के काम बुता नी करत रहे। ये एक दुई घंटा एक दुई घंटा बले बीसात रहे। आम चो गांव चो बई मन दखवाऊ कि घर चो बुता के सपाई के सारे उनता पाचे भात खाऊं दे असन नी बोलत रहे। आम के समय ने नाश्ता हो नले भात पेज हो काई हो आम के टाइम ने खात रहे तेबे आम चो देह पाए अच्छा रहे दे। तो बहन मन ए तो रली नगद गोट अदाए फेर बले नगद गोटा से आले एक बले सुनू।
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो बहन मन ए नगद गोट के बल तो सुन लू मंतर भेंटवार्ता से ए भेंटवार्ता ने मुर्गी पालन और बकरी पालन कर तो बहिनात ए रामबत्ती बगेल और एमन संगे भेट घाट कर सोत बलबीर सिंह कच आले बहिन मन एमन चो गोट बात के बले सुनू।
4: भाई बहिन मन आज मैं फिर गोटक बहिन संगे गोट बात करें से दीदी सब ले आगे तुचो नाव आरो गांव चो नाव सांग
5: मचो नाव रामबत्ती आय मैं ककालगुर लिया
4: ककालगुर अच्छा बोले ने तुई कुकड़ी मन पोसू आज बोले
5: ओ कुकड़ी मन पोसू आय
4: अच्छा
5: ए से साल वाली पशु सखी बाटले बल मक देवरला
4: अच्छा
5: पोस तो काजे इनाम ची उनके पोस ले मौय आरु का तो गुड़ा बनात काज बोल दिला 1500 पैसा आरु तमो लिपा पोसा उच्चा बनान रहे आरु दाना बोल दिला कितलो 5 किलो आए का है।
4: अच्छा
5: उन दाना सर लो काजे मौय घर चके देवक मोरियाले
4: अच्छा कितलो बरकस नोली
5: ए उन कात कुकड़ा पोसलो भी थी ओली
4: से सात साल
5: ओ से सात साल सनोली
4: अच्छा
5: उन भी थी मन के बी खिले अच्छा। गोटो गोटो कुदल दाए तो थोड़े मॉल रहे बेचा सनो आए 200 खाजे दीले
4: अच्छा
5: कुकड़ी के बी खिले
4: अच्छा
5: 45 टन देवरो तो दोला
4: अच्छा 40 बोले 45 टन देवरो ये उन सरकारी बीती है कि देसी बीती है
5: नहीं सरकारी भी देवरो
4: अच्छा
5: सरकारी भी देवरो
4: तो ये भी कितना नस नासत
5: ये भी माई मन बोलो भी 6 टन नासत आरु गांजा मन बोलो
4: भी
5: चिका तो 12 टन नासत
4: अच्छा तो बोले ने एमन काज अलग तो गुड़ा बल बनाल से सुने
5: गुड़ा अलग आए अरे दाय पैर उन मोच दे हुआ है सारा घर चई दे हुआ है एक दिन कोसरा दे हुआ है एक दिन दान एक दिन चाउर के अब तो कन की बोलू आज दिन की दे हुआ
4: अच्छा तो आर्यमन के चर तो काज बाहर ही निकल रहा है कि गुड़ा नहीं चल रहा
5: बाहर ही शुरुआत जानो वाले भी आने दे उप पड़े से
4: अच्छा भी आने दे उप पड़े
5: कुकड़ी मन के
4: तो ये कुकड़ी मन कहीं बीमारी ओगरा बोल धर सोत
5: बीमारी फिर दूर आए जानो
4: अच्छा अच्छा
5: उन्हीं बीमारी दूर आए कुकड़ी मन काज फिर वो ना ही कहीं मन ने बोले पोटकी पोटकी बोलो हुआ उनके उन्हीं नड़र तेल के दूर उनके गसा गसा हुआ है
4: अच्छा
5: कुकुरी पोस तो काज को भी अच्छा लागू आए जानो
4: अच्छा ना तो कहीं उन डॉक्टर मन बात कहीं सूजी वगैरह बोल लगा सब कुकुरी मन के
5: डॉक्टर मन कुकुरी मन के लगा के नहीं है वो चेरी मन के लगा दे हुआ तो फिर ये सोमू बाट ले आम बाटे दीदी मन नहीं मेरे सब
4: अच्छा
5: कुकुरी मन का जो चोई ने किंडी मोर ले ने किंडी को अच्छा नहीं लागे
4: अच्छा
5: उतलान फोसुन बाती
4: हाँ उन तो आए जी
5: कुकड़ा पोस तो काज खूबे और लागू आए मौके उन कुकड़ा पोस ले का बोलू पैसा डगर है इसे नहीं मौके डगरान बोले से असन
4: अच्छा तो ये उन सरकारी जीवित है कि देसी बिल्कुल
5: नहीं ये दाम है देसी पोस हैं से देसी आए उन्हीं सरकारी बोले उन आसे गोटक माई उनके जानो ता दोसी कुकड़ी तान संगा हुआ है अंडा के
4: अच्छा
5: उता संगा हुआ है दोसी कुकड़ी ताने उन पुटा हुआ है
4: अच्छा
5: और उन ये बे किन्हीं नानी होते जा सत नाल बड़ बढ़िया
4: अच्छा
5: सरकारी
4: बीती हाँ
5: बड़ बड़े होते रहत और जानो नी पहला पहला गोटोक अंडा तान जान डुटान पीला मनोला
4: अच्छा
5: ये असन असन बीते नहीं संगा ये दा फिर डुकरी होई से
4: अच्छा
5: उतलो दिन च कुकड़ी वाले
4: अच्छा तो द कुकड़ी पोस्त बीते बल्ले से बल्ले घरे ची बिकवास की बाहर
5: घरे जादे जान बाहर नहीं ने घरे ची बिकवाए मा
4: अच्छा घरे ची
5: घरे ची बिकवाए कुकड़ी मा
4: तो ये संग संग बोकड़ी बोला से बल्ले
5: हाँ बोकड़ी बोला से
4: किट्ठा ना सुना सुताले
5: बोकड़ी तो उन्हीं मोर तो बेरा मोर ला आय दाय पांच टन बकरी मनासत
4: अच्छा
5: आरु माई मन चार टन आसत उन मन का तो ठीका लगुआ
4: लगे से
5: डॉक्टर मन जाऊआत लगाऊआत
4: अच्छा तो ये बकरी बोल कहीं उन डॉक्टर मन दिला कि तुझे घन लो बीती मन
5: नहीं घर चुआ
4: घर चुआ
5: हाँ घर चुआ अध्या आनले अध्या बोलुआत तो लोकता आनले गुड़ा गुड़ा बना चेक तो गुड़ा बना सरकार बाटले गुड़ा बनात काज दिला सो
4: अच्छा अच्छा बकरी मन काज बोले
5: ओ बकरी मन काज बोले
4: बना दिला कि
5: ना यामि सी बना लो जान ओल पर सरकार बाटले पैसा
4: किने पैसा दिला
5: ओ किने पैसा दिला बना
4: तो कसन माचा आसन बनालास कि असन खाले छिए
5: माचा ओ पेरुन भीतरे माचा बनालु
4: अच्छा
5: किंडी कुपरे पारामोन लगा लो रासे
4: अच्छा
5: संतान अच्छा उबलुआ
4: तो एमन बोले घर च रहे सोत की ढील साथ जाले
5: नहीं सर रखने हुआ हम जानो अच्छा कुकुर कुत्री मन बल चाबुआ तो निकाल सर आऊँ
4: अच्छा
5: जी सर रखने हुआ
4: अच्छा ये बोकड़ी मन पका लेने बोले ने कितलो साल असन महीना नाले बिक्री हिसाब बिक तो असन हो सो ताले
5: बिक उन पर खसी मनुनी ए तीन बरक चार बरक रोक पड़े से खसी मन के वाले एंड अभी ती मन वाले दुई बरक ने बल बिकन देव कहे से
4: अच्छा अच्छा
5: और खाई काज बल डगरा ले देव देव खाजे बरक कार ले बल
4: बिक तो रहे से तो बोले उन रेट बोले कितलो ने जाए से कीमत गोटो
5: एबे पे रेट आ जानू आगे ससन तो नो आए 10,000 बोले आए 20 आए 12,000 बोले भी को कहो
4: अच्छा बकरी मच उमर है सन इस साल
5: ओ उमर इस साल ने
4: तो साल ने गोटक बोले बिक सास
5: साल ने मोर लाउ ताल नी बिके नाले साल ने दो टन तीन टन बिक तेरा ले
4: अच्छा तो दक ये सब के जशन के बोकड़ी बल्ली सारू कुकड़ी मन बल्ली से जुगे करो ने मन के काय चीज के ध्यान देव कुलाए पड़े से तखा रखा है सामने
5: ये काय तो समाज बेरा जानो उन्हें गुड़ा कच्चा बड़ाक पड़े से पानी संगे सिकल लेने दखा रखा खाजे
4: अच्छा
5: आरु पर उन्हें डॉक्टर मन के सांगो पड़े से
4: अच्छा
5: आराम चबाट पर जंगल राजा है अमी चारा चारे नहीं दे वाले सराव चने हुआ
4: अच्छा
5: बोला मन संगे ए बे जानो अब गोचेरी सराव हुआ
4: अच्छा बोले ने चारा दाना छे बोले उतलो मन के तकलीफ नहीं हो
5: तकलीफ नहीं हो आम च बाटे आमी नहीं देऊ
4: लगे छे आसे
5: बोले ओ लगे छे आ सराखने हु
4: अच्छा अच्छा रामबती दीदी ये सांग जसन की तुम्ही कुकड़ी बोले पोसलीस पकड़ी बोले पोसलीस तो तुम जो बोले जीवना खाना ने कहीं अस्थिर लागे
5: छे हां ये दाय अस्थिर लागे छे आगे जानो जीवना खावना खाजे बोले आम च घर ना लई घर आए उनका जे ये दाय उनके पोस तो काजे मके अच्छा लागे से काय बोले से पैसा डग राखे से आम के फसुर ले उनकाजे बस लत नागे जान रान बोल बुलुक जाते रहो सिलो काय काय काय मारते रहो आम सिलो सिलो काय टाटी आय एबे टाटी बोल नी गातो मैं नी जाने टाटी बोल गातो
4: अच्छा
5: मरनार रल उन गात रे उदम दाय टाटी ची गातुन ची लक मारुन जीते रोलो आमी
4: अच्छा
5: आगे
4: तो और जसन की राम बते दी कई लोग मन की मैं पूछू है कि असन की ने अच्छा कमाने धमाने कर सो तो बोले ने जोन पैसा कोड़ी जुए से कहीं चीना बाना बोले
5: चीना बाना बोल दर ले से चीना बाना बोले पीला लेखा मना छो चार जान ट्रैक्टर भल दर लो रासे
4: अच्छा ट्रैक्टर भला से अच्छा
5: आरो ये सुगट गाड़ी बल दर लासे होता पलो
4: अच्छा
5: उसने करुन
4: अच्छा तो ये ट्रैक्टर बोले ने बेड़ा कमानी काजे कि
5: बेड़ा ही कमानी काजे आए जानो
4: अच्छा
5: ट्रैक्टर बोले पेरे बे
4: बोले अच्छा सुविधा होली
5: ओए दाय सुविधा होली अरे मच खाजे बोल अच्छा और इक लागली आगे जानू चिंता दुकाने रहे
4: उन तो आए बोले ने कहीं साधन पैसा कोड़ी नी रले ने बोले जीवना मुश्किल हो
5: ऐसे
4: आए कि नहीं
5: ओ उन तो जीवना
4: मुश्किल
5: जीवना ये दाय जीवना बोल अच्छा ही
4: है तो ये बात बुलाक ने बोले ये बात उन बात कोनी ताने कहीं ट्रेनिंग असन प्रशिक्षण बोले जाऊगा
5: मैं जाऊँ आए
4: अच्छा
5: कहाँ बोले उन सोमो बाटले बोल संगुआ
4: अच्छा
5: उन बाटे बोल जाऊँ आए कहाँ कहाँ जे
4: तो गेलेन कहीं न कहीं ऐसा नोआ गोट तो जानो
5: क्लेम सुनु को उची आए गेले तो सुनु कोई दे गरे रले कहाँ सुनु कोई दे कहाँ कहाँ बोल नोआ नोआ गोट मन के बोले जानो कोई से केती को मानी बीती काजे बोले
4: अच्छा
5: उन केती को मानी बीती काजे बोले दाय उन सोमु बाटले उन्हें भी कहा कहा रोप तो बीती के बोल सीख लो
4: अच्छा
5: कुकड़ा पोसुन पोसुन
4: अच्छा
5: केती को मान काजे बोल केरला बांगा मांडो बांगा तोरी सोपाय रोप वामे दा
4: अच्छा अच्छा
5: उताले अधिक बोर कस लागली
4: अच्छा तो पानी चुका है सुविधा से
5: टेबल पानी चा से टेबल आसे
4: टेबल आसे अच्छा तो ये भी पहले कहीं ऐसा आसे कहीं साग भाजी
5: ओ आसे मांडा बांगा आसे
4: अच्छा
5: छेमी आसे
4: अच्छा
5: आरु नी आठ ने हुआ घरे नी बिको नी सोमारा शुक्रार दिने दरबा बोसा खानु आ
4: अच्छा तो बल्ले ने तुम के दाए असन काम मिरली कि कोनी दिन पुरसत नहीं आए बोलू बने है कि नहीं कहीं न कहीं ऐसे बाटे
5: पीला मन बाड़ू नी लाओ मचो खाजे मके उतलो डन नुआई उसने कहाँ कहाँ काय वाले ने उता जाऊँगा
4: अच्छा
5: आरु निके तीसी को मानी घर तो काजे बोले अच्छा लागे
4: अच्छा लागे तो वाले रामबती बगेली दी तू इतलो अच्छा बोले तू चोकु कुड़ी पोस्तो बोकड़ी कोस्तो और खेती कमानी सपाय गोट की जान ली साल को जुआर
0: हाँ तो बहन मन ये भेटवार्ता बहिना रामबती बघेल और एमन भेटवार्ता आत ए बलवीर सिंह कच एमन कितरो अच्छा गोट के सांगला ए बहिन रामबती बघेल कुकड़ी पार तोर और बकड़ी पार तो गोट के तो एमन गोट के तो सुन लू अदाए गोटो गीता से ए गीत के गावला से लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन तो ए मंचो गीत के बले सुनू

हाँ तो बहिन मन ए गीत के गाउन रोत लकेश्वर खुदराम और हनुमान जो संगवारी मन और समिया बोले आसिता आले फेर बोले गोटो गीत आसे ए गीत के गावला से मेघनाथ पटनायक और हनुमान जो संगवारी आले ए गीत के बोले सुनू।

हाँ तो बहिन मन कितरो अच्छा गीत के गाउन रला। ए गीत के गाउन रो मेघनाथ पटनायक और हुन मंचो संगवारी मान। तो बहिन मन मचो ज्ञातो समिया भले होय से घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सब पाए बहिन दीदी मन के मैं रत्नी करें से जुहार।

0: घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
4: खेतीहर गांवकारी दादा दीदी मन असनी गोटोक और लाभ चु कमानी होय से मछरी पालतोर ए कमानी बले बरक कारने आम के लाभ दे हुए आरु नंगत पानी रले आम के ए कमानी ले रोज जे बरक कम मसागत ने जुगे लाभ मिरुक सके। मछरी पालतो काजे आमचो कोनी कोनी दादा भाई मन आप लहान मुंडा तरई ने मछरी बीज बले डारला सोत होती आरु मछरी बीज डारतो काजे सावन नहाले भादो महीना नंगत रहे से जसन की आमचो रोपलोर बुनलोर फसल मन ने बीमारी सेमारी धरुआ है तो असनी मछरी पालन ने बले बीमारी सेमारी के ध्यान देव पड़ुआ है। तो आज ही मैं यही मछरी मन के धरतो बीती जोन बीमारी मन होए से ए मन के और हुंचो उपचार करतो उवाट मन के सांगें दे। असन तो कोनी बले तरी ने बीमार होलो मछरी मन बायबिकाल होन रुआत नहाले खंड रेटेले लगड़ुक मुरिया हुआत आरु संगे संगे घन घन पानी उपरी एवुआत बीमार मछरी खाऊक बले छाड़ून देवात आरु धीरे धीरे पोहरुआत असन दखा दिले किसान के खूबे ध्यान देव पड़ुआ है। पहिल बल्लो ने वातावरण ले जसन के पानी लहराल बुलवाओ जे दूसरा होय से संक्रामक रोग तीसरा आए कुपोषण ले और चौथा नंबर जोन रोग होय से ये होय से नगद दखा रखा निकर ले। तो पहिल जोन वातावरण ले होय से एक में सांगे से नगत वातावरण नहीं होलो ने मछरी मन काया की मुरुख मुरिया हुआत नहाले बायबिकाल दखा दे हुआत और ये चो हो तो कारण आए बोलो ने जोन मुंडा तरैया से हुन लगे कचरा होले नहाले कहीं दवाई खेत के पानी ने आमे पकाऊं देऊ से आसन होले काया मछरी मन बीमार हुआत और ये चो उपचार काजे तरई चो पानी चो जाँच होता चो तापमान चो जाँच करतो रहे नहाले जुगे चिहिला होले ताजा गोबर के 200 किलो 2.5 एकड़ चो हिसाब ने नहाले फिर कापर सल्फेट 0.5 PPM के बले उपयोग करतो रहे। दूसर होय से संक्रामक रोग ये रोग पानी लहराले मछरी मन के हुआ है। मछरी चो बीच के गोटोक ठान ले दूसर ठाने ने तो बेरा नहाले कोनी मछरी मन ने जसन के घाव हो रुआ है तो हसन होन रले बले ये रोग हुआ है। घाव ने फपूंद होक मुरिया हुआ है पाछे घाव बाढ़ुक मुरिया हुआ है और मछरी मन मुरुंजा हुआत एच उपचार काजे मछरी मन के 3% नोन चो घोल ने नहाले 300 ग्राम नोन के 10 लीटर पानी ने नहाले फिर 100 ग्राम पोटास के 10 लीटर पानी ने घोलून भाती 5 ले 10 मिनट मछरी मन के बुड़ौन संगात रहे तेबे जो नाय कि ये बीमारी मन के गुचाव खो हुआ है। असनी होय से गोटक जलोदर नाव चो बीमारी आए ये बीमारी अगर करुन कतला मछरी ने हुआ है और बीमारी मछरी जोन होय से हुंचो पोटा ने पानी जमुन रहुआ है आँख बाहर निकरुआ और पोटा फूलन जाऊआ संगे संगे देहे ने घाव बले होन जाऊ है। एचो उपचार काजे बीमार मछरी के तरई ले निकरौन देतो रहे पाछे बाचलो मछरी मन के 5 PPM पोटास चो घोल ने 2 मिनट तक संगातो रहे। सपाय रोग के गुचातो काजे 2 PPM चो हिसाब ले पोटेशियम पर मैग्नेट नहाले पोटास चो घोल के तरई ने उपयोग करतो रहे। तीसर होय से कुपोषण ले होतो बीती रोग नंगत दखा रखा नहीं कर ले और मछरी मन के खातो चारा नहीं मिर ले बले मछरी मन चो बाढ़ नहीं होक सके आरु असन बेरा बड़े मछरी नानी मछरी के बले खाऊआत आरु असन समय ने मछरी मन के कई ठन बीमारी धरुआ है। एचई काजे आम के मछरी मन के नंगत चारा देतो रहे आरु मछरी मन के रोग रही ले गुचातो काजे सबले नंगत होय से कि यमन काजे नंगत चारा ऑक्सीजन जुगे शीत आरु गरम ले बचातोर तरई चो साफ सफाई आरु गोबर संगे नंगत ओखत दिले रोग रही ले गुचाव खुआ आरु किसान के जुगे लाभ मिरुआ है।
0: कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। समय हुआ है दिन के 1:10। यानी रेडियो पर आपके लिखे खतों, आपकी प्यारी फरमाइशों और सदाबहार फिल्मी गानों का गुलदस्ता लेकर आई हूं मैं आपकी रेडियो साथी आशा दुल्हानी। आइए शुरू करते हैं सुरों का ये सफर। लेते हैं पहला गीत, फिल्म का नाम है तीसरा कौन। गीत लिखा है समीर ने और आनंद मिलिंद की धुन पर इसे गाया है उदित नारायण और बेला सुलाखे ने। गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी पत्र आए हैं। बेरड़ी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरे। हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से ये पत्र आया है। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजरानी और हिना कौसर का। सहारनपुर से आप हैं आशा नारंग और सुरेश नारंग। चतुगा किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान रहे, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। सरवानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से आप हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। भाटापारा से ये हैं दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और पेंशन बाड़ा रायपुर से आप हैं रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन और तन्मय यादव। ये पत्र आया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पुणे से आप हैं प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे और जरूर वड़ूर से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे और मीनाक्षी चरपे। अगला पत्र आया है मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेस नायक, शोभा नायक और आदर्श नगर मलोट से ये हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से ये हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती, ममता और गोमती साहू। अगला पत्र है महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और सरला प्रकाश का। ताजपुर मोरबा से ये हैं भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। और अगला पत्र आया है कंवर कॉलोनी बढ़वास से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली का। गणेश नगर बिलासपुर से ये हैं अशोक कुमार यादव, श्रीमती अनिता यादव, प्रिंस कुमार और गब्बर यादव और सुभाष वार्ड। भाटापारा से ये हैं अजय यादव, श्रीमती पार्वती यादव, गिरीश कुमार और कुमारी प्रेरणा यादव। ग्राम सौंगा मगरलोड से आप हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी और गजेंद्र कुमार चंदन। ये अगला पत्र आया है इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजा, डब्ल्यू नूरजा, सईद नूरजा, वसीम नूरजा और वलीउल्ला नूरजा का। और राजनाथ गांव से ये हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। और जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। ये पत्र आया है ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई, परू मुबारक बारे, विलास मनोहर ठाकुर और तैमूर बारे का। जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से ये हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी और तैमूर तड़वी। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गोरी ओम और आदिनाथ वाद्य। वाशी महाराष्ट्र से ये पत्र आया मास्टर विठल सुरोशे का, साथ हैं सुषमा परिधि, निधिश, मायरा। और डोंबिवली मुंबई से ये हैं भावना यादव, अधीश, स्मित गोरे और श्रियांश गोरे। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। जिला सहारनपुर से आप हैं सैयद मसूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। लोहड़ीगुड़ा बस्तर से ये पत्र आया चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीराम मोरे, दुखुराम मोरे और उदय नाका। दरभा बस्तर से आप हैं रामघर कश्यप, रामघर बघेल, रामघर ठाकुर, सोनूराम ठाकुर, बाल सिंह नाग, मनीष करराम और नंदकिशोर ठाकुर। दादरी गेट भिवानी से ये पत्र है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा का। मलुट के पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। वाणा शाहपुर कोल्हापुर से आप हैं विजय चव्हाण, तेजस्वी चव्हाण, अंकिता, अनिकेत और माई चव्हाण। और एमआईडीसी चंदनगर सतारा से आप हैं सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमेण वाघमारे। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा। कतियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्या, आदित्य देवांगन। और बमहर चाटाडीरी से ये हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की देवांगन और मीनाक्षी निधि देवांगन। राजनगर मधुबनी से यहाँ पे राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। और छपरा दालदली बाजार से ये हैं संजय गुप्ता, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु गुप्ता। और सीतामढ़ी महावीर

से ये हैं प्रभात, अरविंद और निक्की गुप्ता। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से अगला पत्र है डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा का। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ। और ये पत्र आया है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयन बाबू का। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं रजन साहू, ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास। दतरेंगी से ये हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। मंगलामटिया बालोद से आप हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। और बालोद से ये हैं नमित कुमार, गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। ग्राम आमा खोडरा जिला कवर्धा से ये हैं राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्ष प्रिया, महामाया, गीत सरगम नेताम। और गांव चोहलदा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन मुस्कान, कुणाल, मास्टर मुनीर खान और अब्दुल सत्तार अब्बासी। महानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, प्रिंस एकांश और टुकटुक गवाणकर। आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। अर्जुंदा बालोद से ये पत्र आया है दिनेश यादव, साधना यादव और मंचुआ बालोद से ये हैं रिंकू आपटे और आयांश रावटे। कीदम रोड जगदलपुर से ये हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्यलक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव और मनीषा राव। ये पत्र आया है डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर और अश्विनी भूतेकर का जलगांव से। दुर्गा चौक जीरापानी सनाबद मध्य प्रदेश से आप हैं कालू सिंह बडोले, सीताराम बडोले, हीरालाल बडोले, तेरसिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन का। महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलोरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। और ये पत्र आया है बकावंड से गेनूराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल, मनीराम बघेल और गजमती बघेल का। आप सभी की पसंद पर लीजिए, सुनिए गीत फिल्म तीसरा कौन से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में पेश है फिल्म नटवर लाल का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत को पसंद किया है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक एवं तन्वी गोहर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबीय। पारोंड विश्रामपुरी जिला कोंडागांव से आप हैं प्यारीदास मानिकपुरी, शिवकुमारी खिलेश और नमिता मानिकपुरी और जनकपुरी सहारनपुर से ये हैं जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल और विलिस डिकेस्ट्रो। रानीगांव नगरी जिला धमतरी से ये हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता और वैदेही जोशी। गांव खेड़ावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के और हनुमान बोर्ड के। नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष और तारा देवी विश्वकर्मा। कलानौर से ये हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। लक्ष्मीपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये हैं तीजन सिंह मरावी और देवलाल मरावी। गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डुडी, सौरभ डुडी और प्रमोद कुमार डुडी। वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, करीना और अंजलि सारवा। भूत चौराहा बुलंदशहर से आप हैं पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। कस्बा गुरनौर से ये हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरान, फरीन, फारिया और ताहिरा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आप हैं उदयवान ठाकरे, ग्रंथ ठाकरे, गौरी ठाकरे, दीपक, नवीन, शिखा, नीलिमा और चंद्रभागा ठाकरे। यमुनापुरम बुलंदशहर से आप हैं धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा, शौर्या और मून सोलंकी। वार्ड नंबर 3 रामभाटा रायगढ़ से ये हैं रोहित जयलक्ष्मी, लक्ष्मी जयलक्ष्मी, ऋषभ अंश लक्ष्मी और रानी दीपा लक्ष्मी। समडील नवापारा से ये हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक और श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। कासम कोलिन सनावत से ये हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूरमीना, इरफान मीना और काशिफ मीना। कामठी नागपुर से आप हैं श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष और अमृता शर्मा। खांडवी बुलढाणा से आप हैं दिलीप राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े। रजौनी जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हैं उदय भानपाल, जयहिंदपाल, प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश बघेल। थिलोरी अमरावती से ये पत्र आया है सुनीना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडेगा। और पीपल नीमचौक अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से ये हैं सुनील यादव, शिवकुमार यादव और तनिष्का यादव, साथ ही हैं नौबत यादव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। शिवाजीनगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े और इंद्राबाई खोबरखेड़े। और रोहतक हरियाणा से ये हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, प्रिंस बोट और अंशिका बोट, यहीं से ही हैं सीताराम कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और बबीता बोट। गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से आप हैं लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता और रेखा वर्मा। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं कालीचरण कुशवाहा, श्याम कुमारी, सुखदेवी, सन्नी और सोनिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ये हैं नेत्रपाल सिंह, वंश पवार, अंश, वेदांश, वंशिका और जस्सी पवार। तहसील अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से आप हैं दीपक शाह के ज्योति और सक्षम। गांव हीरावारी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। गांव खोखरावाली अनूपगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से ये हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी अरोड़ा और आरदी अरोड़ा। और बुर्ज हनुमानगढ़ पंजाब से आप हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। कस्बा नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार। चंडीगढ़ से ये हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। और खुद राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक और विमला देवी खटक। ग्राम बीरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु, हिमांशु, प्रांशी, निवेदिता, ज्योति, मानसी, सुदीपा और सुशीला पाल। जमानिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, यहीं से ही हैं एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। गांव कुमारहेड़ा जिला सहारनपुर से सैयद मसूर, नाजी हसन, आफिया इसान, इब्राहिम और सद्दाम। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, श्लोक कुमार और दीपाली। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेध। कल्याण मुंबई से ये हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक और प्रतीक्षा। और बुलढाणा वरवट बकाल महाराष्ट्र से आप हैं नारायण हागे, जय, दिव्या और कमल हागे। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इरफान खान और इमरान खान। सहारनपुर से आप हैं राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। गौना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल, आकाश और रानी परी नामदेव। सोरे जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, अनीता, ज्योति, संजना और भारती नामदेव। इनके साथ ही हैं पूर्वी, रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, दीपक और लव नामदेव। ग्राम मामड़पाल दरभा से ये हैं गणपत बघेल, मनीष बघेल और अनंत बघेल।
ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू और रोनिका यादव। लोरमी गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से ये हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, निहल पीहू, छोटी दानिश, दिशा, संजय पूर्वा, पूर्वी, पूजा और पुलकिता। भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लोरमी छत्तीसगढ़ से आप हैं नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर खांडे। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता, कपिल, दिनेश और पूजा और पाकुड़। झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। गांव टुंकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से ये हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा देवी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। और ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं रोहित यादव, पंकज यादव, अंगद, आयुष, आर्यन, बेटा यादव और आदर्श यादव। ग्राम नागर कोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये हैं बबली साहू, जगराम साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। और डबरा पारा सौंगा मटर मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से ही है कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक, रीना और पिंकी सेन। संत गाड़गे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े और लोकेश गाठोड़े। ग्राम धनोरा जगदलपुर बस्तर से आप हैं पूनम नायडू, प्रीतम साजन, के मास्टर ऋषि, शिवांशु और अभिषेक नायडू। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से ये हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। राजनगर मधुबनी बिहार से ये पत्र आया है नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी का। वरुण जामटी से ये हैं मुकेश कासलेकर और ये पत्र आया है आर्यनगर खोखा भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनित कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल का। और जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रिफाकत मोहम्मद रिहान और समरीन परवीन। ग्राम छिंदरी पुजारीपारा जिला कोंडागांव से ये हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष और अस्तिका चक्रधारी। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से ये हैं राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन और पिंकी सेन। और बड़ा बाजार उदयपुर से आप हैं गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक किरण और सक्षम तंबोली। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, सीमा, तन्वी, ऋतिक, मोहिनी और लक्ष्य सोनी। और हिल स्टेशन खंडाला से ये पत्र आया है आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे का। तेलंगाना निजामाबाद से ये हैं शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया, शेख वहाव, शेख इकबाल और नूरजहां बेगम। और मित्रनगर बीट शहर महाराष्ट्र से ये हैं विकास बनसोड़े, रेखा आदित्य और वैभव शिंदे। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये पत्र आया है मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक,

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह, सुनिए

0: आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आइए अब सुनते हैं इंदिवर की रचना, संगीत राजेश रोशन का है, आवाजें हैं कुमार शानू और साधना सरगम की, और फिल्म का नाम है छोटा सा घर। सुनना चाहते हैं शिवाजी जोग राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और के श्रीवास्तव और अमरपुर पेंड्रा से ये हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव। चांदी चौक गंडी पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र सेन और खुशी रौनक सेन। तालुका उमरखेड़ से आप हैं गंगाधर पोपलवार, सम्यक प्रियंका, लक्ष्मीबाई और भारत धुले। ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आप हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमित, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जीएस राम गढ़िया। छोटी वलिया करजत से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नरेशा बेगम फूलवाले और काबासेड़ा नई दिल्ली से ये नशीन आजाद, आमनापरी और मंजूर फिरोज रजा। हाईस्कूल पारा फर्जगांव से ये हैं हरीश साहू, पायल मेघा, राजीम और नवीन साहू। पाठर कवर्णा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, और बल्लार शाह से हैं सूरज जी लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े। अगला पत्र आया है ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनीन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से ये हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े। और अहमदपुर खेगांव खंडवा से ये हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, सभर और वेदिका फूलमाली। गोल बाजार बक्सर से अगला पत्र आया है श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाशवीर राजपूत, और डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरी, और टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप। जेल रोड रायगढ़ से हैं लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। बोरसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। जामरून से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज और कुमारी साध्वी जोशी। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र और तेजल साहू, और मोहन पाराकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भ्रघु, विनय ठाकुर और सोनाडी से ये हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं राम कुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत। गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया, और साथ ही रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान। तालुका निवासा खुप्टी महाराष्ट्र से बंबुलोहार पोपलगढ़, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़। श्रीरामपुर भुकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनिता बिड़वे। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू, ताराविद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता रिश्वंत साहू और मास्टर रंजीत साहू। और ठाकरावाला फिरोजपुर से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज गुरमान और पोतरा गुरनूर सिंह। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकाश गवाणकर, और बदलापुर मुंबई से यह हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से ये पत्र आया है अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम मिश्रत अक्रम, रवीना रूबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज का। पोटियाकला दुर्ग से आप में संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। अगला पत्र है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, भाई सुच्च पाठक का। चार मीनार चौक गंडी पंडरिया से दरियानवल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम अनिलराज मोटवानी, झूलेलाल चौकतिलदास से हरीश कमल सेथपाल, भूमिका और सुशीला दादी। मेघापारा लोरमी से ये मनोज कुमार साहू, कुसुमलता कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। और तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से आप हैं ओम प्रकाश नेमा। डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव दराधिका, तुषार तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया। ग्राम बन भगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं नीरज नीलेश। और बालो छत्तीसगढ़ से ही आप हैं गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, ज्योतिबाई नेताम और कोमल नेताम। और किकरी मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा। लालमाता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ से आप हैं हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति थनक्ष और आरू साहू। पेपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा कुश मूड़त। बलोदा अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मन्नन और तानिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। गांधीग्राम से आप प्रवीण सोनी, अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम, और कंडला मंदन गच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जैनिश। पीपरपारा पालचुआ मुंगली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर। गांधीनगर गुजरात से ये पत्र आया है सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा राठौड़ का। और साथ ही प्रज्ञानंद देवांगन, गायत्री, यशस्वी और यशवर्धन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश साहू। अगला पत्र आया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे का। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवी रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। छत्री तालाव अमरावती से साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता और कमल गुप्ता। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजा, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। और कालका से ये हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज। हरदेव लाल वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। हटोदा बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। पाथरणी महाराष्ट्र से ये हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से आप हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले। और अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सकाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। खंडवा से ये हैं यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन। और मोरबा भिलाईगढ़ से ये हैं देवलाल कर्ष, कामनी और यश कर्ष। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से ये हैं जोहित यादव, विपिन आयुषी और श्रीमती फूलजी यादव। तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम और जागेंद्र गजेंद्र मरकाम। उमरकोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से ये हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान अब्बासी। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से यहाँ पे रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। और हटरी चौक भिलाईगढ़ से ये खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन, प्रियंका और रजनी देवांगन। छत्रपति संभाजीनगर से ये हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। चूड़ी लाइन भट्टापारा से आप हैं अब्दुल मजीद कुरेशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। बेमित्रा से ये पत्र आया है सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी और वीरेंद्र विजकांत सारथी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से आप हैं चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा वान्या सिंगरोल। और महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषम दास मानिकपुरी। रोहासी से ये पत्र आया है डगेसराम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। दतरंगी से आप हैं मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। साथ हैं अंशुमन और ओवी। नागचू नोट संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। मोपका भाटापारा से आप हैं दैलूराम वर्मा, तेजराम वर्मा, सहदेव रामजी और चिरंजीवी वर्मा। पहाड़ा आहिवारा जिला दुर्ग से ये हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। हथनीपारा भाटापारा से ये पत्र आया चोवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा का। गांव कोली नादौड़ से ये हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। सीमंधर पार्क विरमगाम से अगला पत्र आया है अजीत प्रेमीला, भावेश सन्नी हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार का। चितलवाड़ी अकोला से ये आप हैं अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश और अधीरा इंगले। शीतलानगर दुर्ग से आप हैं शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर। और दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से ये गजानन येले, नवदीप येले और शेरी वडनेर अकोला से ये पत्र आया बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर का। फिल्म छोटा सा घर का गीत सुनिए आप सभी की पसंद पर।

श्रोता सुमन का अंतिम गीत सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म फना से। गीत रचना प्रसून जोशी की और इस गीत को आवाज दी है शान और कैलाश खैर ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी पत्र आए हैं। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया, सौरभ और शुभम जैन। गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। मछली गोदाम केदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह। धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और झाझा बिहार से संजीव कुमार और पूजा सिंह। पटना बिहार से आप हैं भुवनेश्वर सिंह और लिल्लू सिंह। जमशेदपुर से ये पत्र आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत पप्पी और सोनू भाटिया का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये हैं मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर और प्रशांत, साथ ही हैं रत्नेश प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से आ रामचंद्र गुप्ता और पांडेराम रजवाड़े। ग्राम बेलरगांव से ये पत्र आया है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन और हिमांशु अंकित देवांगन का। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्रीकृष्ण भाटे, संदीप भाटे और अमूल्य भाटे। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्यालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। गांव रतनपुर से ये हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन नायक। ग्राम भिलोरी बावनालाख जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से ये हैं मास्टर देवव्रत साहू, राघवेंद्र साहू, कविता सृष्टि साहू, बेबी रिद्धि साहू और मास्टर हेमंत साहू, साथ ही हैं बेबी विधि दीपिका साहू। वैष्णव कॉलोनी सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। देवपीठ वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, रजनी भावसार और राजू भावसार, साथ ही हैं स्नेहल। बठेना से ये पत्र आया है बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा और चटोदा सारागाम से आप हैं सुजान वर्मा, सौद्रा वर्मा और आयुषी कृत वर्मा। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले और छकुली इंगोले। महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा और ओंकार शर्मा। दंतेवाड़ा बचेली से ये पत्र आया है बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज, रितिका, पोषण और भुवनेश्वर सेन का। धुरा बांधा भाटापारा से आप हैं प्रमोद कुमार, देव कुमार, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। अगला पत्र आया है बड़ा बंबो गांव सुपाईसाही से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन का। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा। डोंडी लोहाड़ा संबरपुर से ये हैं गौतम कुमार उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की, तुलसी, ऐश्वर्या और याशिका उर्वशा। ग्राम बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। अगला पत्र आया है भोइनपार लाटाबोर्ड जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता चंचल रानी साहू, गीतिका उमाबाई, गंगाराम साहू और त्रियांश कुमार साहू का। कुंभार गली कोलगांव से ये हैं पांडुचंदन, उषा चंदन रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश और संतोष चंदन, साथ ही हैं पांडुरंग कुंभार। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल। वरुड़ जौलका से आप हैं महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। अगला पत्र आया है प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। ये पत्र आया है चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नेंदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत कुमारी सानवी का। नया पारा भिरई से आप हैं श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईश्वरराज, चंद्रकांत, कुमारी प्राची और ट्यूषी सूर्यवंशी। नवागढ़ कटई से ये पत्र आया नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा का। महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सोमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज और ज्योति ठाकुर, साथी हैं बाबू रियांश ठाकुर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी और ऋषिका यादव, साथी हैं तेजल यादव। साकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, दीवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतीन साहू, नेहा देवी, टिकेश्वरी और रुद्रांश प्रताप साहू। भीमकोच तरपुंगी से ये हैं संतोष गुप्ता, हितेश होमेश गुप्ता और लक्ष्मी प्रतिमा गुप्ता। जमशेदपुर से अगला पत्र आया अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार का। और जिला खंडवा ग्राम लोहारी से ये हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे और खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद। सरोज अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पुत्र मुस्तफा खान, राहू भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटंकर और वैशाली कटंकर। अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी सोमशेखर नायडू, डी अक्षय कुमार और डी दुर्गेश कुमार नायडू, साथ ही डी रोजा देवी नायडू। सब्जी मंडी बुलढाणा महाराष्ट्र से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा एनम। नरसिवा से छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा और अनुराधा, साथ ही अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव।
उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से ये पत्र आया है। प्रकाश त्रिसुनिया, विकास त्रिसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या का। बिलासपुर से ये हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। भटिंडा रोड डबवाली से अगला पत्र आया राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। बदलापुर मुंबई से विजय वडालकर, लता वडालकर, अजिंक्य वडालकर और अंबरनाथ मुंबई से आप हैं आकाश रेलकर और वैष्णवी रेलकर। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। बेडी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। ग्राम बंढार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। मोटका माफी जिला खंडवा से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। नादुरा से यह पत्र आया है सोपान तायड़े, विजय तायड़े, अमोल आणी और सरिता तायड़े का। और नादुरा से ही आप हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू और सोनू भोजने। पेश है आप सभी का फरमाइशी नगमा, फिल्म का नाम है फना।

ये अंतिम पत्र है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर और नारायण इंगले का। तो लीजिए सुनिए फना फिल्म का गीत और कार्यक्रम श्रोता सुमन से अब आशा धुलानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: Because Christodoulidis in New Delhi says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counterterrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. In his joint statement, Prime Minister Narendra Modi said the friendship between India and Cyprus is not only strong, but also future-oriented. He said over the past decade, investment from Cyprus to India has nearly doubled. He said with the India-European Union Free Trade Agreement, numerous new possibilities have emerged and the trust between the two countries has increased. Mr. Modi added that India and Cyprus aim to double investment flows again in the next 5 years.
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग दे आल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज।
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year.
2: I feel exceptionally honored and privileged to be in Delhi for this state visit, and we stand together in marking another milestone in further strengthening the long-standing bonds between our two countries and in deepening and expanding our strategic cooperation.
0: Earlier in the morning, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on the President of Cyprus. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciated the positive sentiments and guidance for strengthening the bilateral ties between the two nations and India-EU cooperation. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realise the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced a Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The by-poll will also be held on the 18th of next month. The Supreme Court today agreed to hear next week a plea challenging the new CBSE policy making three-language study compulsory for Class 9 students from July the 1st. Senior Advocate Mukul Rohatgi mentioned the matter before a bench headed by Chief Justice Suryakant and comprising Justices Joy Malia Bagchi and Vipul M. Pancholi. He said the PIL had been filed by students, teachers and parents. He said the new CBSE policy made two additional languages compulsory in Class 9 and will create chaos. He urged the court to list the matter on Monday. The Chief Justice said the case would be taken up next week during the miscellaneous hearing week. The Union Health Ministry has notified the inclusion of the drug Prekabalin under Schedule H1 of the drugs rules to strengthen regulation and prevent misuse, particularly among youth. The decision has been taken in view of reports received from certain states regarding the misuse and abuse of Prekabalin. The drug, which is prescribed for the treatment of chronic pain, neuropathies and certain neurological conditions, has reportedly been misused for its sedative and dissociative effects. The ministry stated that recent seizures of illegally stocked and unauthorizedly sold Prekabalin have been reported from some parts of the country. The revised classification mandates that Prekabalin can be sold only against a valid prescription issued by a registered medical practitioner. In Kerala, seven-time Congress MLA Trivanchur Radhakrishnan has been elected Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly in a historic three-cornered contest. The election saw candidates from the ruling UDF, the left, and the BJP-led NDA for the first time in the Assembly's history. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
3: Ruling UDF candidate Trivanchur Radhakrishnan was elected as Speaker with 101 votes in the 140-member Assembly. Opposition LDF candidate AC Mohideen secured 35 votes, while BJP candidate BB Gopakumar got 3 votes. This is for the first time the BJP has contested Speaker election in Kerala. The election for the Deputy Speaker will be held on June 1st. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
4: Padma Vibhushan.
5: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
4: Nishchint karne ka kaam Seema Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. Mr. Adhikari also met Defence Minister Rajnath Singh. In a social media post, Mr. Singh said, the West Bengal Chief Minister is a person of rich political and legislative experience. He expressed confidence that Mr. Adhikari will work towards taking West Bengal to greater heights. Minister of State in the Department of Space, Dr. Jitendra Singh, has expressed happiness as India's Chandrayaan-3 lunar mission has been honoured with the 2026 Goddard Astronautics Award by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. In a social media post, Dr. Singh said the Chandrayaan-3 mission continues to make the nation proud. He noted that the mission has received the highest recognition in astronautics for its historic soft landing near the moon's south pole and its contribution to future lunar exploration. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. The Delhi High Court today granted 3-day interim bail to Umar Khalid in the UAPA case linked to the alleged larger conspiracy behind the 2020 Northeast Delhi riots. A division bench of Justice Pratibha M. Singh and Justice Madhu Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic, West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
6: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Center Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The center has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts, Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kjærfelt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
7: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
7: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
9: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
7: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
10: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
7: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
7: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
6: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
7: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: .82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं हल्बी बोली में कार्यक्रम कला।

0: कला और कलाकार सुन तो सब पाए भाई बहन मन के मैं रत्नी करें से जुहार। भाई बहन मन कला और कलाकार भितरे आमी कितलाई कलाकार भाई मन संगे बले भेटघाट बले करते रहूं आम असनी आजी चो कलाकार भितरे आत ए सातला शिवलिंग अपा कुचिपुड़ी सिद्धेश्वरनाथ शिवलिंग अरुणाचल चो कादो पहाड़ी ने और शिवलिंग चो 22 फीट डेंग और हुता आसे मने और हुता अम्दिया श्रद्धालु मन एते चिराई सो। आंध्र प्रदेश प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जेके भगवान शिव करते रहो ब्रह्माणी ऊर्जा और एके शिव तांडव बले बलुआत। कुचिपुड़ी नृत्य ने प्रसिद्ध कलाकार और ए कुचिपुड़ी नृत्य करुआ। कला और कलाकार पर्यटन आमचो भारत ने खूबे प्रसिद्ध आसे। कला ने आमचो छत्तीसगढ़ ने बले पर्यटन बलों ने चित्रकूट तीरथगढ़ ने बले आसे कितरो अच्छा आसे उनके दफ्तों का जे आमचो दूसर देश ले बले यही सोत। आमी दूसर बाटले एवं बाती आमचो बस्तर चो कला बल्लो ने मूर्ति और बरन बरन चो कला भाई मन बनान बाती बिकसोत। कलाकार भाई मन तान ले बाहर ले बले घेनुन नहीं सो। आमचो देश असन आए कि चढ़ी चुड़ूम जीव जंतु उन आमचो देश ने कितलो सुंदर और कला ने आमचो कलाकार चित्रकला हो नौले नाच तो कला हो आमचो देश ने बड़े बड़े पुरस्कार मन बले पाए सो और हुनमन प्रदर्शन बले दखाए सो। आमचो देश चो रान बन और चढ़ी चुड़ूम पशु जानवर कितरो अच्छा एमन चित्र बनान बाती प्रदर्शन मन बले करसोत। और आम चो बस्तर चो कलाकार भाई मन कहाँ कार्यक्रम आए बल्लो ने हुता कलाकार भाई मन दखाए सोत और बड़े बड़े पुरस्कार मन पाए सोत। मूर्ति कला ने बले कहाँ कहाँ प्रदर्शन लगे से हुता मूर्ति कलाकार भाई मन जो बले नाम होय से। भाई बहन मन आप लो जीवना का जे काई ना काई कला सीखुन रले आमचो जीवना ने काम ऐसे। खेती बाड़ी बल गोटो कला होय से काई बले सीख तो बीती हो सीख हुन कलाची होय से जान लो। भाई बहन मन तो काम बुता हो काई ची कला बले हो उन मन कर सोत और नी जान लो भाई बहन मन एके सीख तो राय और आप लो जीवना ने कहीं बले कला के सिकुन रले काम ऐसे। तो भाई बहन मन ए तो रली नगद गोट अदाए फेर बले नगद गोटा से आले एक बले सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान हो।

0: हो?
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 से 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: हाँ तो भाई बहन मन ये बोले नगद गोट के सुन लू अदाए गोटो गीता से ए गीता बिया गीत आजकल बोलो ने बिया मन बल होई से और ये बिया गीत के गावला से धन सिंह और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बले सुनू।

हाँ तो भाई बहन मन, ये बिया गीत के तो सुन लू। ये गीत के गाउन रो धन सिंह और हुनमन जो संगवारी मन। तो भाई बहन मन, और बोले गीता से ये गीत के गावला से शिवराम नाग और हुनमन जो संगवारी, ये गीत के बोले सुनू।

हाँ तो भाई बहन मन ए गीत के गाउन रो शिवराम नाग और हुन मंचो संगवारी मन। भाई बहन मन ए गीत सुन ले तो गीत सुनुक ची भाई से मानतर फेर बल्ले गोटो गीत आसे। ए गीत के गावला से बलवीर सिंह कच और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

हल्बी बोली में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। एफएम बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी हैं। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सोमारू गीत रसरसा लागली ना सुनतो के
1: ने काय सुंदर गीत के सुना लिस ना मैं ए गीत के सुनन सुनन गीत के गाव दे बोल रहे हैं काय हाओ
0: इतरो सुंदर गीत के फिर गाव खोय दे छी ना कस हाओ
1: तू छ मन रानी खूबे सुंदर सुंदर गीत मन के आन लिस इतने
0: आ तू छ मोर रिम द खुंदा
1: हाओ काय मोच मन रे ने दे मोच बाटले बोल गोड गीत के सुन काय संगरो मिन अगला गीत आय फिल्म तड़ी पार ले
0: हाओ
1: 1993 ने ये रिलीज होलो ये गोठक लोकप्रिय रोमांटिक गीत आय ये गीत ने नदीम श्रवण आप लोग संगीत ले सजाला से और समीर ये गीत के लिखला से
0: हाँ।
1: और ये गीत ने काहे सुंदर आप लोग मधुर आवाज दिला से कुमार शानू और अलका याग्निक तो संगवारी मनिया सुनो ये गीत

गीत गूंजते हैं और लोगों के जीवन में कला सांस लेती है। बस्तर की पहचान उसकी लोक कलाओं से है। यहाँ की कला केवल सजावट नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज जब दुनिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारी लोक कलाएं आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएंगी? उसका सबसे बड़ा उत्तर है युवा। युवा वह शक्ति है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बन सकते हैं। बस्तर की लोक कला बहुत विविध और समृद्ध है। यहाँ की ढोकरा कला पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह धातु से बनी एक पारंपरिक कला है जिसमें कलाकार हाथों से सुंदर आकृतियां बनाते हैं। इसके अलावा लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी की कला, बांस बने सामान, पारंपरिक आभूषण और गोदना कला भी बस्तर की पहचान है। बस्तर के लोक नृत्य भी यहाँ की संस्कृति को जीवित बनाते हैं। मुरिया नृत्य, गोंडी नृत्य और अन्य पारंपरिक नृत्यों में केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज की एकता, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई देता है। जब मांदर और ढोल की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल संगीत में डूब गया हो। लेकिन आज की पीढ़ी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव बहुत तेज है। कई युवा अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं। धीरे धीरे लोक कला केवल त्योहारों या विशेष अवसरों तक सीमित होती जा रही है। यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि यदि युवा अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान खो देंगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी बहुत प्रेरणादायक है। आज बस्तर के कई युवा अपनी लोक कला को बचाने और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ युवा पारंपरिक कला सीख रहे हैं, कुछ लोकगीतों का नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आज इंटरनेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया बल्कि अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने का माध्यम भी बन गया है। युवा अपने मोबाइल से लोक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प की वीडियो बनाकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इससे न केवल कला की पहचान मिल रही है बल्कि कलाकारों को रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बस्तर की लोक कला हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। यहाँ की कला में जंगल, पशु पक्षी, नदियाँ, धरती का सम्मान दिखाई देता है। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट का सामना कर रही है, तब बस्तर की लोक संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन में जीने का संदेश देती है। युवाओं को चाहिए कि केवल आधुनिकता के पीछे ना भागें बल्कि अपनी संस्कृति को भी समझें। आधुनिक बनना गलत नहीं है लेकिन अपनी पहचान खो देना भी सही नहीं है। यदि युवा अपनी लोक कलाओं को अपनाएंगे तो वे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगे। लोक कला केवल अतीत की धरोहर नहीं है, अपने भविष्य की शक्ति भी है। इससे रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्मान बढ़ सकता है। यदि युवा इससे रुचि लें तो वे अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आज आवश्यकता है इस बात की हम अपने बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ें, उन्हें लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कला के महत्व के बारे में बताएं, घर और समाज में अपनी परंपराओं को सम्मान दें। जब युवा अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तब समाज मजबूत बनता है क्योंकि जिस समाज की संस्कृति जीवित रहती है उसकी पहचान भी हमेशा जीवित रहती है। बस्तर की लोक कला हमें प्रेम, एकता, प्रकृति और सादगी का संदेश देती है। यहाँ की कला में दिखावा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। यही कारण है कि जो भी बस्तर की संस्कृति को करीब से देखता है वह उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि लोक कला केवल अतीत की कहानी नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता भी है। आज जब हम हर चीज़ें मशीनों से बनने लगी हैं तब हाथों से बनी हुई वस्तुओं का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जिनमें मेहनत और लगन की भावना जुड़ी हुई है। संस्कृति की

0: झलक दिखाई देती है। बस्तर की कला में यही विशेषता दिखाई देती है। युवा यदि चाहे तो अपनी पारंपरिक कला आधुनिक सोच से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए पारंपरिक डिजाइनों को नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकगीतों को नई धुनों के साथ गाया जा सकता है। इससे नई पीढ़ी भी इन कलाओं के साथ जुड़ाव महसूस करेगी। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि युवा केवल दिखावे तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी कला की असली आत्मा को भी समझें। लोक कला का अर्थ केवल मंच तक प्रदर्शन करना ही नहीं है, यह हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। बस्तर की संस्कृति में प्रकृति का विशेष स्थान है। यहाँ के लोकगीतों में पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों और जंगलों का वर्णन मिलता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही गहरा है। आज जब संकट बढ़ता जा रहा है पर्यावरण को लेकर, तब बस्तर की लोक संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की प्रेरणा देती है। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी संस्कृति से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी लोक कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि जीवन जीने की सीख भी देती हैं। आज गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। बहुत से युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए अपने घरों से दूर चले जाते हैं। यह आज समाज की आवश्यकता भी है, लेकिन वो जहां भी रहें उन्हें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। अपनी भाषा, अपने गीत, अपनी परंपराओं से जुड़ाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब कोई युवा अपनी लोक कला पर गर्व करता है तो वह दूसरों के सामने आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान प्रस्तुत कर पाता है। यही आत्मविश्वास उसे समाज में एक अलग पहचान दिलाता है। लोक कला समाज को जोड़ने का भी काम करती है। जब किसी गांव में लोक नृत्य या सांस्कृतिक आयोजन होता है, तब सभी लोग एक साथ मिलते हैं। वहां अमीर, गरीब या छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिलकर खुशी बांटते हैं। यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ें। यदि बचपन से ही लोकगीत सुनेंगे, पारंपरिक नृत्य करेंगे और कला को समझेंगे, तो वे बड़े होकर अपनी संस्कृति को सम्मान करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का संकल्प लें, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां भी गर्व करें और कह सकें कि बस्तर केवल पारंपरिक सुंदरता की धरती नहीं है बल्कि कला और संस्कृति की आत्मा है। धन्यवाद।
1: संगवारी मन, एबे आपन मन सुनते रहलास वार्ता बस्तर का लोक कला और युवा, जे जो वार्ताकार रहला इंदिरा नथानी। तो संगवारी मन, आमी आशा करूं से कि वार्ता अपन मन के खूबे मने इली होती ने।
2: हाँ संगवारी मन, अदाय फेर जो गीत गोविंद बाटे। अगला गीता आए फिल्म राजा ले।
1: हाँ
2: 1985 चो ये गोटोक बेहद लोकप्रिय गीता है। माधुरी दीक्षित और संजय कपूर के ये गीत ने फिल्म आला से।
1: हाँ ये गोटोक रोमांटिक और चुलबुला गीत आए, जे जो हर लेखी चो गोटोक आप लोग सुनहरा सपना चाहत और प्रेम चो गहराई के दर्शा हुआ है ने।
2: संगवारी मन, ये गीत ने स्वर दिला से अलका याग्निक, उदित नारायण, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।
1: तो संगवारी मन, या सुनो ये गीत।

0: ये ना सोमारू, किसी दिन बनूंगी राजा की रानी, बोलकर तू चो बोलतो रानी नहीं अतना ऐसा हरी खोत रही
1: तू गीत बोलतो असली सुना सी ना हाँ हरी खोत असन गीत मन के
0: अले आगे बढ़ू ने
1: हाँ आगे बढ़ू का है अच्छो मचो मन रहा तान ले बोले दे गोटो गीत के निकरा है साल सुनन दा हम चो अगला गीत है फिल्म कुर्बान ले हाँ और ये गीत ने स्वर दिला से सोनू निगम श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट जे चो गीतकार निरंजन आयंगर और जे चो संगीतकार सलीम सुलेमान

0: सोमारू तिबल गीत सुनुन सुनुन भूत लुन गेलिस ना
1: होइन
0: ज्ञान ध्यान छ गोड बोला से बोल त्रिशाल हुनके बोल तो हमरा हूँ संगवारी मन लगे
1: ना सत्य सुरता करल इसमें नींद ने बुलक ले जानो
0: आले मुरिया
1: हाओ आज तो संगवारी मन जसन के अपन मन के हम ये पहले सांगु रूने हम जो मन रानी आजी हम ज्ञान ध्यान जो गोट के बोल धरुनी लो से बोलते तो इतना धर्म मचोल गोटो ज्ञान ध्यान जो गोट में तुके सांगे से सुनन दल पृथ्वी ने सबले पहले आलू के उगाला ने जो खेती कर लक जानू हाँ एक तू जानती रही इसका
0: समझ जानते रहे और मेंढका गोटो असंजीवाय जोन पानी चो भीतर रुआय मात्र पानी के बे नी पिए
1: मुसन हाँ ना पानी भीतर रुन पानी की नी पिए ने भयंकर आए देवे ना हाँ जो ये दे माने बोलो ने मनुष्य ने सबले पहले भेड़ बकरी नाम चेली मेंढी चो दूध के पीला
0: अच्छा मनुष्य पहले भेड़ बकरी चो
1: दूध के पीला हाँ, हाँ, गोरोस के
0: हाँ,
1: हाँ। और ये मनुष्य बोलो ने माने मन आप लोग जीवन चो 25 साल के सुन सुन बिताऊं दे
0: पोका
1: पोका हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। 25 साल
0: दखनी 25-25 साल बल खूबे दिन होए से ना सोमारू भारत ने रेलगाड़ी चो पहिया के कपूरथला ने बनवा
1: हाँ का कपूरथला ने अच्छा उता बनवा
0: आले आमचो ज्ञान ध्यान चो गोड इतिरी रहो कसन बल्ले घड़ीक दखले समयाबल होय से आउ रामचल गोटो गीत बला से ता
1: तू चो मन रन सना दिसता
0: हो गोटो का से ता ना आले हुन गीत बाटी जो
1: हाओ
0: संगवादी मन अगला गीत आए फिल्म आशिकीले ये गीत ने स्वर दिला से अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू गीतकार आज समीर संगीतकार आज नदीम श्रवण
1: तो संगवारी मन या सुनो ये गीत

0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ये ना धरम,
3: हाँ,
2: गीत गोविंद के सुनून सुनून और तुच्छ संगे हंसी मजा गोट गोथन गोथन,
3: हाँ,
2: टाइम बोले उन गेली जानुक नहीं होई,
3: हाँ,
2: ने
3: आ तुच्छो आज नजर चो शीर्षक चो गीत खूबे सुंदर रही ना,
2: हाँ, मने इली ने,
3: हाँ, तुके मने इली,
2: हाँ, मचो मंडरा ने और बोले गीत आज जानू, हाँ, मंतर काई करो जातो समय बोले
3: बोले होई से ने,
2: हाँ, उन चो का जिस सकलू बोल तो पड़े से
3: पड़े से,
2: हाँ,
3: हाल कसन घड़ी देख ले तो बेर होय से,
2: हाँ, काय
3: संगवारी मन आज चो कार्यक्रम तुम के मने ही ली होती,
2: हाँ,
3: हाल हम चो जातो समय बल होय से, हाल हम की दिया बिदा, मैं धर्मराज पटेल
2: और मैं समारोह कर शिया
3: शुभ संध्या जुहार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 ठिन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। और दुर्ग जिला में एक ठिन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झिन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 23 मई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 जगामन में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। इही कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहर ले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। रोजगार मेला में 257 युवा मल्ला नियुक्ति पत्र दे जाही। इमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम करही बाजार पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान करें। संग्रह मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार ले भेंट करें। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री धात्री महतारी मनल किट घलो प्रदान करें। ए मौका में मुख्यमंत्री स्कूल मन के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाए समेत आने आने घोषणा करें। एकर पहली मुख्यमंत्री काली सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारी मन के बैठका में पीए के पानी के समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम लेके नाराजगी जताईं। ओमन कोरिया जिला में खातु वितरण में गड़बड़ी आगू आए में सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्था आयुष प्रताप सिंह ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे के निर्देश दिन। इही बीच कोरिया जिला के जिल्दा समिति खड़गवा में खातु वितरण ले जुड़े गबन प्रकरण में दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाए में प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी ला घलो निलंबित कर दे गए है। राज्य सरकार खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। ये पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी करे गए है। इन नंबर में आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितता के शिकायत सीधा दर्ज करा सकें। सूचना केंद्र के संचालन हरेक दिन बिहानिया 10 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। नीति आयोग डहा ले जारी देश के आकांक्षी ब्लॉक मन के चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिला के उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन में देश भर में दूसर स्थान हासिल करे है। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ले जुड़े कई ठिन संकेतक के आधार में मूल्यांकन करे रहिस जेमा उसूर ब्लॉक के प्रदर्शन उत्कृष्ट पाएगीस। ये उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप जिला के नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ला बधाई दिन है। सहकारिता विभाग के आयुक्त महादेव कावरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले विभागीय योजना और काम के समीक्षा बैठका लीन। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे अधिकारी मल्ले कहिन कि किसान मल्ला बेरा में खातु उपलब्ध कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। एखर बार ओमन जम्मो पैक्स समिति में पर्याप्त मात्रा में खातु के आगूले भंडारण सुनिश्चित करे बर कहिन। ओमन खातु के उपलब्धता और वितरण के नियमित रूप ले समीक्षा करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहाले प्रदेश के जम्मो डाकघर में अवैया 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाए जाही। इस दौरान कोनो भी नागरिक अपन नजदीकी डाकघर जाके या राज्य सरकार डहाले नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या औ कोनो योजना में निवेश कर सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ू बांचे समाचार कुती। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में मां ए बखत बस्तर संभाग मां नक्सलवाद के सिराय के बाद स्थानीय लोगन तक विकास के रोशनी पहुंचाए बर सरकार डहाले करेगे अभिनव पहल ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 23 मई के आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर डहाले काली बिहानिया वाकथन के आयोजन करे जाही। ए वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकथन के शुरुआत बिहनिया 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर ले होही। ए वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होवत लहुट के आकाशवाणी परिसर में सिराही। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के सुरता में करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग डहाले पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण प्रचार प्रसार और रुचि जगाए के उद्देश्य ले आने आने कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 के आयोजन करे जाते। ये आयोजन 25 मई ले 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में करे जाही। शिविर में दोपाली में बिहानिया 7 बजे ले 10 बजे तक और संझा 5 बजे ले 8 बजे तक आने आने कला के प्रशिक्षण दे जाही। ज्यादा जानकारी पर प्रशिक्षु मन संस्कृति विभाग के वेबसाइट www.cgculture.in ला देख सकत हैं। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम अब बदल के राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय करे जाही। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग विश्वविद्यालय के नाम बदले के प्रस्ताव ला औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दे है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झीन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। शुरुआती जांच में पुलिस है आशंका जताए है कि दंपत्ति है पहली दोनों लैका मन के हत्या करिस एकर बाद खुदे फांसी लगा के आत्महत्या कर लेन। पुलिस है मौका ले सुसाइड नोट बरामद करे है जेमा आर्थिक तंगी और पारिवारिक झगड़ा के जिक्र हरे। पुलिस मामला की जांच करत है। और अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में तापमान सामान्य ले ज्यादा दर्ज करे जाते। मौसम विभाग रायपुर समेत बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिला के कुछ एक जगह में लू चले के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान ले आवत गर्म हवा के स्थिति अवैया 3 दिन में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज करेगिस। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग अपन जम्मू अनुविभागीय अधिकारी मंडल के प्रमुख अभियंता तक सबोला मुख्यालय में रहे के निर्देश दे है। निर्माणाधीन कार्य मन के गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करे काम के मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यालय तुरंत शुरू करे बर विभाग ए निर्देश जारी करे है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कोतिले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा खातिर अभ्यर्थी मल्ला 25 मई ले 30 जून तक आवेदन मंगाए गए है और महासमुंद जिला ले लगे बानवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में जंगली जानवर गौर के हमला में एक ग्रामीण के मौत हो गए है जबकि दूजन दूसर गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बताया जाते है कि ग्रामीण जंगल के आने आने जगह तेंदू पत्ता संग्रहण करत रहें। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 तीन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करी। राज्य सरकार ह खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केन्द्र की स्थापना करे है और दुर्ग जिला में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओका दूझीन लेका के सब संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: कहा पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेश प्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादश दिनांके दश राज्यानां चतुर्विंशति राज्य सभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणाम् अकरोत्। सर्वोच्च न्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमा क्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम् सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपितु भविष्याभिमुखी अपि अस्तीति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हल्बी गीत। गायक कलाकार हैं राजेंद्र कश्यप और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कश्यप और साथियों की आवाज में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 6:45 होने को है। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: सोलर पैनल लगवा ले, कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल है। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इस ऐप का शुभारंभ किया। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम करही बाजार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार से मुलाकात की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने धात्री माताओं को किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सुव्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना है।
11: आज सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर में आए हैं। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग किए तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन तिहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ।
10: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों में चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।
12: 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। इसमें एक जवान भी, एक पुलिस का इसमें तैनात होगा। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक, पहले 16 जिलों में था, ये 33 जिलों में अब आने वाला है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
10: राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद स्थानीय लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 23 मई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। शिविर में दो पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि दंपत्ति ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिलों के कुछ स्थानों में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में प्प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित नंदन वन जू और जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की 7,66,00,000 रूपये कीमत की 16 संपत्ति को सीज कर दिया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 25 मई से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और महासमुंद जिले से लगे बारनवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में वन्य प्राणी गौर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण जंगल के अलग अलग क्षेत्रों से तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
13: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बूताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 8% जीएसटी मोला देने दोर किता अदेन के और सुबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मंता।
2: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
3: हाँ तो मुंद्रा मान जी जाला मन के तमरा लू ने
4: हाँ ठीक है तो और दकाजी दिन है शुक्रवार तो मैं ये बोल रहे आज हम शुक्रवार दिन का आया कार्यक्रम
3: भेट वार्ता अरे भेट वार्ता भीतरे आम ची बोहरा नी परंपरा ने तो एक आम ची लगे दर उनला श्री मंदर रामना अरे मन संगे भेट गोड बात करे सत पलवेर सिंह कच अले भेट वार्ता बोल अमरा हूँ।
5: गांवकारी भाई बहन मन देखा आमचो बस्तर ने कितले रीति रुसूम मन आसे और ये सपाय आमचो जीवना संगे जुड़ली से कई तियार बाहर बोला आसे कई नीति रीति बोले आसे जेके साल भर आमचो बिलने गांवकारी भाई बहन मन बनाए सोत आर हरी कुदिम ने रह से तो असनी गोटक रुसूम है बोहरा नीचो परंपरा ये बोहरानी परंपरा कसन बीती आए यही परंपरा के जानतु काजे मैं गोट बात करने से श्री मंधर राम नाग संगे तो मंधर राम नाग सबले पहले तो जुआर
6: जय जुआर बाबू जय जुआर
5: हाँ
6: मैं गांव कुरुस पांचो आए
5: हाँ
6: मैं आगे गुरुजी बल रले
5: अच्छा
6: और मैं पढ़ाई बल समाज शास्त्र में एमए बल कर ले
5: अच्छा हाँ हाँ
6: ये समाज ले एक जुड़ लगी एक बहुरानी है
5: हाँ
6: गाँव चो गोलिया मन चो एक बोरानी आए बोरानी जो है आमचो पुरखती ले आमचो परंपरा ले जुड़ली से आमचो मूल संस्कृति ले जुड़ली से ये बोरानी बना तो बीती जो है आमचो नियम वाला से गाँव गोली चो हर गाँव ने बना हुआ तो ये जो है भादम जोन बोल लेने नोआ खा तो पहले ये वोट बना तो रुसू मां से बोरानी
5: हाँ।
6: तो गांव जो सियान सजन मन जो है जूत राय बटक करतराय गुड़ी ने और भादम जोन ने काय करतराय बोले सारी बड़ी पाड़तराय सारी बड़ी पाड़न बाती आम के तय करतराय दिन के तो दिन जो है मंगलवार दिन ना आले गांव सुबिता हिसाब ना शनिवार दिन है, ये दो दिन है बोरान निष्का तो त्योहार सनाए बोले एक बनात रुसुम होली से।
5: अच्छा।
6: ये जो काज काय करता है हम जो घर घर ने जूटा बाड़न जो साल भर ने पड़ा रुआ और टाकरा टुकना जूटा बीती दावा गाय बैला चो दावा कचरा पकालो सज डोरी गेटा डोरी असन बीती उनचो गाय बैला बांध तुन डोरी तो संगे संगे लाल करिया रंग जो झंडी बनात रहा है और मोदे छाली चो डोली बनान होम किटका नड़ेर केरा कदली लाली गुर घीव करिया बरहा पिला कुकड़ी चिया चौकी चित्री करिया जोंदरी सात मणि बरन माली और कुकड़ी गार जेके नीमी बल बोला है कुलोगार गर्भनिगार और मानसल का और ये तो संगे संगे उन तर्पणी मोडोंगा तर्प नाल मोडोंगा बनान वाती जो है आमी गांव चो जीतल वाले कतवाल पटेल पुजारी और गांव चो प्रमुख लोग हम चो माता गुड़ी ने एक बना तो रहा और शनिवार नाल मंगलवार दिन पनाए सांगले समय उन हिसाब ने और एक संग संग मौसमाटी बल बना तो रहा है फूल बल बना तो रहा है ये सब जमक बनान बाती हम चो गांव चो बेर पड़ती वाटे बेर पड़ती वाटे हम जो माता गुड़िन बनान बाती है कि मुंडे बेरा उन बात है कि जोड़ा तोड़ा बनान कुकड़ी चिमड़ी सब के धरुन बाती ये उन बाटे सन के जो है नकामित रहा है और हम जो गांव निकोटो तीन गांव जो जो देवा से उनके लगड़ा गुड़ी बनाए हुए थे उन लगड़ा गुड़ी चो सिरा चो उन गुड़ी ने उन बाती है कि ये मन के पूजा का पाठ लोग बोल उनके बनान बाती आउन बाती है कि उल्टा पाँ एक बाट उल्टून दफ्तर नो आए आप लोग गांव पारन फिर वो उल्टा पाँ ये तरह उल्टून दफ्तर नो आए ये गोटोक बोरानी बना तो प्रथा जो है ये हम चु गांव गोली में बोली
5: तो ये जो परंपरा है बोले ने ये काय काजे बना तो वैसे कसन समिया ने
6: हाँ अच्छा ये परंपरा जो है हम जो गांव गोलीन जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखा पार्टी बेराले बाबू ये चलती ली से तो ये के काय काज बल्ले बना तो रहा है कि साल भर चो गोटो के त्योहार शुरू पाई ये बोरानी ये त्योहार ये के काय काज बना तो रहा है बल्ले ने गांव चो जीतलो बोले गाय बैलान जो खुरा चपका लगे से छेरी मेंढी की खुरा चपका लगे से पीला जिला के जुड़ दाबक जरमुंड और कई प्रकार की उल्टी खोखली जो बीमारी सीमारी बन जो है ऐसे नहीं नवा खाउन मल बीमार सीमार पड़ुआ ये चले बात तो का जे ये के जो है बोरानी जो है निकरा तो विद्यागत ले होली से बोरानी बनलन का है कि आम से जितला वाले गांव जो बीमारी सीमारी जो रोग दाबक जो आसे उनके बोरान देती ये गोटो प्रताप होली से बोर आत्मित बोरानी तो ये सब कर लेन का है कि हम जो जितल बोले हम जो सांगले उन जुड़ दाव का है पीला जिला के ये बीमार सीमार पड़तो और खांसी खोक लिया है ये सब के गुजात बीती ये निहोली से
5: बोले ने गोटो हिसाब ने दख लेने का है कि स्वच्छता चो प्रतीक है कसन बोले ने जीतलो बोले गांव ने
6: हाँ,
5: खराब चीज हाँ, रहे से बोलूगे
6: हाँ,
5: उनके ओंडा करुण बाती आम उनके बोहर आखने उसे दूसरे बाटने
6: उनके हाँ, ये बोलूगे आमी ये बोहरानी जो माध्यम ने
5: हाँ,
6: जो स्वच्छता
5: हाँ,
6: माने ये बारन का है जी आम के स्वच्छता चो प्रतीक है बड़ा उसे और ये टाकरा टुकड़ा बोला उनको ओंडियाओं से
5: ओंडियाओं से
6: जितल बोले आए जो गांव ने ये आमी काय बोला तो उनके ये गंगा चीज ने लाटा बूटा चिकल ये काय काय उन कोंडियान मत की नहीं हम साफ सफाई कर लेने और एक पकान दिले कि ना चला गए कर सर
5: तो
6: उसमें जो है ये स्वच्छता जो बोले एक प्रतीक है बोरानी मैंने बोर आ पड़ा
5: बोर आ
6: जैसे पानी नाम बोर आंदे होते नहीं नदी नाला ने वो आते नहीं से उतनी देवधामी एक वो आते नहीं से रोन जाले हम बोर आने उन संध निष्कान दे उनसे उन पर उन पाटने हुए उतनी नेते नेते उन आगे तक जहाँ तक पीढ़ी आगे बने जुग जो जो बनली से जाले हम उन ये गांव ले उनका उन गांव ले उनका ये रोग राय की नेते भी थी एक सुरक्षता का प्रतीक है ये कि हम बढ़ाते जाते रहे आगे।
5: बल्ले ने दक ये स्वच्छता प्रतीक ऐसा ना है जैसे की आमी गांव पूरा साफ सफाई होली सब लोग साफ सफाई होली बल्ले ने तुरते तैयार है ऐसे उन हिसाब ने बोले बल्ले ने जोड़ से साफ सफाई हिसाब ने है की नहीं
6: उतल ने फिर आमी ये सब कर नवा खा तो बीती हुई गोट तो नोआ दुख के पकान बाती माने दुख के पकान सुख ने नोआ खावा अच्छा विचार आई आई नहीं तो देव धामिक बोले तो पूजा पाठ करूं ये फिर नोआ खानी बलाम पूजा पाठ करते रहे ये गांव ने अमी देव धामी का मनान बाती तो हम भी कहा का जो दुख डंड बाबू नहीं होए नहीं होए तो असम जो है हम देव धामी हम के जुग ले हम के सारा होती है तो हम एक काय का जामी ये मन के अमी नी पूछू पूछता रहा है बिल्कुल एक बनात रहा है मैं गांव या भाई बहन मन बल सांगे से एक ही के भी नहीं बोल को गांव ने पुजारी काय काज बना ला ये सब चीज मन बना ये सब पुजारी बनान मुखिया बनान ये देवी देवता के मान सम्मान ने उन विदा कर रहे नाम काय काज डांट दे डाटा बहिर नहीं हो
5: बोले न आगे चो जोन पुरका पार्टी चो सियान मन बोले साफ सफाई चो जोन उनचो महत्व आए ये चोल काय फायदा आस ये सफाई के जानून बाती ये जोन रुसुम आए जोन रीति आए के मूर करला होती असन लागे
6: हाँ सियान मन जो है ये के विचार करला गांव चो और कसन ने आमी ये दुगन आगे तो आम च लगे सूजी गोली दो आयदार इजबल का ही नहीं रहे आम जग सिरा दुनिया रो देव धामी रहे और तो आम यही एक माध्यम रहे आम जे लगे कि तो बोले आम जग जर आए मुंड आए खुस खोखली आए जूड़ आए दावक आए जसन बोले आए तो पहल जो है आम काय करू गांव में जाऊं बाती घुड़ी में जाऊं पुजारी धरून आप लोग घर गुड़ी बला से घर गुड़ी मर जाऊं बस पूजा अर्चना करूं सेवा जुआर करूं ये कर लेन सब होते रहे बाबू आगे चो तो ये होते रहे तो हम धीरे धीरे क्या बिल्कुल जात रहूं एक चो जो पीढ़ी आसो एक चो पीढ़ी तो बिल्कुल भुलकला माय बाप के सब लोग नहीं तो देव के कहां सक उसन कर तर नो आए तो एक भुलक लेने हम ही भुलक लेने जो पीला जिला मन बोले एक चो जो पीढ़ी आसे मन बिल्कुल जादे ये आगे पुरखती जो त्योहार है बाहर आए ये सब लुप्त तो हो दे हाथ से जाए दे एक जगह तो काजी का आया है कि आम की पीलावन बोले सिखात रहा है घर जो तीज त्योहार के बोले बनात रहा है जतन की अमूस आए नवा खानी आए बोरानी आए और कई प्रकार जो गांव जो जो त्योहार आते है ये के आम के भी भुलक्सर नो आए और एक जो है हम जो पुरखती जो जी जाए उनके काम के दखात रहा है देखिए हम बनात रहा है और सिखात रहा है अब जो लेखा लेखी जिला जिला बन के
5: तो द गोड बात ले हम ये जान सकूं कि आगे बोले का है कि जोन सियान सजन मंडला बोलू गांव चो बोले घर द्वार सब साफ सफाई रहे का है कि बीमारी समारी बोले ए उकलाए नहीं सके आए कि नहीं ऊंची प्रति के बहरानी के बोले हम मान उकलाए सकू आए कि नहीं गांव ने अच्छा साफ सुथरा रहो सब देव दामी गुड़ी जोन बलिया है उन साफ सुथरा रोन बाती बोले ने उस माए नीति आए उनके हमें बनाऊ ते भी आमचो जोन गांव पारा और आमचो देह पाए बोले नंगत रहे
6: दे
5: आए कि नहीं
6: मैं आगे बस सांगे से आमचो फिर मैं गांव करिया दादा दीदी मन के हाथ जोड़न प्रार्थना करे से ये बोरानी त्योहार जो है यही मौका है ये भादम महीना ने एक बना बीती आई ये के भादम महीना ने एक बिल्कुल बनात रहा है और ये जो देवधामी के जो नाराजी ओला से मन की मनात रहा है पूजात रहा है हम के काई नहीं हुए और ये गोटो कोरोना संकट ने जो हम चो जो ये भी जो बात तो बीती गोट होली से काय काय के पालन करत रहा है काय काय के हम जो ध्यान देत रहा है ये सब चीज की बोले हम के धरुण बाती ये बोला हम चो गांव चो साफ सफाई और जागरूक बीती ये हम चो गोट बोले ये आए मैं इतली बोलून भाती सब बस्तर जिला चाम छत्तीसगढ़ चो जितलो बोला हम चो भाई बंधु बहन मनासो बड़े ब्राह्मण चो आया बाबा जितलो आसो सबके मैं करें से जय जुआर सेवा
5: जुआ। हाँ बलन का है कि कहीं ची बोले बलन बीमारी से मारी हो ये चो घुचा तो का जे सबले पहिल पूरी ऐसे बोले ने साफ सफाई ये भी बोले बोल सोत की मतलब का है कि साफ सफाई के खूबी ध्यान दिया स्वच्छता के खूबी ध्यान दिया तो उसने आमचो ये बोहरानी चो परम तो आले मंदर राम नाग तुम्हें इतलो अच्छा बोले ने बोहरानी चो परंपरा के सांगलास सपाय सुनला होती सब जानून बाती मान दे समझ दे आल खूबे खूबे जुआर
6: जय जुआर सेवा जुआर
7: ये मोचो।
3: हाँ तो मुंद्रा मान जी
4: हाँ ठीक है
3: एक आय सुंदर भेट वार्ता के तो सुन लो ने
4: हाँ हाँ
3: तो असनी ची हम चल गए जाला बोले आसे आले जाला बोलम रहा हूँ
4: अरे अरे
8: दूध घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
9: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
9: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: मुंद्रा मां जी जाला मन के तमरा लो ने
4: हां ठीक
3: है एची संगे हम जो जातो समय बोलियो ऐसे ने तो तुम ड्रागड रक्षा कर मैं भी दमा गेन
4: आले
3: एची संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनते सब पाए गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं टीरू
4: और मैं मुद्रामान जी
3: हमें दोनों करूं से राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों का कार्यक्रम आम चौगाओं।

0: कि दिनले भेटघाट हुने रासन दिन भेटघाट हुनु पनि दिन है शुक्रबार मन र पक्की बढी धर्म तमर बेसी स्त्री बोल्ने राम छ रेडियो सुन्छु दादा दिदी मन यस समय रेडियो लगे बस्ला सँगै पिलामन बोला छ आजकल पिलामन बोली स्कुल छुट्टी होली से और समय एबे घाम तब से आए मान्छे घाम त फोलन बल नाटिरु असलाई बुताकुले पुड गए तनी करन त नि होय
1: नि होय का
0: समय एकदम बुता कर आजकल का होल दक हम छु किसान भाई बहन मन भरदर एकदम बेड़ाबाड़ी ने बुता कर सो कसन बोले ने एबे सामने बतर दिवाबे
1: वर्षा
0: तो यही समय अगर हम बेड़ा ने बुता कर लो बोले तेबे तो फसल लगाऊ दे ने तेबे बेड़ा के जतन लगातार कोन पाजी हिर के बनाए सोत कोन ढेला फुटाए सोत ने तो कसने तक हम फसल मन लगाते यूं से और कमानी मन करू से ने मानतर होनी फसल हम गोठियां सो आजकल तक फसल जो हम बोलू से ने हम धान धरू से जोंदरा आए मंडी आए तिल आए ने और असने खंडी खाम से कौन कौन किसान भाई मन वैज्ञानिक हिसाब ले कई प्रकार से नुआ उवाट ले कोनी कोनी दाए टमाटर बीन्स तुझो फिर लाऊ असन होली ने और मिरी इतना असन बोल लगाए सोत
1: लगाए सोत
0: मानतर हम के दत रहे कि हम जो जो न शहर हाट हो नाल गांव छाट ने इतना काय बिती जीनिस जो जुगे मांग चले से
1: हाँ काय कसन बल ले आजकल हम जो आठ बाजार ने बल ले ने एक कोसरा होली चिकमा गटका असन बिती फसल मन जो ज्यादा मांग बढ़े से ने
0: और मोल बला से
1: हाँ कसन बल ले ये फसल मन लेना ही का है तो बीमारी सीमारी बोले हमें दूर हो ऐसे ने
0: दूर हो ऐसे और देख उसने हम जो एक बार चे जुगे लगवाते ने मंडिया देख मंडिया बोले ताए हम ही पहले गांव लोग मन पका पेज हिसाब ने बनाओ और पीऊ ने मानते ताए शहर पर तो देख घर मन ने मंडिया मिले ना
1: मिले का
0: पक्की रसिया पेज बना सो पीएस हो तो उसने ये बोल होली संगे संग गोटक आओ रहता ठीरू मैं खेड़ी आजकल हाट बाट बोल ले बोले दुख पाई ने खेन ध्यान दी मैं बोले दार माजी काजी बोले नी उड़ी दार ने उन बोल नी शहर बाट कम बिक्री नहीं होइस ना
1: वैसे का ने
0: उड़ी दार के बोले शहर यही साहब ने उन डोसा इडली बनाए सत
1: बनाए सत का
0: तो ये से बोल नी मोल अरना पास है
1: आसे का
0: तो हम से जो रेडियो सुन तो किसान भाई बहन मन एक असनी समय आवाने मन बोल बाड़ी बेड़ा खेड़ी लगावत ने और खेड़ी कच्चा दखा रखा करो तो और आप लोग लगे से जो खोजा खरी भाई बहन मन लग खेड़ी बात करूं बात ने जैसे ऐसा पका बोल लग गए
1: अच्छा,
0: नगद उबाट ने घर खेती कर ला बोल नगद उपजन बोले दो पैसा ने घर कमा दे
1: हाँ घर कमा दे का कसन बोल ले फसल मन के कमा लेने का आम के उन्नति बढ़ती बोले नंगत तो ऐसे
0: नहीं और असन आईटी रू कोनी बोल फसल हो कोसरा हो कोदो हो ने कुटकी हो नाल जोंदरी हो ने जोंदरी बोली आजकल बोले कम ही होली से कहीं कहीं मेरे समाज जोंदरी बोल खूब मोल होली से
1: होली का
0: और हन बोल का बोले ने हम जो खोजा करी भाई मन छी साहब एकदम पौष्टिक आहार बोल सो
1: बोले
0: के मंडिया के तो ये बिची मन खामी कसन विधि लगाऊ और कसन ले नगद उपजन धरु ये चो बोल वाट जान त्राय बोल लगे चो ग्राम सेवक भाई मना समय संग गोट बात करो संगे संगे हम जो शहर कृषि विज्ञान केंद्र आसे ने कई प्रकार जो वैज्ञानिक भाई मन आसत हनुमन लग जाओ हनुमन लग भेट हो नुआ नुआ किस्म के जानो ने और माटी जांच कराओ
1: कराओ
0: तो ऐसा कर का आई टी रुदक हम जोन बल फसल धरू दे हन फसल के हम कसन नगद उपजन बनावा समय हिसाब ने तो ये सपा के हम खोजा करी भाई मन अच्छा नंगत ले सांगुवत
1: सांगुवत का कसन बल ने हमें कौन माटी ने काय फसल अच्छा हो देने उन सब के जानकारी दे हुआ
0: दे हुआ और माटी ने बोल तो कसन आए खोजा खरी भाई मन काय बोलत तुम चो बेड़ा हो बाड़ी हो होता माटी का ना उनके हम जांच करूंगा बोलत जांच कर ले होता नहीं काय चो कमी यहाँ से हम तो संगत कि गोबर खत लागू आए कि यूरिया है कि फास्फोरस है ने तो असन जान तर बोल जरूरी है
1: जरूरी है का
0: असन बोले वाट के एबे आसे हुन वाट के हम के जाम बसी के जान तर वाला से कसन तो खेती कर तो रह छी और मोर कमन तो खेती है हम छो तो ये नगद गट होली असनी फिर नगद जहला वाला से
1: हाले
0: बोल सुनो
1: हाले सुनो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।

0: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता की देना संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
0: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: तो मुंद्रा मांझी ये जाला मन के तो अमरालू ने
5: हाँ।
4: तो उसने ची आज दिन बल्ले ने शुक्रवार ने
5: हाँ।
4: तो आमी आजी चो मोड्रा ने गोटो कल भी नाटक आसे ने ए नाटक चो ना हुआ धन है कोसा। तो एक के ए नाटक के लिखला से श्री मनोज कुमार पानीग्राही आरु ए प्रस्तुति आए बलवीर सिंह कच्छ आले एल बी नाटक के बले सुनू।

0: मांतर आमचो का जाए बारती चो बाट जाले आमी करून दखावा तेबे जान से। गाँव चे भुतियार भाई बहन मन आमी इत्रो लोग मिलून मिसून काय रेसिया भूं के जतनालू गोड़का कुसला करुण भाती रेशम विभाग बाटले मिरलो कहुबूटा के लगालू इतरी काम काजे बोले दखा गाँव ने रोजगारी ली और आम के आमचो करलो भूती बोले मिरली दखा ए कोसा कीड़ी पोस्तो काजे ए भुईचो रोपलो कोहुबूटा गच्ची नाई आई रांचो गच मन ले बोले कोसा कीड़ी की आमी पोसुकला सकू आई और असन ए साहब मन आम के सांगला से
1: सत्य सत्य
0: ए बे साहब मन ए दे और आम के ट्रेनिंग दे दे और सांग दे कि आमचो कोसा पोस्तो काजे समूह बना दे और कसन करतो राय काय करतो राय सफाई गोट के हुन मन इन भाती हमके सांग दे
2: आसा आसा राय ने

0: लखमा लखमा मैं तुके सांगे दे बोलते रहे आजी आमचो बाढ़ती की दखुन भाती पूछ पचारा करतो काजे रेडियो स्टेशन ले साहब मनी बात मने
1: तुम्हें घर बाटे जाऊ भाती है देखते रह
2: चैतु दादा हाँ दे दखनू हुन मऊ रुख खाले कौन कौन जाने हाँ दे बस ना सोत
0: साहब बना के नंबर लगाए नू मैं भले जाए
2: हाँ दे

0: गावचो दादा दीदी मन आजी आमचो पुरे शहर बाटले कोसा कमाने के दखतो काजे साहब मन इला से आमचो कोसा कमाने की अबे तीन बरख और तुम ही तो दख सास की आमी अबे नांगत कमानी करुक धरलू से अबे तुम के जसन जसन पूछ पछारा कर दे उसने तुमी ये साहब मन के सांगा से आले साहब पूछा बे
1: तो आले मैं तुमन मन चो गाँव ने इले से सबले पहल आले तुम चो नाम मन के सांगून दिले नांगत रतिका है नू तो सरपंच तू चो सरपंच बनलो दिन ले गाँव चो लोग मन चो बड़ा उदिम होली मन यार गाँव चो उन्ती बढ़ती पकाए हो से मैंने सन सुना दे से आले काय काय तुमचो गावचो भारती आय काय काय आय सांगू दक
2: मैं तो सांगते ची रहे से साहब आज ये गोट मन के ए भाई मन सांग दे
3: हाओ मोचो नाव चैतू आय आमी ये गोट के नहीं जानते रलु कि कोसा बोले के बे कमानी दे उक सके बोलते ये गोट के सरपंचो सांगलो के आमी जानलु आरु गावचो पड़िया भोईने सरकार चो उआठ हिसाब ने को बूटा के मंडालू फेर बे काय रसिया कोसा कीड़ी के पोसून कमानी करूं से
1: हाँ ये तो हाँ अच्छा गोट के सांगलास तुम्हें ये कोसा चो कमानी करूं से बोलते मंत्र दखा घर काजे कहीं असन आमदनी तुम मन मन के मेरे से
3: हो होई से
0: मचो नाव लखमा है एबे आम के रोजगार काजे दूसर बाटे जाऊक नी लागे
4: आय
0: एबे आमचो काजे गाँव ने ची रोजगार आसे और आम के घर ले दूसर बाटे कहा जाऊ नी लागे साहब
4: होय होय
0: और घर काजे बोले नगद आमदनी होय से चे
1: आले भाई मन बाटले तो पक्की नगद गोट के सांग लाए कोसा कमानी चो मंतर ये दीदी मन बोला आसोत आले दीदी तू ही सांगू दक
5: ए मोचो नाम है सुकाली आमी बोले रोज जेऊ से आम के कसन कर तो राय काय करुक लागे से इस सब पाए गोट के नहीं रेशम विभाग बाटले साहब मन प्रशिक्षण देऊन भाती सांगला तेबे आमी सीखून भाती काम करू से और घर काजे नंगत पैसा कमाऊ से
1: हाँ ये तो सुकली दीदी नंगत गोट के सांगली ये कोसा कमाने भी थी मंत्र ये गोटक दीदी बोले आसे आले दीदी तुचो काय विचार आयल तू बोले सांगू दक ये कोसा कमाने ची गोट के
6: हो साहेब मोचो नाम आए रविबारी मंत्र इथा यून काम बले करे से और पाछे घर जाऊन भाते खिंडी कादक पढ़ाई लिखाई बले करे से साहब
1: हाँ तो तुम्ही सपाय गाँव चो लोग मन ये बुदू चो सरपंच बनतो के बले गाँव चो उन्ती बाढ़ती तो करसा सी मंत्र संग संग काय कि तुम खुद आपलान घर चो बले बले ने आर्थिक उन्ती बाढ़ती करते जाए साथ ये तो खूबे नगत गोटा है बल्ले मनुख मन संग संग का है कि बायले लेकी मन बल्ले बल्ले ने आपलान जीवना चला तो काजे पैसा कोड़ी कमा तो गोटक नोआ वाट के तुम धरलास ये कितलो अच्छा नगत गोटा है तुम चो सांग तो के मके बल्ले खूबे हरिक लागली आ लेते बे मैं जाए से तुम विदा धरे साल जुआर
7: जुआर, जुआर, जुआर, जुआर, जुआर, जुआर, जुआर।

0: हे नकाड़ी,
1: ओए साहूकार,
0: मैं नहीं जानते रहे ये कोसाने बले धन चो कमानी हो सके बोलन।
1: हो साहूकार, मानतर ये गांव चो लोग मन ये भी कमानी करुन भाती उजरला।
0: सत्य आय काड़ी, मौके बल ये बे बेड़ा ने कमानी बुता काजे लापी गांव ले भूतियार मन अनुक पड़े से।
1: सत्य आय साहूकार, ये गांव चो लोग तुचो पूरे चिटपोट नहीं करते रला, ये बे छाती के डेंग करुन भाती हिंडसो।
0: ओ दखनू,
1: आरु मैं सुन ले से ये बे नंगत कोसा उपजाऊन ये गांव चो नर्सरी लोग के इनाम बोले मिरली से मने।
0: आए इनाम?
1: ओ
0: असन ने ए ए ए नकारी होते होते सरपंच मन ए ची बाटे है सोतना पूछूं दक हुआ है।
1: ओ पूछूं दक, तू ही पूछूं दक।
0: ओ हाँ, राम राम ना सरपंच दादा।
2: राम राम, राम राम,
3: ए राम राम साहूकार, राम
4: राम, राम राम, हो राम राम।
0: ये सरपंच, मैं सुन ले से और दखे से बोले ये बे कोसा पोसून बाती बोले गांव चो लोग मन आप लोग पाए ले ठिया हो सो।
2: तू ही तो बोलते रही साहूकार, कसन करुण भाती गांव चो लोग मन कोसा के कमानी कर दे बोलून, दक्षिस का ये बे कसन कमानी कर सोत।
0: हो सरपंच, मैं ची गलत रहे, मचे ही गोड फंद होली, मैं ची टडम दखाते रहे।
2: फिर काय
0: मानतर गोटक गोट है
2: आले।
0: ये चेतु अरु लखमा तुम ही बल सुना ना।
4: हाँ।
0: दखाना ये बे पंचायत राज होली से।
4: हाँ।
0: जाले आगे ले मैं सौकार रले, मानतर ये बे मैं समझ ले कि गांव ने कोनी बड़े कोनी नानी नो आए।
2: हाँ।
0: यही लागुन मैं तुमन मन ले माफी मांगे से कि मोचोले काई बोले गलती होन गिली सी जाले, माफी दिया ना और गांव चो लोग मन के बोले असमय आने मैं संग दे दे और मोचो बोले बेड़ा खाड़े कमानी नगद चलो मौके बोले संग दिया ना।
5: ये पर सौकार के अकेली ले काई नुक
2: आले सौकार गोट की गांव ने आमी रहूं से मिलून मिसुन रतो राय। तू ही बोले गांव चो भी के कब्जा कौन रही
4: नहीं
2: पाछे आम बोलू बोल तक तू छाणू बोले दिलीस।
4: छाड़ लो
2: तू के बोले आमी संग देऊन दे, तू कोनी गोट चो फिकर नहीं कर।
3: तू ही बोले आमचे संग भीड़ कसन काढ़ी।
4: सत्य आय, ये सौकार के बल नहीं होए छाड़ी।
3: हो ना यदे आमी सब आए भाई, भाई भाई और भाई भाई नुहाओ भीने
4: भीने भाई।

0: Protiru.
1: हाँ मधुरा मांझी
0: का सुंदर कोटनी गीत रहे ने
1: ओके
0: चितालीस गीत कुछ आमने
1: ओके ये गीत के गाउन रो सिर दरार उन मंचो संगवारी में
0: तो कसनी और बोल हम लोग गीत आसे ने
1: हाँ
0: अली गीत बोल सुनाओ दे पाँची गीत कुछ आमने नौक संगवा
1: अली

0: तो मुंद्रा मांझी एक
1: सुंदर
0: गीत रहे ने और ये गीत के गाउन रोत मधुरा मारू उन मंचो संगवारी मन तो
1: असनी हम समय नहीं हुआ और समय ने फिर नो आनु आ गोड बाद गीत गोविंद सब पाए तो मतलब उसने
0: ओके
1: और गोठिया उसे
0: हाँ
1: और उसने लखा समय हो जी बिता जाता
0: बिता
1: बंदर मोड राखे सकले जी तो ही बिता मांग
0: अले एची संगे अमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
1: और मैं मुद्रामा जी
0: आमी दोनों करूं से जुआर।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चौगांव। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: गलर कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रामनाथ और साथियों का गाया हल्बी गीत।

गलर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामनाथ और साथियों का गाया हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पीलामन काजेगोट में आज प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

पीलामन का जय गोठ। ये कार्यक्रम सुनतु जम्बाए पीलामन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़। पीलामन ये कार्यक्रम ने आमी तुम के नगत नगत गोठ नगत नगत कहनी बड़े महापुरुष मंचो जीवना छो गोठ जे चोले आम के बाट मेरे से असन गोठ मन के रोजे दिना सांगू से। आजी असनी चे मैं धरुनीले से गोटोक महापुरुष माने ईश्वर चंद विद्यासागर चो गोट के। पीलामन ईश्वर चंद विद्यासागर गोटोक धर्मकारी माने गोटोक शिक्षक बल्लोने गुरुजी लेखक अनुवादक समाज सुधारक और परोपकारी बल्ले दूसर जो भले करू माने रला। हुन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भले रला। हुन मंचो जन्म 26 सितंबर सन 1820 ने हो रहे। ईश्वरचंद विद्यासागर चो बाबा चो नाव रहे ठाकुर दास बंदोपाध्याय और आया चो नाव रहे भगवती देवी। ईश्वरचंद के संस्कृत भाषा चो खूबे ज्ञान रहे। यही लागुन पढ़तो बेरा चे संस्कृत कॉलेज ने यमन के विद्यासागर चो उपाधि दिला। विद्यासागर चो उपाधि मृत्यु लागुन यमन चो नाव ईश्वरचंद विद्यासागर होन गेली। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बलते रला कि कोनी भले लोग नगद कपड़ा पिंदलो ने नगद घर ने रलो ने और नगद खादी खादलो ने चे बड़े नी होए। पहरले हो नगद काम करलो ने बड़े होए से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर लगे खूबे सादा हिसाब ने रतो वाट रहे। हुन मन लगे खूबे धीर बले रहे। हुन देश काजे बले खूबे काम करला। हुन आपलो समया ने स्त्री शिक्षा बल्ले पायले लेकी मंचो स्कूल पढ़ा तो हिसाब ने बले खूबे काम करला। हुदलदाय काचो मनुक मरलो पाछे मेहरार मंचो बिहा नी होते रहे। तेबे समाज चो लोग के ईश्वरचंद्र पूरे एवं समझातुर काम करला। होन एचो काजे ये गोट के सरकार लगे बले हमरा तो काम करला। एचोले मुश्किल तो खूबे होली मांतर पाछे विधवा विवाह काजे सरकार बाटले बले कानून बनून गेली। विद्यासागर के गरीब मन काजे और दलित मन काजे बले भगवान महामानतोर होते रहे। विद्यासागर चो मन ने पशु जनावर काजे खूबे माया दया रहे। हुन पशु जनावर के बले खूबे दया करोत और हुन मंच बले सेवा जतन करोत। गोटोक हार चो गोठ है। विद्यासागर हुदलदाय कोलकाता शहर लगे चो गोटोक कस्बा ने प्राध्यापक चो पद ने रला। हुनी बेरा गोटोक दिने

हुनके घर चो भीतरे हाग दिला। हुन भिजू रहे, तेबे हुनके आपलो नुआ बीती कपड़ा धोती देउन भाती विद्यासागर कपड़ा बदलू पल्ला। तेबे हुन सगा माने हुन मंचो ये मया बीती आदर व्यवहार के दखुन भाती गाग गगनी महा होन बले से। मैं तो ये ठान ने नुआ ही ले से, मैं ये था आप लोग गोटुक संगवारी संगे भेंट घाट काजे उ रहे। मानतर हुंचो घर लगे अमरतो के पता चल ली कि हुन तो कहाँ आए जाले ये कस्बाले बाहरे गेलो से। तेबे राती बेरा मैं कहाँ जाते यही काजे कएक झान लोग मन के गोटुक राती काजे ठान दिया बलून दखले। मानतर नुआ लोग आए बलून कोनी मोके विश्वास नी करला, तुम्हें पहिल मनु कहास जे मोके विश्वास करलास। तेबे हुंचो गोट के सुनुन विद्यासागर बल्ला, अरे भाई तुम्ही तुमचो सगा माने आहास, आमचो शास्त्र मन्ने बले लिखलो आसे कि अतिथि देवो भव, एही काजे मैं तो हुनी काम के करले से जे मौके करतो राय। असन बलून भाती ईश्वर चंद्र विद्यासागर होन सगा माने काजे खातो भात साग और सो तो काजे बले नगद व्यवस्था बनाउन दिला। फेर हुंचो काजे खोली ने आई गात्रा बले बारून दिला। पाछे के बड़े बिहाने होन सगा विदा धरुक पूरे इलो, तेबे हासुन भाती विद्यासागर बल्ला, कसन अतिथि देवता राती बेरा नंगत सोलास काय। हुन वंचो नंगत बोली बचन व्यवहार के दखुन भाती हुन सगा माने बल्लो, असली देवता तो तुम्ही आहास जे मोके राती बेरा मोके चीपा ने दखुन मोके सहा होलास जाले असन रला पीला मन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गुलाय जीवना भर का जे हुन सगा माने चो मन ने विद्यासागर चो गोठ गोटोक छापा महा बसुन गेली। असनी और नगद गोट के मैं सांगे से उदलदायचो गोठाए जेबे विद्यासागर कोलकाता ने पढ़ाते रला। हुन मंचो तनखा उतरी रहे जित्रो ने जीवना चलुन जाते रहे, तेबले बले हुन लोग मंचो सहायता करते रला। गोटोक दिने चो गोठाए विद्यासागर हाट बटले जाते रला, तेबे गोटोक जुआन लेखा पूरे इलो और भीक ने गोटोक आना मांगलो। देखा पीलामन उदलदाय आना चलते रहे, तेबे विद्यासागर दखे से कि ये मनुक तो चकड़दम जुआना से, तेबले बले भीख मांगे से। तेबे हुन मनुक के विद्यासागर बल्ला कि भाई तू चो चीपा काय आए हुनके सांग, तुई तो मोके गोटोक आना मांगसिस, मैं हुंचो ले आकर खूब आकर एक रुपया दें दे, एक रुपया दिलो ने तु ये हुन पैसा चो काय कर से। पीलामन जान तो बीती गोट ये आए कि उदल दाए छो एक रुपया बले खूबे होते रहे, उदल दाए सोरा आना ने एक रुपया होते रहे। तेबे विद्यासागर चो गोट के सुनुन हुन मनुक बल्लो, दादा तू एक रुपया दिलो ने मैं कहीं बले जीनिस घेने दे और पारा पारा बुलुन बुलुन हुनके बीके दे, असन करुन धंधा मूर करें दे, फायदा कमातो हिसाब बनाए दे। हुंचो गोट के सुनुन विद्यासागर हुनके एक रुपया दिला और आप लो बाटे जाते गेला। तेबे हुन मनुक नानी सुनी धंधा मुर कर लो, खूबे मसागत कर लो, धीरे धीरे बेबार बाढ़ ली और हुन सावकार हो उन गेलो। कितरो महीना पाछे आए जाले विद्यासागर हुनी बाटले जाते रला। तेबे नंगत कपड़ा पिंदलो हुन जुआन लेका ये उन पाई पड़लो, तेबे विद्यासागर हुनके नीची ताला पूछतो के हुन माने सांगलो कि तुम्हें मोके एक रुपया देव रहास और एबे मैं हुंचे लागुन बड़े व्यापारी बनुन गेले से। असनी गोटो का और नंगत सीखनी गोठाई पीलामन। गोटोखार विद्यासागर रेल चेगुन कोलकाता ले वर्धमान जाते रला। हुनी रेल ने गोटोक जुवान माने बले रहे जे खूबे नंगत कपड़ा पिंदू रहे। वर्धमान अमरतो के हुन माने आपलो सामान के उठा तो काजे कुली डगरा उधर लो, कुली निमिरतो के खिंडिक परेशान महा होलो। तेबे विद्यासागर हुनके दखुन बल्ला, आन मैं तुचो सामान के उठाए से। तेबे हुन माने हरी खोलो और बल्लो, आले तेबे मैं चो काजे नंगत भूति दें दे। हुंचो घर लगले समान के नेतो के हुन विद्यासागर के पैसा देव धरलो, मानतर विद्यासागर पैसा नहीं धरला। दूसर दिने काय होली कि वर्धमान ने विद्यासागर चो स्वागत काजे लोग मन जुहला, होता हुन जुआन लेका बोले इलो, ये तो के दख लो ये तो हुनी आए जे मचो समान के घर लगले अमराम देव रहे। हुनके अचरी झूली काय काजे की विद्यासागर खूबे सादा कपड़ा पिंदोत साद गिने रहोत, उदल दाए हुनके खूबे लाज लागली। जेबे बस का सभा सरली तेबे हुन विद्यासागर लगे गेलो, पाए पड़ुन भाती खूबे माफी मांगलो। तेबे विद्यासागर हुनके समझाला कि केवे भले आपन चो काम

के आपणेचे कर्तुराय जाले पिलामन असनरला ईश्वर चंद्र विद्यासागर आमके बोले असन महापुरुष मंचो जीवनाले नंगत गोठ मन के सीखतो राय और आपलो जीवना ने उतरातो राय आले तेबे आले सुनो असनी एगोटो गीत।

पिलामणि ये नंगत गीत के त सुनलु। जसन विद्यासागर धर्म कारी रला, सपाईचो भलाई करते रला, हुनमनचो कहने के आमी जानलु। असनी फेर नंगत कहनी, नंगत गोट के धरुन भाती, मैं तुमचो पूरे फेर अमरेंदे। आजी काजे आले मौके दिया विदा, जातो पूरे सुनतो जमाय पिलामन के, मचो बाटले खुबे खुबे मया आहुर लाड।

0: एक मजबूत घर पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पीलामन काजीकोट में अभी आप सुन रहे थे भरत कुमार गंगादित्य की प्रस्तुति, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
4: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
5: Discussions focused on enhancing cooperation.
6: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
5: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
3: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
7: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड

0: बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: कार्यक्रम नजर में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। प्रियंका कश्यप से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ।
3: मन खुबे खुबे सेवा जोहार जसन की आमी कई कसन बोले ने कौन कौन बेरा आम जो नंजर जो कार्यक्रम हुए से बोले ने असन मतलब विशिष्ट जो मतलब माने रहे सो चाहे लेखा हो लेखी हो सियान हो नाले डोकरा हो डोकरी हो असन मन संगे आमी हुन मन चो जो काम है गोट बात करुन बाती अपन मन के सुनाओ से कसन बोले अपन मन जानसास कि जब तक कहीं बोले काम के आमी नंगत बोले ने कहा कि मेहनत मसागत कर लो ना लो आम किन्नी मेरे तो असने ची आज मैं बोले ने आमचो बस्तर चो ही नोनी प्रियंका का नाम
4: कश्यप
3: प्रियंका कश्यप एचो जोन संघ लोक सेवा आयोग ने बोले ने कहा कि चयन होली से भू वैज्ञानिक ने तो प्रियंका कश्यप सबले पहले तुम्हें आकाशवाणी परिवार बांट ले खूबे खूबे धन्यवाद बोलने से और सेवा जवाब बोलने से तो जसन की तुझे ये सफलता चो पहल मैं तुम चो घर चो जोन पूरा पारिवारिक जोन जीवना है बोले ने तुम चो तुझो आया बुआ चो तुझो घर चो एक मैं पूछूक चाहे से बोले जीवना खाओना काय चीज चो जोन चले से काय चीज ने
4: शुरुआत ले सांगो
3: हाँ
4: शुरुआत ले मचो दादी उनचो बेटा मच पापा उन्हीं उनके जगदलपुर में रहुन पढ़ा ली गांव बाट तो नहीं रोक सकली क्योंकि दादा चो का दादा खत्म हो रहे फिर मचो पापा अपलो पापा के दखुक नहीं सकलो
3: अच्छा
4: तो, हाँ पेट में ही रहे चार महीना छह महीना चो और उनचो पापा खत्म होलो मचो दादा तो उनचो बाद दादी सहारे गेली और फिर सेठ गर्मन ने कपड़ा दुकान में कहाँ कहाँ काम करूँ बर्तन वर्तन माजुन बाती पापा के पढ़ा ली अब उन शहर गेली तभी पापा के पढ़ा सकली
3: अच्छा।
4: अगर गांव में रहती तो उन बल्ले पापा के पीला बिराले कामे पठाती ती बल कामे जा मैं बल जाए दे फिर उनके बाद पापा सारे रहून सब लोग के दकुन दकुन उन बल पढ़ाई कर लो और उनके बाद कॉलेज बल करुक लाए कोशिश कर लो आप लोग मांतर पूरा तो नहीं हो सकली फिर 12वीं तक पढ़ाई कर लो उनचो कारण ही उनचो फिर सरकारी नौकरी में आगे चलून 2010 या 2011 में उनचो नौकरी लगली काय काज की उन 12वीं तक पढ़ू रहो उन्हीं काजे उतलो उदल दाए तो मिलते रहे नौकरी मांतर एबे असन होली की सब पाई पीला मन पढ़ सोत और फिर नौकरी चो कमी हो ऐसे सबके नौकरी तो मेरे को नहीं सके तो उसन होली और दादी और पापा उसन सहरे रहते रहत फिर सहरे रहते रहते फिर माँ संग बिया होली पाचे हमी इलू और फिर माँ बाप मन खिंडी खिंडी पड़ू रला गुने हम के सांगते गेला और हम शहर चो किनारे रहूं तो फिर सबके दकुन दकुन हम बल सीखते गेलू कि कसन पढ़तो राय कसन बाहर रहतो राय और हम के बले कई करतो राय पैसा कमातो राय बिना पैसा तो काई काम नहीं होए तो उसन समझुन माँ बाप हमके पढ़ाते गेला
3: अच्छा।
4: और फिर हम बले उन मन के दकुन दकुन सीखते गेलू और हमके पीला बेराले सपना दिखाते रहोत
3: अच्छा।
4: कि तुम आसन आसन करा दक्षा ये लोग मन आसन कर सोत शहर में जोन जोन रहोत जोन मन अच्छा काम करते रहोत तो उसन लोग मन चो प्रेरणा हम के देते रहोत
3: अच्छा।
4: तो हम उन सब के पीला बेराले सीखते ही लूसे
3: आरु जसन की घर चो बोले ना कहाँ तुझे पढ़ाई लिखे पर कहाँ होली
4: मैं बिरिंगपाल गांव चो आए तो बिरिंगपाल पंडरी पानी में हम चो हायर सेकेंडरी स्कूल आए और फिर मिडिल स्कूल बलू तैया से
3: अच्छा।
4: तो उता उता हम पढ़ाई कर लू से सरकारी स्कूल में
3: अच्छा
4: हाँ सरकारी स्कूल में ही रहूं मैं पूरा पढ़ाई कर ले से और हिंदी मीडियम छुआ इंग्लिश तो नहीं जानते रहे पिला बेरा खिंडिक पढ़ू रहे
3: अच्छा।
4: माँ बाप पढ़ाला तो उनके बाद फिर बारहवीं पढ़ ले फिर उनके बाद अमची जगदलपुर में ही कॉलेज आसे धर्मपुरा में तो उता में एडमिशन धर ले और उता पढ़ाई कर ले तो तीन साल उता पढ़ ले और फिर जियोलॉजी बल मोचो सब्जेक्ट रहे भूविज्ञान जहाँ मोचो आज चयन होली से उन सब्जेक्ट के बल मैं पांच साल पढ़ ले तीन साल तो ग्रेजुएशन बोलवात स्नातक बोलवात और फिर दो साल और रहे से आगे और पढ़ते बीती मास्टर बोलवात उनके तो उन स्नातकोत्तर रहे से तो उन पांचों साल में मैं जियोलॉजी के ही पढ़ ले पूरा पूरा
3: अच्छा
4: उतना ज्यादा ध्यान दे उन पढ़ ले तो उनके बाद काय होली कि मौके तीन चार विकल्प रहे मुझे लगे कि पहला तो मैं प्रोफेसर बन सकते रहे क्योंकि बस्तर यूनिवर्सिटी बन ली से तो उतना छह सात पोस्ट खाली आसे एसटी सीट में मैं बोले मतलब आदिवासी जिले समय बले तो फिर मचो का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहे रास्ता ही रास्ता रहे तो फिर मैं सोच ले कि मैं बल एक प्रोफेसर बने दे हम जो समाज चो कोनी बच्चा जाओक नहीं सकोत मतलब दूर दराज में रह सोत तो शिक्षा चो बले सुविधा नहीं आए तो मैं सोच ले कि मैं शहर लग रहे से मौके सब चीज मेरे से तो मैं करें दे उन चीज के और मोच माँ बाप बल मौके काई बना तो सोच विचार लगाओ रहो और पढ़ा तु जितरो पढ़ से मैं उतरो पढ़ाए दे आसन बोलत मौके तो मैं बले बोले कि मोच लगा से मोच लग पढ़ा तो माँ बाप आस होत तो मौके और काय कमी मैं पढ़े दे मचो काम तो पढ़ाई ची करता रहा है तो मैं सामाजिक सेवा बल करते रहे आदिवासी व छात्र संगठन में बल रहे तो उताले और मके ये मिरते रहे समस्या के मैं दखू रहे कि लोग तो आसत मानतर उन मन पढ़ाई नहीं कर सकोत उन मन जो आर्थिक स्थिति खराब आसे ए बाट शिक्षा शिक्षक मन चो नौकरी निकरे से मानतर कोनी जाओक नहीं सकोत मीरे से तो बस्तर काज निकरे से वैकेंसी मानतर पिला मन करुक नहीं सकोत क्योंकि पढ़ाई नहीं करला से बीएड नहीं करोत टीईटी नहीं निकरात तो कहाँ ले हो दे तो मैं उन्हीं सोच ले कि मोच लग सब कुछ मीरे से तो मैं करें दे जरूर फिर मैं मास्टर डिग्री खत्म होली जसन उनके बाद 2023 में मोचो कॉलेज पढ़ाई खत्म होली फिर 2024 में मैं परीक्षा दी ले यूपीएससी चो
3: अच्छा।
4: राष्ट्रीय मतलब भारत लेवल चो परीक्षा है
3: अच्छा।
4: हाँ, हर राज्य में दूसरा दूसरा राज्य में काम कर तो मौका मिले से था
3: अच्छा
4: हाँ, तो फिर मैं बोले कि मैं पेपर दे उन दखें दे जो बल होए दे होए दे तो मैं पेपर दी ले
3: अच्छा
4: अरे ता पेपर नहीं हो इंच बाहर बाहर हो से तो घर लोग मन सब सपोर्ट करला पठाला मौके जा जहाँ पढ़ से जहाँ पेपर देता रहा जा तो मैं अपने दोस्त मन संगे ले पेपर दिले और फिर उन पेपर दिले तो दूसरा पहला पेपर छुपाच रिजल्ट ली एक महीना बाद तब फिर मैं अपनो नाम दख ले तो मैं बहुत खुश हो ले कि ये ता नाम ही ली अब मैं दूसरा तीसरा पेपर बल देख सके दे
3: अच्छा
4: तो फिर दूसरा स्टेज जो पेपर रहे से उन दूसरा स्टेज जो पेपर तीन महीना बाद होली उनके बल तगड़ा मेहनत कर ले रात के 12 बजे 4 बजे 3 बजे जब तक मुके पढ़ूक भाई तब तक मैं पढ़ ले
3: अच्छा
4: और बियाने फिर 9 बजे उठ तो होते रहे मचो दिन में पढ़ो कि रात में पढ़ो जब मन चाहे तब पढ़ तो रहा है
3: अच्छा।
4: कौन कौन बोलवात नहीं किए रात दिन में सुबह पढ़ लेने ज्यादा याद रहे से और रात पढ़ लेने याद नहीं रहे तो उन आप लोग ऊपर रहे से हर इंसान के ऊपर कि कब तुमके याद हो से कब आप लोग हिसाब ले
3: पड़ोस का हाँ।,
4: हाँ तो फिर उसन तैयारी चल ली मचो और तीन महीना में बिया मचो आजू बाजू बिया बर्थडे काई बल होए मैं नहीं जाऊं उता सुनते तो रहे मानतर खुद के मन के मारून बाती पढ़ाई कर ले
3: अच्छा
4: और उनके बाद फिर जो परीक्षा दी ले तीन महीना बाद भोपाल जाऊ रहे उनचो काजे क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुए पेपर तो भोपाल जाऊ पेपर दी ले दो दिन चो पेपर रहे
3: अच्छा
4: बियान चो और फिर दोपहर चो फिर दूसरा दिन चो बियान चो कंटिन्यू पेपर होली
3: अच्छा
4: हाँ तो वो सब जो तैयारी करते रहे मके तीन चार महीना में
3: अच्छा।
4: तो बहुत तगड़ा मेहनत लागे से उनच काज बले
3: हाँ तो ये जोन पढ़तो काजे जसन की पढ़ाई चो जोन सामग्री मटेरियल बोले बे ये जोन आगे कोर्स ने तो पांच साल पढ़ ली सुता ली छी इले ऐसे की बाहर ली बले
4: अभी काय होय से की वो सब मटेरियल हमके मोबाइल में मिले से नेट में भारत चो काय की दुनिया चो कापी पुस्तक जोन बलाय पढ़तो सामग्री हम सब उता नेट के माध्यम से रख सकूं से
3: अच्छा।
4: तो मैं ऐसे नहीं कर ले जितलो बुक मौके कॉलेज जिले मिल ली उतलो मचो टीचर मन मौके दिला और उनके बाद जो नी रहे उसन बीती मन के नेट ले नेट में पूरा पुस्तक रहे से उन सब के फोटो कॉपी निकरा ले मैं और फिर उनके पढ़ ले आसन कर ले
3: अच्छा तो बले ने दक जो भू वैज्ञानिक जो इंटरव्यू होली होती कहाँ होली
4: दिल्ली में ही होए से क्योंकि उन संघ लोक सेवा आयोग आए यूपीएससी चो तो यूपीएससी चो जितलो परीक्षा होए से नहीं उन सब चो हेडक्वार्टर वो नहीं मतलब दिल्ली चाहे समझा
3: अच्छा
4: उतई छोए से तो उतई होली मोचो बल इंटरव्यू जहाँ कलेक्टर वगैरह में सब आई देश होते नहीं इंटरव्यू उतई बल हम चो बल उतई होली
3: अच्छा तो खिंडिक उतई इंटरव्यू बेरा चुकी माहौल के सांग कसन होली काय काय पूछला कहीं डर असन भय कहीं तो कि नहीं लागले
4: इंटरव्यू का जे तो उन मन काय करवात मेनली कि मुख्य रूप से कि हम जो हमके दखवात कि हम कितरो आत्मविश्वास आसे हम जो ऊपर में हम कसन जाऊं से उन मन जो पूरे डर उन काय नीट जाऊं कि घबराऊं से बोलुक नहीं सकूं से मुले काय नहीं निखरे
3: अच्छा।
4: आसन चीज के दख सोत
3: अच्छा।
4: और फिर हम तो पहला दूसरा पेपर पेपर तो पूरा दिलू लिख लू पढ़ लू उन सब चो परीक्षा होली कि हमके कितरो ज्ञान आसे मानतर उता गेले ने उन मन ये दख सोत कि उन काम के हम कर सकूं दे कि नहीं सकूं दे
3: अच्छा।
4: तो उन्हीं का जो मन हाक दे सोत पूरे में और इंटरव्यू धर सोत तो उता माहौल रहे से सब लोग मने रहे सोत पूरे में और फिर सबके दकुन दकुन असन हमके लागते रहे से कि आप कौन कसन सांगे दे मन तर उसन नहीं सोच तो रहा हमके और मैं बोलू सन नहीं सोच ले मैं सोच ले कि मैं बस्तर चो बेटी आए बस्तर ले के लिए आए और मैं बस्तर चो नाम के रोशन करूं नहीं दे तो उसन सोचुन बाती मैं गेले तो मके खिंडिक एकदम खिंडिक ची डर लागली मके शुरू ले मचो टीचर मन गुरु मन उन मन सांगते गेला कि तू करुक सके सर तू ता जाऊन बाती नहीं डर और उन्हीं का जो उन मन बार बार मके चार से पांच बार तैयारी करवाला प्रैक्टिस करवाला बार बार बार बार
3: अच्छा।
4: तो उस उन सब कारण ले मचो उता चो डर मिटली और उता गेलू तो मके पांच जन बसुन रसत असन रूम रहे से गोटक उता पठावात
3: अच्छा।
4: हमके काई चीज का नहीं डर तो रहे सब जन हमके सपोर्ट करवात उता गेलेन क्योंकि इतलो बड़े पेपर रहे से और हम पहला दूसरा स्टेज पार करून जाऊन से दिल्ली तो फिर उता सब लोग असन काई नहीं करत कि हमके डर लागो उन मन सब सपोर्ट करवात और आइए मैडम आइए सर बोलून बोलून गोठियावात चाय पीवा जाले चाय बल रहे से चाय पानी सब दे सोत मतलब हमके अच्छा लागो असन महसूस करावात
3: मतलब एक माहौल बनाए
4: माहौल बनावात फिर उता जाऊन बाती मके कुछ नहीं लागली असन जसन सांगते रहत कौन कौन जन जन जो होली तो कौन कौन लोग असन रह सत की खूब डर लागू आये उनके मके नहीं लागते रहे क्योंकि बचपन ले मैं सना से और हमें समाज सेवा में गेले से हर चीज में बोल ले से तो सबसे मचो बोल तो चीज मन और डर सब मिटू रहे तो मैं बोले से की लोग मंच बीच में बल जा तो रहा है हर इंसान के उता बल बोल तो रहा है तो उसन में सब ये सब सीखू खोए से और डर मिटे से
3: तो प्रियंका ये गोटक तो अच्छा गोट के सांगले जसन की समाज सेवा ने रहीस बल ने असन तुचो ये जो पढ़ाई चो बीच ने बोलू मजे ने असन काय काय जगह ने काय काय ठान मन ने बलन कसन कसन बलन असन ताने तु भाग दर लिस जे काय की ये तुचो नौकरी मेर तो काजे कहाँ मिली बोलू
4: उन्हीं जसन मैं लोग मंच बीच में रहे हैं तो पहला तो वो कारण बन ली कारण तो पहले ही रहे कि माँ बाप चाहते रहो कि असन बड़ा काम कर से दूसरा मैं उन सब समस्या के अपलो आंख ले दख ले जहाँ जहाँ हम पीला मन का जे शिक्षा के क्षेत्र में कई कमी हो इसे उता बोलू गेलू कि उन जो समस्या जो समाधान करू गेलू उता उता दख लू फिर हम चो समाज चो कई बड़े लोग बल मिल ला हमके उता और फिर कई सारा फैक्टर आसे कारक आसे जो मके खूब मदद कर ली
3: अच्छा।
4: और फिर मैं बोलूक सीख ले लोग मंच पूरे कसन रतो रहा है कसन बात करते रहे सब सीख ले समस्या दख ले उस कारण ने खुद और ज्यादा मके आत्मविश्वासी ली कि मैं करें दे मैं नहीं करें तो फिर कौन करे दे
3: कौन करे दे? हाँ। अच्छा भले ना आगे तू चुपड़ तो बेरा ले असन कहीं बड़े अधिकारी बने दे कहीं अच्छा बने दे असन मन ने रली होती
4: रहे
3: अच्छा बल्ले ने कहा कि होनी मतलब सोचन बाती तुझे जो भविष्य के समार्थ काज पढ़ाई लिखाई कर लेस बल्ले है कि नहीं तो प्रियंका ये सांग जसन कि आजकल कई कसन नौजवान जो लेका ले कि कई पढ़ला से डबल टिब्बे एम ए वगैरह करुन बाती बोल का है कि उनमन सफल नहीं होत तो वेचो ये चो कारण थे कि कुछ मन नहीं ऐसे कसन
4: ऐसे
3: सांगों तक
4: मैं बोले दे कि हम जो लगे नहीं कई फील्ड आसे आसान नो आए कि खाली हम के आर्ट्स धरून बाती आईएएस कलेक्टर ही बन तो रहा है सब चीज बन तो रहा है अभी काय हो से कि हर बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई कर सोत अलग अलग विषय धरून मानतर काय करुआत कि लास्ट में काय नहीं मीरे बोलुआत और आप लोग जोन फील्ड के धरून पढ़ाई कर ला जोन विषय के धरून उता टाइम नहीं देत और बोल सोत हम जो कॉलेज खत्म होली मानतर हमके नौकरी नहीं मिले मानतर कहाँ ले मिले दे तुरंत कॉलेज कर लेने मिरती तो सपाई की मिरती तो उन चुकाय हो से कि उन सब्जेक्ट के 2 साल 4 साल या जब तक हम अच्छा ले नहीं समझो, जब तक ट्रेन नहीं हो उन सब्जेक्ट में, उतरो समय देतर जरूरी आए, तब जाके उस फील्ड में हम फिर हमके नौकरी मिले दे या काइबल मिले दे हम काम कर सकूं दे। तो पीला मन उसने करवात और अधिकतर पीला मन हम जो सब्जेक्ट के चेंज करवात फिर सब के सब हम कलेक्टर जो तैयारी करूं दे CGPSC दे उन दे। तो ये सब में सब जाए सत कोनी गणित पढ़तो बीता है कि विज्ञान पढ़तो आए कि कला पढ़तो, सब लोग CGPSC कलेक्टर IAS में कोचिंग में ऐसे होत मानतर अपलो सब्जेक्ट के जो जो 3 साल 5 साल पढ़ला उनके समय नहीं दे होत छाड़ून बाती दूसरा रास्ता दर्श होत।
3: अच्छा।
4: तो असन आधा आधा बीच में सब्जेक्ट मन बदल लेने कोनी कहाँ एक चीज में मास्टर हो दे।
0: नंजर में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका कश्यप से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, रात्रि के 9:30 हुए हैं। खेल पत्रिका में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। मैराथन धाविका कुसुम शार्दुल से भेंट कर रहे हैं भरत कुमार गंगादित्य।

0: साप्ताहिक खेल पत्रिका। खेल पत्रिका सुनतो जम्माए दादा दीदी सियान सजन मन के खूबे खूबे जुहार। दादा दीदी मन जैसन कि तुम्ही जानास कि आमी बेरा पस्ताए था खेल पत्रिका कार्यक्रम ने कई झन खिलाड़ी मंचो खेल चो जानकार मंचो भेड़ घाट के आमी तुमके सुनाते रहूं से असनी आम चो लगे। आजी अमरली से कुसुम शार्दुल ये बस्तर हेरिटेज मैराथन जे हो रहे हूँ तब पहली स्थानीय मन के मेरू रहे तो अली अमन संग गोड़ बात करूँ सबले आगे। कुसुम तुई तुचो परिचय तुचो जन्म बार कहाँ होली तुचो पढ़ाई लिखाई कहाँ होली और ये भी कितरो पढ़ाई कर ली सी ये जमाई गोट के आम चो सुन तो दादा दीदी मन के साथ
1: मच दादा दादी मन के सबके जुआर। मच नाम कुसुम सार्दुला है मैं मदोता बस्तर चौहान का है तो वहीं से जुन पढ़ाई है मच कंप्लीट होली से पहली ले दरो बारहवीं तक। हाँ मदोता ले
0: तो ये पढ़ाई कहाँ तक होली से
1: पढ़ाई बारहवीं तक होली से मचो।
0: हाँ जुन चो ये पढ़ पढ़ाई नहीं होली
1: नहीं होली से थोड़े दिक्कत होते रहे होने कारण से नहीं कर ले का है।
0: तो जसन पढ़ाई तो बारहवीं तक होली और ये खेलकूद हिसाब ने काय काय ने अच्छा लागे से खेल तो बीते और काय ने रुचि आसे
1: खेलकूद का मके दौड़ तो ही अच्छा लगवा का है। चल पहले कबड्डी बल अच्छा लगते रहे लेकिन एक बार मच मुंह के पाव रहे उसमें दाद गड़ रहे होने का मके डर लगवा है कबड्डी खेल तो काजे और हम जो आम चो दौड़ तो बीती है उन खूब ही अच्छा लगवा है मके होने का जो उसी में मच रुचि आसे उसी में करे से अभी
0: तो मैराथन बलुआत बल्लो ने होनी दौड़ तो परा तो बीती ने।
1: हाँ परा तो बीती का है
0: तो मैराथन ने ये तो हिसाब कसन होली और कसन करुण भाती मन नहीं ले कि मैं यही खेल के मैं चुनाव करूँ ये खेल नहीं हुआ है बलून।
1: हाँ सबसे पहले मैं कोनी सांगला कि हाँ भर्ती वर्ती हुआ है काहे क्योंकि जसन बारी हम जो गांव ले आए हम नहीं जानते रू हम काहे कि कहाँ पढ़ रहा है कसन करत रहा है कि थोड़ी बहुत हम जो सर मन जो पढ़ाऊ रुआत का है उन मन सांग रुआत का है हाँ आगे पढ़ तो रहा है वहाँ से आगे जाऊन भाती हमके नौकरी मिलवा ये मिलवा है जो उनकी अच्छा तो घर जो परिस्थिति है उन बल ठीक हुआ है बोले हम चीज स्कूल में सांग तो रहा है सर मंचो हुनी मंचो गाइडेंस मतलब जो सांगते रहो सर मन हुनी मन के सुनन सुन आगे का तो जसन बारी निकलन कुछ ना कुछ तैयारी करते रहे असन लागते रहे का उधर ने इंटरेस्ट लाग लिया अच्छा लाग ली नहीं मग जाते रहे नौकरी सरकारी नौकरी करते रहे का बोले बात मैं वहीं से तैयारी शुरू कर ले बस्तर फाइटर बीती अभी जो बीती हुए 2021-22 में शायद तो उसी में तैयारी कर ले तो उसमें मके अच्छा लाग ली का है तो
0: तैयारी कर ली सुता
1: वहां जानू पुलिस भर्ती ने लंबी कूद ऊंची कूद गोला फेंक उतरन 100 मीटर 3 किलोमीटर अहन मतलब करावात का है। हाँ तो वहीं पे मचो का है जाऊ रहे तो वहां नहीं होली मचो तो बस्तर फाइटर बीती में
0: मतलब कौन था जाऊ रहे
1: यहाँ पे परपा में हाँ वहाँ हो रहे फिजिकल जो दौड़ धूप आए का है तो नहीं होली का है उदलदाय में खूबे

0: इसमें मतलब पुलिस भर्ती में जात रहे नल कुछ बल काद करत रहे तब मैं उदल डाले ही काद कर ले तब अच्छा लग भाई दौड़ तो काज और मज गोटक दीदी रहे है उन सांगली कि नहीं दौड़ तो रहा का जहन अभी मोटी ऐसी तू निक निकलिस फिजिकल तो तू जन का है तो उनके तैयारी करते रह का तब कहीं जा से तो वहां पैसा बल मिलवाए असन कर उन बल्ली मा की मज दीदी तब मैं जानू हाँ ठीक है बल्ले का है वही फिर कर ले मैं वहां से बस्तर फाइटर जो भी बाद में नहीं होली तो वहीं पे आम चो यहाँ जगदलपुर में इंदिरा स्टेडियम बस वहां पे आम चो मैडम रहे एसटीपी मैडम उन जानू आम के का है तो बेसिक ट्रेनिंग दिली का है उदलक थोड़े मोटी जसन रहे तो वहां से जानू मके दे तो फिर धीरे धीरे मैं सीख लेगा
1: ट्रेनिंग बोलो नहीं परा तो बीती
0: हाँ परा तो बीती क्योंकि बहुत मोटी रहे नहीं खूबे मोटी रहे मैं दिक्कत होते रहे परात का होनी मैडम सिखा ली एक्सरसाइज काय करत रहा है कसन करत रहा है कितरो परात रहा है हाँ धीरे धीरे मत शरीर फिट होली का है बरा तो लायक जो उदल डाली अच्छा लाग ली और दीदी बल सांग रहे नहीं कहीं मतलब बाहर बल जात रहा है अच्छा आएगा फिर वहां से मक इंटरेस्ट लाग ली का है नहीं मक परात रह गए परात रह जोन बल भर्ती है दे तो उसमें दें दे असन थिंकिंग सोच विचार हाँ
1: तो फिर जसन मन तो ली तो ये मैराथन ने भाग धर तो कहाँ कहाँ होली से फिर कहाँ उतर फिर कहाँ कहाँ भाग धर तो होली
0: उतरन यहाँ पे हम जो का है तो नारायणपुर होली का है
1: काय होली होता है
0: वहाँ पे मैराथन होली का है हाँ उसमें जाऊ रहे का है
1: काय होली कितने किलोमीटर चढ़े
0: वहाँ 21 किलोमीटर चढ़े का है वहाँ दौड़ ले उनसे पहले का है तो इंजरी रहे तो छाड़ रहे का है मैं हाँ मतलब जो कमर दुखा है मतलब जो अभी जो सीजी पुलिस ली उन जो का तैयारी करते रहे तो मैं जो उसमें लॉन्ग जंप एक दिन करुक जा रहे उसमें मुझे करण लचक ली का है उन जो कारण
1: हाँ
0: करू रहे
1: कितने दिन तक कसन
0: करीबन 8-9 महीना जनवरी में दिलान भाती छाड़ रहे का है हाँ उतरन बाद में तैयारी कर ले बस 4-5 महीना तैयारी कर ले का है उतरन नहीं 2 या 3 महीना बाद में हम जो भी जनवरी में होली का लास्ट महीना में नारायणपुर में तो उसमें गेले का है वहां पे पोजीशन लगे जो मचे वहां यहाँ तो मैं इंदिरा स्टेडियम करते रहे उतरन इंजरी होली में छाड़ ले वहां करते रहे का है हम जो धर्मपुरा स्टेडियम से हाँ परिसर बीती स्टेडियम से तो वहां करते रहे वहां फिर एक जन भैया मिल लो मके हूं बोले पुलिस विभाग जो है मनोज करटम करुण भाती हाँ उन भैया बोल मैराथन से तैयारी करवाए का हाँ बाहर बाहर खेलुक जावा है तो हुन जानू मतलब नहीं कुसुम तू एक दिन हुन जसन परा ले का है हाँ करीबन 45 मिनट जसन परा ले नहीं कुसुम तू पराग सख से का है तू पराव का है असन करुण भाती बल लो का है तो हुन जीसन उन्हीं प्रैक्टिस कराते रहे तो मैं हुन जीसन करते रहे उन खुद कराते रहे हाँ नहीं कुसुम भाग तो रहे का है उन खुद मोटिवेट कराए मके मतलब अंदर से कि नहीं कुसुम पराव का है तू पराग सकीस अंदर से इतरो मतलब कायद करे का है और उन्हीं तैयारी करा लो फिर वहां फिर नारायणपुर में होली गेलू का है फिर वहां पे जो पोजिशन लगली थर्ड पोजिशन लगली
1: नारायणपुर ने
0: हाँ थर्ड पोजिशन तीसरा पोजिशन ली तो उसमें मंग थोड़े अंदर से दुख लाग ली क्योंकि थोड़े उन चल ज्यादा कर रहे तैयारी और भैया बोल बोलते रहे जोन मच करा तो बीता कोच भैया है नहीं कुसुम तू चो दे फर्स्ट है दे का है बोलून लेकिन मतलब लड़की मन से थोड़ी दिक्कत रुआ है का है पेट दर्द कभी का है महीना में जो ए बाय जो हूं दर्द तो उनसे चक्कर में मच नहीं हिली का है अंदर से जब वहां पहुंच ली मग लाग ली है नहीं मतलब पहले शिकायत लागत रहे भैया के सांगले नहीं भैया थोड़ी दिक्कत हो मैं कुछ दिन के असन करूं भाती तो भैया मैं कुछ नहीं बोलो का मैं जब थर्ड प्लेस लग ली चलो कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा मतलब कायत के लिए जब 2 महीना मित्र रिजल्ट आनुक सकिस तो अच्छा है देखा 2-3 महीना चो बोलो का तो वहां लग ली लेकिन मगे अंदर से खुश नहीं लागत रहे क्योंकि मैं उन जो हिसाब ने मैं तैयारी करते रहे का सुबह शाम जात रहा है सुबह 2-3 घंटा फिर शाम के 2-3 घंटा हाँ मेहनत सुबह शाम करते रहे तो अब उन रिजल्ट नहीं लन तो दुख हो देखा है
1: दुख दे, हाँ
0: फिर 11-12 बजे तक मैं नींद नहीं ली हूं दिन कि नहीं मैं खुद से गलती है पेट दर्द वर्द कारण ने असन होली का बोलते हाँ फिर अच्छा लाग ली लेकिन वहां पे मतलब उतर तैयारी कर ली उतर लोग तो बीच में भाग ले वहां पे भी हाँ बहुत सारे रोत का है हाँ फिर उतरन फिर बाद में फिर इलू फिर कुछ दिन बाद में फिर यहाँ होली का है का है तो अपना बस्तर हेरिटेज मैराथन में करीबन 2-3 सप्ताह बाद फिर पता चली नहीं हम जो बस्तर संभाग ने बोलू हुआ है का है हम जो संभाग लोक च बोलू हुआ है और प्लस ओपन

0: लक्ष्य बोल हुआ है तो मज भैया बोलो नहीं कुसुम हुन बोल ऐसे अभी तैयारी कर मैं कराए तू के तो अच्छा रिजल्ट है दिखाए 42 किलोमीटर आए 42 किलोमीटर बोलो ने एक बार सोच तो भी थी बात आए का है 42 किलोमीटर बोलो ने जो 42.1595 किलोमीटर आए उनके तय कर तो रहे का है मतलब बहुत दूर सी बात आए का है अब मैं पहले तो पराख नहीं सकते रहे का है बहुत दिक्कत होते रहे लेकिन तैयारी करते रहे छाड़ बोल रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग यहाँ वहाँ करते फिर दर्द कारण छाड़ रहे तो उन सब कुछ याद कर रहा है यार कोनी सुना उरत रहा है कि नहीं कुछ तो करू कसन नहीं सकी सुनो सुन उन सब कुछ के मैं जाए और प्रैक्टिस में जब सुरता करे तो नहीं मग कर तो राय का है बोले भाती मैं करे का है फिर भैया बोले फुल का है तो सपोर्ट करे कि नहीं कुसुम तो कात कर तो रहा है यहाँ बस्तर का जेत रहा है सुन करुण भाती फिर भैया सुबह शाम तैयारी कराए कभी धूप ने बल हाक दे का मके कुसुम आओ तु खाना वाना खा लीस कि नहीं हाँ खा ले ठीक है तू जूता पिन्हू नाओ तो हुन सब कुछ सुरता कर लन खूब कायद लगवाए का नहीं कोनी कोच आए जो गुरु रु आए सिखा तो भी हाँ कोई अच्छा है काजी सोचवा है बोलून भाती लेकिन कभी कभी गागुक बल भात रहा है कि नहीं इतरो धूप ने काहे का जुसन कायद कराए मैं कभी कभी गुस्सा होता रहा है अपने आप के कि भैया मैं काहे का जुसन कराए से लेकिन जब रिजल्ट इली तो बहुत अच्छा ही ली गए हाँ फिर काहे तो
1: गोटोक दिन ने कितरो टाइम तक तुम चो प्रैक्टिस होते रहे
0: सुबह ठंड टाइम होलो ने 4:30-4 बजे उठन तैयार होते रह का है 5 बजे तक पहुंचते रह का है 1.5-2 घंटा कंटिन्यू भगाए का है भैया इंडोरेंस चाहिए मतलब जो सांस ले तो बीती आए का है हाँ उन चाहिए तो कंटिन्यू तो भागुक पड़े कुसुम उतरो दुर्भाग तो रहे तो और एक जन भैया बोल रहे हाँ तू 3 घंटा तक भाग से तब तू 42 किलोमीटर भागुक सक से हाँ तो मैं बोले 3 घंटा भाग तो रहे इतरो दूर बाप रे मैं तो उतरो भागु बोल नहीं सके लेकिन जब 21 किलोमीटर भाग रहे हैं तो लाग ली कि नहीं भागु को है दे अभी मतलब उतरो भाग ले से तो और थोड़ी तैयारी करें दे तो अच्छा हो दे बोलून भाती हाँ फिर उतरो ने फिर कंटिन्यूस नहीं कर ले का भैया करा लो वर्कआउट करा लंबा लंबा एक दिन असनी शनिवार जो दिन रहे का उन दिन अच्छा लंबा भी थी वर्कआउट रहे 30 किलोमीटर जो रहे हाँ मैं जानू 25 किलोमीटर कर ले का उधर उधर ग्राउंड ने बोले गोल गोल घूम तो जो 400 मीटर आए वहां पे गोल गोल लगा तो दिमाग बोल कायत हुआ है का है हाँ खुद चो घेन तो रहा और परा तो बोले बड़ा तकलीफ कायत हुआ है दिक्कत 25 किलोमीटर भाग ले फिर मैं वहीं पे ही मतलब थोड़ी दिक्कत पेट दर्द और पीठ दर्द स्टार्ट होली वहीं पे हाँ तो भैया बोले नहीं भैया मैं पराग नहीं सके का है थोड़ी दिक्कत होली से अब को की सांगू नहीं सके कि लड़की मंच कुछ ना कुछ दर्द आए ये वाय का है तो वहीं ली मैं सांग ले अब बहुत सारे भैया मन रोत का है वहीं साथ में कर तो लोग मन नहीं भैया अब उतरो लोग से पूरे सांग बोल नहीं सके फिर जूता उता निकाल ले कपड़ा पहन ले नहीं भैया नहीं सके काय पर आग लाए बोलिन भाती भैया मैं खींच लो का है कुसुम तू 1 रुपया बोल नहीं मिले वहां पे जब मेरा थनकर से नहीं अभी 42 किलोमीटर पर आग बोले अभी बीच में तू वर्कआउट छाड़ सी तो तू पर आख नहीं सकते अभी तैयारी नहीं करी जाले बोलू भाती इधर जोर से खींच लो का अंदर से लाग ली फिर एकदम से गांगेदा होले का एकदम आंख में आंसू होले और जानू फिर से जूता पहन ले और फिर पर आले 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर कंप्लीट कर ले तब भैया देख लो आर गेलो ठीक है अब पानी अच्छा से पीऊ और रेस्ट कर का यार शाम के नी आओ का बोले ए बात जलाओ नाल तो नी आओ का बोलू भाती हाँ गागते गागते दिन चो एकदम से गागेंदा हो ले काय मैं और पर आ ले लेकिन कंप्लीट कर तो बीती भले धीरे धीरे करूँ लेकिन कंप्लीट कर लो बीती अंदर से अच्छा लग गया काय हाँ और जानू छाड़ लो बीती अंदर से गवा नहीं देवाए नहीं आज मुझे वर्कआउट नहीं होली काय बोलून भाती
1: तो ये मैराथन बस्तर हेरिटेज मैराथन रहे हुन थाने पहला स्थान मिल ली
0: हाँ बस्तर हेरिटेज मैराथन में मुझे पहला स्थान मिल ली मतलब उतर वर्कआउट कराए तो हुन चीज सामने सुबह शाम कभी कभी धूप में बलहाक दे आम चो जो सांस ले तो बीती आए हुन चो पूरा कायत हो रहे नी धूप में उतरो घाम ने 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो घाम ने 1-2 घंटा 2 घंटा बोले लेकिन 1 घंटा में भागी काय तो दिक्कत है लेकिन होनी दिक्कत थी बोलू बात नहीं कितरो जितरो ज्यादा मेहनत करुआ उतरो हुन चो फल मिरवाए बोलून भाती जैसे नाम चो गाँव ने आम चो दादा दीदी मन रुआत काय वहाँ जैसे खेती बाड़ी करुआत हुन मन में जैसे धान कायत करवात हुन से पहले ट्रैक्टर ने वात जूता वात उतरन फिर लाटा वाटी कायत करवात
1: सबके
0: हाँ गुचावात काय पारी मन के छोलवात उतरन वहां रोपा मंडात भी त्या तो हुन जका स्तर लागवा है नहीं तो धान लगात रहे तो भुनुआत फिर उतरन के देखुक बल जावा समय समय में फिर उसमें बाड़ू आए उन सब कुछ एक कायत रुआ है उसनी आंच बल शरीर हाँ तैयारी आए का हाँ मैराथन का जे
1: मैराथन का कहीं बोल खेल का
0: हाँ शरीर का कहीं बोल खेल का शरीर का जे
1: हिसाब ने तैयारी
0: करो हाँ हिसाब ने तैयारी करो पड़वाए का उसनी छोटे मतलब जतन करू अपने आपके शरीर के बल उसनी करो पड़वाए
1: अच्छा दूसरा गोठ है कि जैसे मैराथन चो गोठ आमी गोठिया से तो हुन चो काय काय नियम आए मैराथन बोलो ने आम चो सपाई एबे नुआ पीढ़ी चो लेकर लेके मन बोले आसोत कोनी जैसन पूरे तोर मन आसे का कहे तो हुन चो नियम काय काय रहे
0: हुन चो नियम बोलो ने जहन हम 42 किलोमीटर भाग लु काय उतरो दूर तय करत रहे तो एक नियम रुआ का है जहन जूता सोला गोटोक सोल बीती पिंत रहा का है एक ठन दुई तीन ठन बीती नहीं पिंत रहा है उतरन फिर आप लोग का है तो अच्छा से तैयारी संगात रहा है पहले से संगाक पुड़वाए का है फिर उतरन जो बॉडी का जाए उससे पहले एक दुई सप्ताह पहले तीन सप्ताह पहले एक महीना पहले बॉडी मेंटेन संगात रहा का है जैसे तेल फूल चो खातर बीती आए बाहरी बीती खातर नु आए मतलब बहुत सारा रूल्स रुआ का है आमचो तो उनके फॉलो कर लेने उनको रिजल्ट खूब अच्छा मिलवाए का है मैं बल खुद नहीं खात रहा का है सोजी उबला उबला खात रहा है दाल दाल सीटी लगा थोड़े जैसे नमक थोड़े जैसे हल्दी उतरी नहीं तो पालक अलग या कुछ और बल बनाए थे उनको थोड़े से एकदम से नाच बराबर थोड़े जैसे जीरो ऑयल बुलवा हुनी के बनान भाती हाँ तसली हाँ मैं तेल लगान भाती खाए से हाँ उसन मेंटेन कर पहले से कर रहा लोने क्योंकि उतर दूर भाग तो रहा है शरीर की मेंटेन संगा तब तो भाग खोए दे 42 किलोमीटर बलन बहुत दूर च बात आए का है हाँ तब वहां से हाँ 42 जो नियम आए का है उन्हीं कायद करो पड़वाए का है जैसन की 42 एक जगह से दूसरे जगह हम के जात रहा है तो उन रूल्स है का है उनके फॉलो करो पड़वाए का है तुरंत फिर जान जगह जगह पानी बल रुआए हाँ। दूसरा कोनी नहीं देता रहा है होनी पानी पी उतरा है जैसन केला है
1: आयोजक आत
0: हाँ आयोजक
1: हाँ, संगाल वासे हुनके पी उतरा है हाँ। दूसरा बाहर ले देऊ
0: हाँ, संस्था साइड ले संगा रुआ हुनकी पी उतरा है का हमके जगह जगह संगा रुआ जैसन केला है उसके बाद एनर्जी ड्रिंक उसके बाद कुछ कुछ और ऑरेंज संतरा संतरा उतरा संगा रुआत का है फिर पानी बोतल मन तो संगा रुआत का है उसने संगा रोत यहाँ भी आमचो का है तो लाल बागले और चित्रकोट ले होली हाँ मैराथन में अच्छा लागली का यहाँ जो शुरू बल करत रहा है उधर धूप तय करत रहा है तो आम के शुरू में आम के धीरे धीरे करत रहा है जैसे की 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनके धीरे धीरे आप लोग फेस मेंटेन करो
1: धीरे धीरे बढ़ा तो रहा है
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। पाचे उनके
0: हाँ,
1: के स्पीड के बढ़ा तो रहा है
0: हाँ उसने करत रहा है क्योंकि हम जहन की 100 मीटर भागवा हूं मन स्पीड भागवात या 400 बल भागवात हाँ उन मन स्पीड पर आवाज का क्योंकि हमके खत्म एक जगह से यदि यही पास में ही खत्म करता रहा है बोलून भाती लेकिन उतरो बीती 42 किलोमीटर भागता रहा है तो हुन जका जे हमके धीरे धीरे भाग पुड़वाए गए वहीं पे हाँ
1: और ये जैसा ये होली मैराथन गोटोक और सुना दे ऐसे वॉक थान बोलो ने पैदल चाल
0: प्रतियोगिता
1: हाँ मैराथन बोलो ने परा तो बीती प्रतियोगिता और हुन पैदल हिंड तो बीती प्रतियोगिता तो ये दोनों ने काय फरक काय हुनके खिंडी काम चो सुन तो दादा दीदी मन सांग दी
0: हम चो दादा दीदी मन के ही सांग काय तो जो मैराथन बीती है हुन अरक फरक रुआ है काय क्योंकि इसमें पैदल हाँ उसमें परा तो रहा है और इसमें पैदल चल रहा है जो नामी जो रेंगुन से उसमें कुछ कुछ रूल से रुआ है काय जो की एक पाय नीचे काय जमीन में आसे एक पाय ऊपर आसे और जल तो भी ज्यादा घुटना बल नहीं मोड़ रहा है हाँ जमीन में ही रत रहा है का
1: घुटना नहीं मोड़
0: हाँ ये खूब सारा रोल शुरू है इसमें भी पैदल चल में और जैसे पानी बटल है उसमें बल एनर्जी ड्रिंक जैसे नाम 42 किलोमीटर का है तो बीच बीच में धरू हम थोड़े थोड़े गुट उसने बल यहाँ पे बल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसमें बल मैराथन हाँ सावधानी बर्तुक पड़वाए का है
1: तो ये पैदल चाल नहीं बोले कहा भाग धर तो
0: हाँ हाँ यही पे पिछले साल रहे का है महिला दिवस 8 मार्च अभी 2025 में रहे उसमें हाँ उसमें बल सुन ले का है उधर जो यहाँ रहते रहे तो हाँ रत रहे पैसा चाहिए इधर उधर काय तो काय होते रहे फिर जूता बल दिक्कत होते रहे उससे पहले मैं गांव लेवल जो 4-5 बीती जूता है उन्हीं जूता पीनुन भाती मैं दौड़ते रहे काय हाँ उसमें बोले घुटना उठना दर्द या सीन पेन बोलवात काय हाँ उनचो घुटना नीचे हुआ है वहां दुख तो रहे काय फिर काय तो मग लागली कि नहीं मग पैसा चाहिए कि उससे पहले मैं बहुत कायत होत रहा है जूता मन गेंत रहा है 1000 रुपया बोले नी टिक रहा है 2-3 महीना टिके और ऊपर से दर्द वर्द बल हो लेकिन तो भी पर आए उतरन बाद में अभी फिर 8 मार्चन जो हो रहे उसमें काहे तो लागली का नहीं मग जूता घेंत रहा और दूसरा भी ती घेंत रहा है बोलन बाद फिर वहां पे नहीं अंदर से रात में लागली उससे पहले ही सुन रहे मतलब वहां पे 9000 मिल रहा है फर्स्ट इनाम बोलन बात तब मैं बोले नहीं ये पैसा कांत रहा है मगे तब मैं अच्छा जूता घेने दे कम से कम 2021 में जो 2500 में अच्छा जूता ये वाई का है कम्फर्ट रुआ है बीती नी दुख आए बोलवात का है क्योंकि भैया मन चुपिन तो दखते रत रहा है कोनी कोनी भैया मन महंगा बीती पिन तो मकबल लागे की नहीं मकबल पिन तो रहा है बीती बोलून भाती फिर अंदर से इच्छा का उन दिन वहां जो दंतेश्वरी मैया चाहे उनके अंदर से कायत कर ले का नहीं मक आ सकता सी पैसा चौसन टाइप अंदर से कायत कर ले प्रेयर करके नहीं मक चाहिए मतलब चाहिए अंदर से कभी कभी ठान लो ने हुआ है बुलवात नहीं किसी चीज के दिल से चाह और उनमें तिमीर हुआ है बुलवात का है हाँ उसनी होली का सेकंड दिन जब सुबह होली फिर इले थोड़ी देर उसनी वार्म अप करो पुड़वाए का अपने शरीर के 4-5 मिनट 10 मिनट जो भी आए और जो शरीर जो स्ट्रेचिंग थोड़े बहुत इधर उधर क्योंकि हम जो जीरो मूवमेंट में रुआ का जो शरीर आए अपनी जहन सोन उठू हम तो उन्हें कहा जब कायद थोड़े बहुत कायद कर रहा है फिर उसमें कर ले फिर वहां पे कर ले साड़ी पिंदू नून बोले साड़ी उतरवाते पिंदुक बल हो नुआ वहां पिंक साड़ी पिंदुआ फिर महिला दिवस दिन अब मगर उसे नहीं पता रहे उन दिन मैं फिर लाल साड़ी पिंदू दिले मैं फोन कर रहे तब उन मन बर दीदी मन की नहीं इलन मीरू आए मैं सोच ले कि हाँ इलन मीरू आए मैं बोले भाती मैं नहीं आने का लाल बीती गए नहीं आने रहे उन्हीं साड़ी पिन ले यार पैदल चले और फर्स्ट इले फिर वहां पहुंचू मग जो लागली बहुत ही अच्छा लागली गाय कि नहीं हाँ मैं फर्स्ट ही ले गाय नहीं अब मैं जूता घेन सके गाय तो बाद में फिर अपनी पैसा संग आ रहे फिर जूता घेन ले गए अभी तक बोल चले सुन जूता फिर उन चल पहले बोले मतलब बाहर बल गए जैसे उत्तराखंड ओगरा बोलाए उसमें बोल गए ससनी बीती कायत में और जैसे की हम लाल बाग में बोले एक बार होली मेजर ध्यानचंद जो कायत हुआ है हाँ उन चो का बोल करवा वहां से जो आईजी सर आए हम चो यहाँ बस्तर जो आए उन सर से मिल ले उन सर जो उन चो जो बात आए बहुत ही मोटिवेट करवाएगा अच्छा से हाँ अगर ध्यान से सुन लें फिर यहाँ एक कायत वासे वहां पे पूरा हक दे रो सबके हाँ वहां सम्मानित कर ला फिर नहीं तैयारी करते रहना है ऐसे करूँ मतलब हिंदी में बल का तैयारी करते रहते रहे का बोलून भाती मीरू आए का बोलून भाती उतली दाल में उन सर चो जो गोठिया तभी थी कायत उनके तो मत नहीं कायद करता है जो असन सील डोल्ड मिरवाए ये मेडल में अंदर से खुश लगवा नहीं नहीं करता रहा और तो वहीं से ही आधा ज्यादा कायद हो ले सर से प्रेरित फिर उन सर से मिलन भाती सील डोल्ड झोकले खुद दी लोग आए सर हाँ फिर वहां से अच्छा लगवा और उतरन फिर उत्तराखंड जब रहे वहां से बल कलेक्टर सर मिल तो का झाक दी रहे उदल लाए हाँ उतरन नाम जो सर आई स्टेडियम जो हम जो सर मनात का है पिल्ले सर मन सोनी सर हाँ उतरन नाम जो अभी का तो निधन होली उन डकाड़े सर ये सर मन मग जात का पैसा बल देवरोत का है हाँ
1: ये उत्तराखंड जात का
0: हाँ उत्तराखंड जात का मग पैसा बल देवरोत हाँ कुसुम फिर उससे पहले और एक बार बल जाऊ रहे हैं आसाम बल जाऊ रहे हैं हाँ वो न ओपन बीती जाए ओपन बीते हाँ स्टेट बीती में मेडल लग रहे तब आसाम बल गेले का है वहां आसाम जाऊ रू का है आसाम तो गेले तो सही उधर लायदम से बचपन कायत रहे का है अब जात रहे का है स्टेट ने तो मेडल लग ली का है भाग ले कसनी भी 10 किलोमीटर रहे वहां पे जो यहाँ पे हम जो कोरबा में होली का है कोरबा बल नहीं जाऊ रहे मैं उतर दूर लेकिन गेले यहाँ से बस जे बाती मैं गेले यहाँ से मैं अकेले जाऊ रहे का है कोरबा में वहां सरमन मकी स्पेशल आनू के विरोध का है नहीं बस्तर चको नीली से बोले
1: हाँ, ये बाटले हो रहे
0: छत्तीसगढ़ एसोसिएशन हाँ जो यहाँ से कायद करवात फिर ओपन बीती हुआ है मैराथन हाँ उसमें मेडल लग लेने रेलवे वेलवे भाव भर्ती धरवात का है एक मतलब मेडल लग लो उठावा डायरेक्ट लेकिन मची स्टेट चो लग रहे तैयारी बल उतर नहीं ले लेकिन वहां लग रहे मचो फिर कुसुम बस्तर चुआस लेकिन और तैयारी करा और कायद कर हो से बोलते फिर वहां पर मतलब उदल राय बोल करते रहे जो मैडम आए मचो एस टीवी मैडम कराते रहे उनकी माध्यम ले जाऊ रहे मैं वहाँ पे फिर उतरन फिर जाते तो रहे लेकिन आसाम जाते मेरा स्टेट खेलू नीले उतरन फिर मग नेशनल जाते रही सर मन पैसा वैसा दिला जा रायपुर में गेले मच मोबाइल बल घूम ली अब मैं कहन मच नंबर भूल गए बाद में मच भाई के जोन रहे उनके जो इंस्टा आईडी आजकल चला बात का है इंस्टा आईडी फेसबुक बाद में याद कर ले का है अब नंबर मोबाइल तो चोरी होली मचो अब मैं कोके कोठे नंबर बोल घर चो याद नहीं आए तो बाद में जानू कहन कर फोन करून भाती फिर इंस्टा में मैसेज करून हम मच मोबाइल घूम ली फोन लगा बोले फिर नंबर दे रहा का है फिर गेलू उन बाडले खेलू नीलू फिर थर्ड बार फिर अभी फिर जाओ रहे बिहार में बोल जाओ रहे उसने बोले ठीक ही रहे का है पुड़वा
1: बिहार ने का रहे
0: बिहार ने बोले क्रॉस कंट्री रहे हाँ असम ने बोल रहे क्रॉस कंट्री हुआ एक 10 किलोमीटर
1: क्रॉस
0: कंट्री बोलने ओपन मैराथन जो हाँ साल में एक बार हुआ है का हाँ अक्टूबर नवम्बर
1: बोलो ने ओपन रहे सुता कोनी बल भाग
0: हाँ कोनी बल
1: हाँ कोनी बले उम्र चो लोग भाग धर
0: हाँ एज ग्रुप रू आए उसमें बस 17, 18, 19, 20 और 21 ले उन पाटे ओपन रू आए का है हाँ 10 किलोमीटर जैसे न वहाँ पे कितरो 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रू आए उदली दायले मतलब अच्छा लागू है मके नहीं करते रहते रहे उधर दायले और अच्छा लागू है का है नहीं बाहर बाहर बल खेलुक मिरू आए बाहर बल घूमुक मिरू आए और जो पैसा बीती बात है पैसा बल मिरू आए तो उन सब कुछ अच्छा लागू है का ये भी बोले
1: तो ये भी जैसन आमचो इतरो सपाई गोठोली आमचो जैसन कोनी सुन तो लेखा लेखी मनासोत और जैसन कोनी मन ने आसन बनासोत की आम के बोले ये दौड़ ने नाले मैराथन ने नाले और कोई कहीं खेलने जैसन भाग धर तो रहा तो असन आमचो नुआ बाबू नोनी मन का जी कहीं आप लोग बाटले संदेश
0: आमचो जो काय तो आमचो संचो जो नास काय लेका लेकी मन सब है जो नाम चल बड़े बल्लास होत नानी बल्लास होत आमचो ले हाँ उन मन का जो यही सांग जो मतलब कुछ न कुछ रुचि अंदर से रुआ है काय उन रुचि के निकरात रहे काय तब हुआ है काय मतलब मैं बल नहीं जानत रही स्कूल पढ़ते रहे लेकिन लाख रहे कि नहीं पुलिस में जात रहा है लेकिन पुलिस में जात रहे तो काय कर रहा है उन नहीं पता नहीं रहे लेकिन इधर बारी नहीं कर ले लेकिन कुछ नहीं जान रहे गए पर तो कितना रहा है बोलू भाती लेकिन बाहर में जब नहीं कर ले तब पता चले कि गांव में कुछ नहीं पता चलते रहे जब यहाँ जगदलपुर में ही ले रहा ले तब अभी जाने कि नहीं पर सब कुछ हुआ है का मीरू आए सन टाइप से फील लाग ली का तो उन्हीं कहे चाहे से मैं बोले कि मतलब कुछ ना कुछ आप लोग रुचि हो लो ने अपने अंदर से दिखात रहे का है
1: गोटो गोटो और पूछे देखिए जैसे बस्तर हेरिटेज मैराथन ने पहले स्थान ली उन थाने कितरो पैसा निकले
0: वहाँ 150,000 ली जानू
1: ने ये सुन तो लोग मन का गोटो बाट दिखा लो वहाँ आया की ये दौड़ बोलो ने परा तो मैराथन ये के करुण बोले जीत लो ने पैसा
0: मिरवाए का है
1: पूछ ले सुन तो लोग मन बोल दे होती 2-4 हजार अंतर सुन लो ने तुम मन के लागे देख के इतना बोले पैसा मिल सकता
0: हाँ खूबी पैसा इतना पैसा बोलो ने मैं पहले सोचते रहे क्योंकि मैं उतना पहले पैसे कभी नहीं काय कमा रहे या कमा ले से मतलब लागत रहे का जब वहाँ आमचो नारायणपुर मैराथन होली क्योंकि वहाँ बल संभाग बीती रहे आमचो मतलब उन मन खुद नारायणपुर जिला से रहे फिर संभाग चु रहे और ओपन सब चु रहे का हाँ वहाँ मतलब भैया जितरो करा रहे हूँ सामने मज वहाँ बल 1 लाख उठाते इतरो काय भरोसा रही लेकिन थोड़े गड़बड़ा ली का मचो
1: अच्छा, पहला ही ना, तो एक लाख रहे।
0: हाँ वहाँ बल 1 लाख रहे का लेकिन
1: तीसरा कितरो रहे
0: सेकंड जो दूसरा रहे 50,000 रहे और 20,000 रहे का
1: तीसरा स्थान मिल रहे
0: हाँ तीसरा वहाँ 20,000 मिल रहे लेकिन खुश लग ली 20,000 भी बहुत काय तो आए का जो पर आलू 1-1.5 घंटा जो 1.5 घंटा काय तो आए पर काय तो आए का हाँ, और यहाँ जो तय कर ले यहाँ बोले उसने रही का तो तुर पैसा मिल ली खुश लाग ली फिर उन्हीं जो जो जूता घेन ले जो नहीं पहले जो जो पैदल चल भी आए उन भी तीन तो तैयारी करते रहे फिर जो भैया बोल लो जूता चरक फरक रुआ है रोड रन चो भी और ग्राउंड चो भी तो दूसरा भी घेन अभी तुझे लग पैसा ही लीस का हाँ फिर मैं घेन ले का 10,000 हाँ 10,000 चो आए का जूता उन जो जूता पर आले अच्छा लाग ली घुटना उठना नहीं दुख ली का उसमें कार्बन प्लेट लग रुआ गए हाँ पीछे उतरे धूर पर आले तो एकदम कम्फर्ट लाग ली का चलो इतरो खर्चा कर ले तो मिल ली उनसे फायदा और जो खातो पी तो आए डाइट बुलवा हाँ फल फ्रूट पानी जोन भी है जितरो खर्चा है हाँ वहाँ लगा ले तो पैसा मिल ली का क्योंकि शरीर ने लगा लो ने जितरो शरीर के अच्छा संगा वहाँ बोलो ने काय तो आहे
1: काय
0: पैसा ज्यादा काय शरीर मायने बोलवत नाही उसनी वीती आहे काय खूप अच्छा लागू आहे काय
1: मान सम्मान बोले मेरे से
0: मान सम्मान तो गहे दिन मिलते ही
1: तो अच्छा गोटा है सुन तो लोग मन के बोले दुई टप्पा कहीं नंगत गोट सीखुक सुनुक मिल रही होती आमचो संगे पीछे गोट बात के सुनन भाती तो इतरो अच्छा तू इस टप्पा गोट के सांगली और सुन तो आमचो दादा दीदी मन बोले अच्छा नंगत लागली होती तो आली तेबे सपाय दादा दीदी मन के बोले और तू के बोले खूबे खूबे जुहार
0: मचवाड़ लेवल सभी दादा दीदी मन और तू बल सर के जुहार
2: साप्ताहिक खेल पत्रिका
3: खेल पत्रिका में अभी आप सुन रहे थे मैराथन धाविका कुसुम शार्दुल से ली गई भेंटवार्ता भेंटकर्ता थे भरत कुमार गंगादित्य आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं रात्रि के 10 बजे हैं
4: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
3: लोकगीतों की फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लोकरस में आज प्रस्तुति है संपत राम नाग की संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर
6: सो चाहे लेखा हो लेखी हो सियान हो नाले डोकरा हो डोकरी हो असन मन संगे आमी हुन मंचो जोन का

0: फोन इन लोगरस के सुन तो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनू पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो फोन इन लोगरस।
2: आज मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग में जा रहे हैं ड्यूटी तरफ से।
1: हाँ।
2: तो ट्रेनिंग एक दिन के लिए भेजे रहे।
1: हाँ।
2: तो वही आएंगे एक बजे करीब, बाद थोड़ा सा लेटर होने के बाद ध्यान नहीं तो वो बोले अरे तो फोन करना है डॉक्टर में।
1: हाँ।
2: तो दादी से बात करना है। तो दादा मौसम गर्मी खूब बढ़ गई थे, हालत खराब हुई, खूब गर्म गर्म लू हवा चला थे। तो लोगों से आग्रह करूँ मेरा कि ये मौसम में सेहत का विशेष ध्यान दे और जिन घर से जरूरी हवे तभी घर से बाहर निकले उमन।
1: हाँ क्या गांव आए जानू गांव बेरा नहीं टाबेल नाले साता चाती दरुन निकलतो रहे संगे संगे पानी बाटल ने बोल पानी दरुन जातो रहे
2: पानी बोतल खीरा ककड़ी कलिंदर ये सब खाए।
1: हाँ।
2: तेल में पदार्थ ना खाने लगा और सेहत पर विशेष ध्यान दे और जानवर मन के पशु मन के धूप में नहीं बांध गैया मन के भैंसा मन के धूप में नहीं बांधना है उमन के एकदम छाये जगह में पाते रोज उमन कर नाला या नदी कती या तालाब पति के पानी में जाते मतलब डूब के नहाते भैंसा मन ऐसे करें और सफाई के विशेष ध्यान दे और छाए जगह में बांधे के उनका गैया गरी हो गई कुत्ता हो गई एमन हो गई पशु पक्षी मन हो गए वो मन के मतलब खाना वाना दे और बाकी भोजन न
1: और इंद्रवान दादा सांगा आज कौन गीत के सुनते काज फोन लगा ला सस ना
2: सुनू दादा।
1: हाँ ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: राम भैया।
1: हाँ राम राम, आगे कौन बोला सर? दादा ना संगस नहीं ना।
0: मैं सुधीर कुमार सारथी बोला था भैया, कुर्मी पारा बेमे तरह ले।
1: हाँ और दादा सांगा ना, कसन आ सर तुम्हें?
0: सब बढ़िया। तो धूप होती है कि नहीं है? बहुत धूप है।
1: हाँ ये बात बोलो सुनिए दादा जी, क्लिक तो बादरी बादरी कर ली से।
0: हाँ। अब इतनी तो कड़ाके की गर्मी हवा है।
1: हाँ।
0: घर ले निकले के इच्छे नहीं हो है। अब ये सब पेड़ कटा चेते खा नाम से गर्मी तेज हो गए है। पानी के घरो संकट अब घर आगे है।
1: हाँ उन तो है, अभी पानी चो बोले कि कम होते जाए से, रुख रही मन बोले कम होते जाए से, उन गर्मी ने बाहर बढ़े से नहीं ना।
0: हाँ।
1: बरसात शुरू हो देवे तो उदल दाए हम के काय बूटा मन मंडा तो रहने।
0: हाँ एक ठन बात है संगवारी।
1: हाँ हाँ संगवारी,
0: ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगावे है।
1: हाँ
0: है ना, से का है गर्मी में निजात पाए जाही।
1: जी जी
0: और पानी के संरक्षण करो का बने रही।
1: हाँ
0: तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाबो तब तो गर्मी है ज्यादा महसूस नहीं हो है।
1: हाँ
0: अभी भीषण गर्मी है।
1: हाँ।
0: तो गर्मी में अपन सेहत के ख्याल जरूर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। घर से बाहर निकला था तो अच्छा से मुँह कान ला ढक के निकला है, छाता लेके निकला है, छाता ओढ़ के जावा आवा। और खान पान में ज्यादातर मिर्च मसाला वाले खाना नहीं खाना चाहिए। अब से हर आधा घंटा एक घंटा में पानी अवश्य पीना चाहिए लोगन मल्ला। और संग में फूल फ्रट है जैसे ककड़ी है, खीरा है, कलिंदर है, आम का जूस है ना, ये पीना चाहिए। और हो सकते ना तो बेल के शरबत घर में बना के पूरा परिवार सहित पीना चाहिए भैया।
1: जी जी जी जी सही बोले संगवारी,
0: है ना। तब आपके पोमक आए है, पानी के जो मात्रा है ना शरीर में बराबर रूप से बने रही तो ओकर से तबियत है नहीं बिगड़े।
1: गर्मी बेरा नहीं हम के काई बोले उठ पटांग निका तो राय ने कहा बोल गेलू जाले खिंडिक बिजान बाती पानी ओकरा पी तो राय उठ।
0: आप का है तबियत बिगड़ते ना तो डॉक्टर दिखाना चाहिए तुरंत। और घरेलू इलाज घलो खावा है। हमारे छत्तीसगढ़ में घरेलू घलो फायदा मिलते बहुत।
1: हाँ हाँ संगवारी संगा जी, कौन गीत के सुनते कच फोन लगा ला सस ने?
0: मैं सुनना चाहता हूँ और लड़का मन के नाम ले लेते हैं संगवारी। मोर बड़े लड़का हवा है कमल कांत सारथी जो PWD में कार्यरत है
1: जी।
0: दो लड़का हवा एक वीरेंद्र कांत सारथी और वृक्ष कांत सारथी।
1: हाँ
0: हाँ और पूरा सारथी परिवार की ओर ले आपके पूरा यूनिट ला, आपके पूरा परिवार आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई।
1: हाँ ठीक है संगवारी, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना, सुनाते सफाई मिलू।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: वंदे मातरम। जय जोहार।
0: हाँ जय जुवार। कौन बोला सर? दादा आगे ना संगत रही ना। हाँ
1: रेलवे कॉलोनी जंगल पीछे मैं बात कर रहा हूँ दादा, रमेश भारद्वाज।
0: अच्छा रेलवे कॉलोनी ने काय बनावा दादा?
1: सब बने बने चले थे दादा, अपन मन का दुआ
0: हाँ
1: भगवान का दया सब चले थे। आज गीत सुना करी दादा,
0: हेलो सांगा कौन गीत के सुन तो काजे फोन लगा ला दादा।
1: गीत के बोल है राशि देव और रोमन के संगवारी गाय है।
0: हाँ
1: गीत के
0: हाँ
1: बोल है ये बाटो जैसी आके चुरी दो रहा चुरी
0: हाँ
1: घने दे दादा मोके, ये गीत सुना करी दादा।
0: अल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: जय जोहर दादा।
0: जय जोहार।

0: हेलो पोनी लोगरास।
1: हेलो।
0: हाँ
1: हाँ
0: पोनी,
1: दादा
0: हाँ जोहर ना, आगे ना संगस नहीं, कौन बोला सर?
1: मैं नौनुरा मर काम भले ना माला कोट ले कोंडा
0: हाँ जिला कहाँ, कौन गाँव दादा?
1: गांव जिला है दादा।
0: हाँ और दादा संगा ना, आज काय काय काम
1: काय
0: तो चले से?
1: संग दादा बिहार चले थे ना।
0: हाँ बियावन नी सरला से ने।
1: ओ आज एक ठन आखिरी होली फेरे चालू है
0: हाँ।
1: एक ठन। ओ ना आज पहली बार लग ली दादा।
0: अच्छा पहली बार लगा ला सास।
1: ओ लगाऊ
0: हाँ
1: आ जान तबले लगनु है।
0: अच्छा। कौन कौन मेरा है पेता फोन नेते रुआ है नहीं ते बिन दिन
1: ओ
0: लगते रुआ है।
1: अचानक लगू दीली था तुम एक
0: चलो
1: ही बार
0: बढ़िया
1: में
0: है।
1: उठाऊ दी
0: हाँ
1: अच्छा लाग ली।
0: नहीं लगा ए दाई लगा तेरो आदा असनी था काय को
1: ओ
0: पे फोन नेते।
1: लगाऊ आ जान खूब काय तो रिंग करू आए लेकिन बात हो ही नु है।
0: हाँ
1: 15-20 बार लगाऊ आए फिर अस्कट हो ले जलसा ढूंढे हुआ।
0: लगा तो लगाते रह लेने कोनी नाल कोनी दिन लगो ची आ जान ना होका
1: ओ
0: नहीं जाए, लेकिन लगाते
1: ओ
0: रहता रहे ने। हाँ
1: हे जोंदरा जोंदरी मन लग राका राखी रहूं आऊं का।
0: ये भी कहे जोंदरा लगा ला सस जेट बेरा छे।
1: ओ लगा लूं से तोड़ तो लाए खोली से।
0: हाँ नी टूटा ला सस।
1: ओ बियाह कर लूं तोड़ तो ऐसे। हाँ
0: हाँ। और सांगा आजी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सस जल ना कुट।
1: ए आया मचो दंतेश्वरी बीती।
0: हाँ हाँ
1: ओ
0: अल्ले
1: दादा
0: अल ठीक है दादा, तुम जो मन कर
1: जुआर
0: लो गीत
1: दादा
0: के
1: जुआर ना
0: सुनाओ सुनाते
1: अच्छा
0: रहो।
1: हरी किलाग लूना लग गई तब।
0: हाँ अदाय लगाते रहो दादा।
1: हो
0: हाँ हाँ ठीक है।

0: हेलो पोनिन लोगरस।
1: नौकरस
0: हाँ दादा, कौन बोला सासना आगे ना सांगस नहीं ना।
1: मैं जगदलपुर गीदम रोड जगदलपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ
1: की राजू राव,
0: हाँ और राजू दादा सांगा आजकल काय काय काम बुता करू आसना तुम्ही।
1: हमारा मोबाइल का दुकान है दादा, और कापी पुस्तक का दुकान है दादा।
0: हाँ, ये जगदलपुर नहीं यहाँ से तुम चो।
1: हाँ, जगदलपुर में ही है
0: हाँ और रेडियो की दौलदा सुनवास फिर दादा।
1: दादा। मैं तो रेडियो हो गया 20-25 साल से सुन रहा हूँ दादा, 25-30 साल हो गया मेरे को सुनते हुए।
0: हाँ,
1: मैं आकाशवाणी जगदलपुर का बहुत पुराना श्रोता हूँ दादा। आपका नाम दादा?
0: मैं संपत राम नाग बोले दादा।
1: अच्छा, नाग दादा, जोहार दादा।
0: हाँ जोहार ना, दुकान कसम चलू आ जल दादा।
1: ठीक है दादा, जगदलपुर में माई दंतेश्वरी की कृपा से अच्छा ही चलता है दादा। दो
0: हाँ
1: वक्त का रोटी मिल जाता है दादा यहाँ पर। यहाँ पर हमारी आराध्य देवी है, मेरा तो जन्म यही हुआ, जगदलपुर में ही हुआ दादा।
0: हाँ
1: और माता की कृपा से, मैं उन्हीं की कृपा से आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ दादा।
0: हाँ आय जान दादा। और राजू दादा सांगा आज कौन गीत के सुनवास ना।
1: मेरे को ममता चंद्राकर का गाया हुआ छत्तीसगढ़ी गीत तो सुना दो दादा, कोई
0: अल्टी
1: अच्छा सा गीत छत्तीसगढ़ी गीत सुना दो दादा।
0: हाँ अल्टी का है राजू दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: अच्छा दादा, एक बात बताना था।
0: हाँ
1: जैसे अभी गर्मी का सीजन है दादा,
0: जी
1: तो मैं ये कहता हूँ दादा कि मनुष्यों के जो अपना कहीं भी धूप में निकलेंगे अपन, कहीं काम है, कोई इमरजेंसी काम है तो तभी निकलिएगा, साथ में पानी भी साथ में लेके चलिए दादा।
0: हाँ, इधर गाम बेरा नहीं आम के तू आल तू ली तो हम ना के
1: हाँ,
0: बांधुल बात निकल तो रहा है नाले पर संगे गोटोक चाता होली नाले पर पानी बोतल
1: पानी
0: में
1: बॉटल
0: पानी
1: पकड़ के
0: उधर।
1: साथ में चलना
0: हाँ
1: जरूरी है दादा। और साथ में मैं ये भी कहूंगा दादा कि जैसे पशु पक्षी लोगों को, जैसे जानवर मन है, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया,
0: जी
1: इनके लिए भी घर में हो सके तो घर के सामने एक छोटा सा मतलब पानी का रख के उनको, कम से कम उनको भी प्यास लगता है ना दादा, पशु पक्षी जानवर को भी।
0: हाँ
1: तो मैं यही कहना चाहूंगा दादा कि अपने साथ साथ हम लोग अगर पशु पक्षियों का, जानवरों का भी थोड़ा सा ख्याल रख दे तो ये हमारे लिए भी पुण्य का काम होगा दादा।
0: जी जी जी सही बात बताए।
1: जी
0: चल
1: ठीक है दादा, मैं अब रख

0: 7782 लगाऊक निबुल का एदाय फोन इन लोगरा सर से एता तुम्ही बोले फोन करून तुम चमन कर लो गीत के सुनुक सकास फोन कर तो काजे आमचो नंबर आए 222666 और गोटक नंबर आए 222160 फोन कर तो पहिल जगदलपुर चो एसटीडी कोड नंबर आए 077782 लगाऊक निबुल का एदाय फोन इन लोगरा सले मके दिया विदा जुवार
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों की फरमाइशी कार्यक्रम फोन इन लोकरस प्रस्तुति थी संपत राम नाकी संयोजक थी चंद्र ऋषि ठाकुर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है रात्रि के 11 बजने को है अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करें
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया
3: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी
2: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की
4: Discussions focused on enhancing cooperation.
5: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश रक्षा समुद्री सुरक्षा वित्तीय संपर्क प्रौद्योगिकी और नवाचार गतिशीलता शिक्षा संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई
4: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी वित्तीय सेवाओं संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।